एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 की श्रावण मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 29 जुलाई 2026। प्रातः के 5:57 होने वाले हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार कुछ ही देर में दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्री कृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मढ़गांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: अभी समाचार दिल्ली से रिले किए जा रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। इश वंदना से पहले आइए सुनते हैं देश वंदना समूह स्वरों में।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून

लता मंगेशकर और साथियों का गाया कबीर दास का ये पारंपरिक भजन अभी आपने सुना, और आइए अब ओम व्यास का गाया ये भजन।

0: ओम व्यास के गाए इस भजन के साथ ही आज की आराधना अब संपन्न होती है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:23 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बात। इसमें आज गेंदा फूल की खेती विषय पर सामयिक सुझाव दिए जाएंगे। वाचन स्वर है रूपेश कंवर का।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। मैं हूं अपन के रेडियो संगवारी पंचू भाई रूपेश कुमार कंवर। हमारे छत्तीसगढ़ में बात करें संगवारी हो तो आए दिन तीज तिहार हमन मनाथन। हर दिन कुछ न कुछ तीज तिहार पूजा पाठ होते रहते। आओ तीज तिहार होते, पूजा पाठ होते, बर बिहा हुआ थे या कोनो भी

0: सामूहिक कार्यक्रम होते, सबले ज्यादा हमारा आवश्यकता होते फूल के। आओ जानते हवा संगवारी हो, हमारे छत्तीसगढ़ में फूल की खेती आज कहीं न कहीं हमारे किसान भाई मन खेती किसानी करके दोहरा से दोहरा आमदनी कमाते। आए दिन अपन हमारा आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर कथी ले खेती किसानी के संगे संग फूल की खेती करते वो किसान भाई मन के अनुभव अपन के बीच में परोसतन। अब अपन जानते हवा किसान भाई हो कि फूल की खेती आज कहीं न कहीं हमारे बर आज ज्यादा ज्यादा हमारे आमदनी देह के जरिया है। गेंदा फूल के खेती करत हन किसान भाई हो, गेंदा फूल है अभी बेरा मा हमारे बर सोना है। कोनो कार्यक्रम होते सबसे ज्यादा मांग होते फूल के, कम लागत में ज्यादा ज्यादा हमन एमा पैसा कमा सकत हन। आज के खेती की बात में आपन का बात करबो संगवारी हो गेंदा फूल के खेती के। संगवारी हो गेंदा फूल ला हमन सोना घलो कथन, बर बिहा है, पूजा पाठ है या घर में कोनो प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम होते, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते, सबसे ज्यादा हमला फूल की आवश्यकता होते। कम खर्चा में हमन 3 से 4 महीना में फूल के खेती के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा हमन पैसा कमा सकत हन। और जलवायु की बात करी संगवारी हो तो छत्तीसगढ़ के हमारे जो छत्तीसगढ़ है गेंदा फूल के जलवायु पर सबसे उपयुक्त हवे। तो संगवारी हो आवा गोड़ बात करी गेंदा फूल के खेती के तैयारी के मुख्य सीजन की जिसे बात करी तो अभी जो बेरा हवा जुलाई के अंतिम सप्ताह ये बेरा में हमन अभी खेती से निकल सकतन, संगे संग अगस्त के प्रथम सप्ताह तक घलो हमन गेंदा फूल के खेती कर सकतन। अगर अभी बेरा में गेंदा फूल के खेती करतन तो ठीक हमन दशहरा दीपावली तीज तिहार ला पाबो और ओ बेरा सबले ज्यादा हमन फूल के ज्यादा मांग रहते बाजार हाट में। और कहीं न कहीं अगर अभी बेरा में हमन गेंदा फूल के खेती करतन तो अवैया बेरा में ज्यादा से ज्यादा हमन आमदनी कमा सकतन। दूसरा बेरा की बात करें किसान भाइयों, सितंबर से अक्टूबर के बीच में अगर हमन गेंदा फूल के खेती करतन तो जो बर बिहाव होते आपके फागुन के महीना में चैत के महीना में ओ बेरा हमन दूसरिया जो खेती से निकलत हन फूल के ओ मां अच्छे से भद्राए रही। और बर बिहाग सीजन में पाबो तो बर बिहाग सीजन में संगवारी कहीं न कहीं हमन गेंदा फूल के माध्यम से दोहरा आमदनी हमन कमा सकत हन। गर्मी के बेरा में घलो अगर हमन खेती से निकलत हन फूल के जनवरी के फरवरी के बीच में तो ठीक हमन गर्मी के बेरा के बेहतर सीजन पाबो और ओमा हमन कहीं न कहीं हमन फूल की खेती के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा हमन आमदनी कमा सकत हन। अभी के बेरा भैया कंचा कंचा संगवारी हो तो एला अगर हम लगावा तो 60 से 70 दिन के बाद फूल आके चालू होही। यानी कहते संगवारी हो जुलाई के अंतिम सप्ताह में लगावा तो ठीक दशहरा दीपावली हमन पाबो और ओ बेरा पाबो संगवारी हो तो कहीं न कहीं हमन ज्यादा से ज्यादा हमन आमदनी पा सकत हन। फूल की खेती करने संगवारी तो सबसे पहले हमें भुइया की तैयारी करना बहुत ही आवश्यकता है। बरसात की बेरा हवा है तो ऐसे बेरा में इसनहा भुइया के हमें चुनाव करना चाहिए जहाँ पानी की निकासी और सिंचाई आसानी रूप से हो सके। गेंदा फूल के खेती करत हन तो सबसे पहले हमला देसी नांगर ले 2 से 3 बार आवार दून करके जोताई करना चाहिए। संगे संग एकड़ पाछू हमला 15 टन गोबर खाद अगर मिलावत हन तो कहीं न कहीं गेंदा फूल के जो ग्रोथ हवे बढ़तवार है वो ज्यादा से ज्यादा होगी। किसान की बात करें किसान भाई हो अभी बेरा अफ्रीकन जो गोंदा फूल है सबसे बड़का फूल हवा एक बाजार में मांग की बात करें संगवारी बहुत ही ज्यादा मांग हवा। पूसा नारंगी है, पूसा बसंती, बाजार भाव की बात करें संगवारी तो आज कहीं न कहीं बाजार में अफ्रीकन गोंदा फूल के ज्यादा ज्यादा मांग हवा। देसी फ्रेश गेंदा एक बात करें संगवारी तो छोटे छोटे होते एक संख्या बहुत ही ज्यादा होते। एला जिससे बात करी जाफरी रेड लेडी एमा कीट घलो कम लगती है। एक बात करें संगवारी तो जो मंडप सजाते बर बिहा के या मंदिर के सब ज्यादा उपयोग करे जाते और बने सुगर सुगर घलो दिखते। भुइया की बात करी संगवारी तो अभी आपने बताया हमन की बालोई माटी है ये सबसे उपयुक्त हवे। जैसे कि हमारे बात करी हमारे बिलासपुर के तो नंदिया के तीर में जितका भी गांव बसे हवा जैसे कि हमारे घुटकू है, मंगला है, यहाँ के हमारे किसान भाई मन आज गोंदा फूल की खेती करके दोहरा से दोहरा आमदनी कमा सकत। नर्सरी की बात करी संगवारी 20 × 1 मीटर क्वारी एक एकड़ के लिए हमारा 400 से 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होते। 20 से 30 दिन के पौधल तैयार करके हमारा दूसरा खेत में रोपाई करना चाहिए। रोपाई में कतार की दूरी की बात करें किसान भाई हो 45 सेंटीमीटर और पौधा की दूरी की गोड़ बात करें किसान भाई हो 30 सेंटीमीटर हमला रखना चाहिए। पल्लो की बात करें किसान भाई हो तो अभी बरसात की बेरा हवा है तो सिंचाई की ज्यादा हमला आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जोन बेरा फूल आवा थे वो बेरा हमला सिंचाई हल्का मात्रा में करना चाहिए ताकि उमन नमी बने रहे। विशेष बात ये रखी पड़ी संगवारी हो कि बरसाती बेरा में अगर हम गेंदा की फूल की खेती करतन तो जल भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर जल भराव हुई संगवारी हो तो कहीं न कहीं हमारे जो गेंदा फूल की खेती हवा है उमन सबसे ज्यादा नुकसान होके संभावना बने रहते हैं। यही के संगवारी हूँ आपन उद्यान विभाग के जो अधिकारी कर संपर्क करके फूल की खेती करके दोहरा से दोहरा आमदनी कमा सका था। आज उद्यान विभाग का तेले पुष्प विस्तार योजना के माध्यम से आज कहीं न कहीं किसान भाई मल्ला अनुदान घलो दे हो जाते ताकि हमन जो अपन आर्थिक स्थिति सुधार सके। संगे संग फूल के पुष्प विस्तार योजना के माध्यम से जुड़ के अपन हमन दोहरा आमदनी कमा सका था। राम राम, जय जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बात, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है मानस गान। गायक स्वर हैं सुरेश।

सुनकर लक्ष्मण को अपने तन मन की सुधी जाती रही। वे व्याकुल होकर अग्रज के चरणों में आ गिरे। उदास मुखमंडल, कांपता शरीर, आंखों में उमड़ते आंसुओं ने निशब्द उनकी पीड़ा प्रकट कर दी। श्री राम ने उन्हें धीरज बंधाया। प्रेमवश अधीर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता, गुरु और स्वामी की सीख मानकर आचरण करते हैं, उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। हे भाई, भरत और शत्रुघ्न इस समय अयोध्या में नहीं है। वृद्ध महाराज मेरे वन प्रवास के कारण बेसुध हैं, अतः तुम्हें यहीं रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि मैं तुम्हें अपने साथ वन में ले गया तो अयोध्या नगरी एकदम अनाथ हो जाएगी। किंतु आसन्न वियोग की पीड़ा से अधीर लक्ष्मण पर श्री राम के शीतल वचनों का वही प्रभाव हुआ जो पाले का कमल पर होता है। लक्ष्मण की ये वेदना है कि वे दास हैं, और यदि स्वामी उनका त्याग भी कर दें तो वे क्या कर सकते हैं। सच तो ये है कि वे श्री राम के स्नेह से सिंचित मात्र एक शिशु हैं, जो श्री राम के अतिरिक्त गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानते। धर्म और नीति संबंधी उपदेश की आवश्यकता तो उसे होती है जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य और सदगति की अभिलाषा हो, जो मन वचन कर्म से श्री राम के चरणों में प्रेम रखता हो। क्या

अभी रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फ्लैगशिप में कार्यक्रम नवविहान में। आज जानकारी का विषय होगा जल जीवन मिशन।

जल अर्थात जीवन। धरती पर जीवन की कल्पना जल के बिना संभव ही नहीं है। यही कारण है कि जल को प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार माना गया है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या, जल स्रोतों का पर बढ़ता दबाव और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों ने स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता को एक गंभीर विषय बना दिया है। ऐसे समय में भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए आशा की नई किरण बनकर सामने आई है। वर्ष 2019 में शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य है देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। इस योजना ने न केवल पानी पहुंचाने ही नहीं बल्कि लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का भी संकल्प लिया है। कुछ वर्ष पहले तक ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक महिलाओं और बच्चियों का दिन पानी लाने की जिम्मेदारी से शुरू होता था। कई किलोमीटर दूर से पानी ढोना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। आज जल जीवन मिशन के माध्यम से अनेक गांवों में यह तस्वीर बदल रही है। घर घर नल से जल पहुंचने के कारण महिलाओं का समय और श्रम बच रहा है। बच्चे पढ़ाई और खेलकूद के लिए अधिक समय निकाल पा रहे हैं। वहीं परिवारों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है। इस मिशन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है जन भागीदारी। गांव में जल समितियों का गठन किया जा रहा है जो जल आपूर्ति व्यवस्था के संचालन और रखरखाव में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। साथ ही वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों का संरक्षण और भूजल स्तर को बनाए रखने जैसे प्रयास भी इस अभियान का हिस्सा है। यह संदेश स्पष्ट है कि जल की उपलब्धता जितनी आवश्यक है उसका संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वच्छ पेयजल की जल जनित बीमारियों में कमी आती है और लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। यही कारण है कि जल जीवन मिशन केवल एक पेयजल योजना नहीं बल्कि स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। लेकिन किसी भी योजना की सफलता केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं होती, इसमें जन सहभागिता भी उतनी ही आवश्यक है। हम सभी का दायित्व है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें, नलों को अनावश्यक खुला न छोड़ें, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दें और अपने आसपास के जल स्रोतों को स्वच्छ रखें। याद रखिए, पानी की हर बूंद अनमोल है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि जल की हर बूंद का सम्मान करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल का संरक्षण करेंगे। यही जल जीवन मिशन की भावना है और यही हमारे उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला भी। तो आइए आज हम सभी यह संकल्प लें कि जल को केवल एक संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार मानते हुए उसकी प्रत्येक बूंद का सम्मान करेंगे, क्योंकि सुरक्षित जल ही स्वस्थ जीवन और समृद्ध समाज और विकसित भारत की पहचान है। महात्मा गांधी ने कहा था, प्रकृति प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता पूरी कर सकती है लेकिन किसी एक के लालच को नहीं। यही बात जल पर भी पूरी तरह लागू होती है। अंत में इन्हीं पंक्तियों के साथ, बूंद बूंद से जीवन का आधार, जल बचाना हम सबका अधिकार। आओ मिलकर ले यह ठान, जल संरक्षण बने हमारी पहचान। अभी आप सुन रहे थे फ्लैगशिप कार्यक्रम में नवविहान। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम। सुबह 7:05 पर सूचनात्मक कार्यक्रम आप सुनेंगे आज सुबह। यादों के झरोखे से पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सुबह 7:30 पर। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम अमराई आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। आज आप सुनेंगे लक्ष्मण मसूरिया, अनुराग ठाकुर और साथियों के गाए कुछ लोकगीत, साथ ही छाया शर्मा और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद आप सुन

सुबह 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रसारण किया जाएगा। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9 बजे से 11:30 पर और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक।

शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा दिल्ली से रिले की जाएगी। शाम 5:05 पर चित्रपट संगीत का आनंद आप लेंगे। पाँच बजकर 35 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युवा जगत आप सुनेंगे। आज की बात में चर्चा होगी भारत के खनिज संसाधन विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर। सात गीत संगीत का आनंद लेंगे। शाम 6:20 पर और 7 बजे ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे। शाम 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। बेरा के गोठ का विषय होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। भेंटवार्ता में सफल कृषक से भेंट क्रम में कृषक श्री सुख सागर कैवर्त ग्राम आगडी कोनी विकासखंड मस्तूरी जिला बिलासपुर से राम सनेही से बातचीत आप सुनेंगे और साथ ही सुनिए गीत संगीत और मौसम मंडी की जानकारी। रात 8:15 पर कार्यक्रम रजनीगंधा का आनंद आप लेंगे और रात्रि 9:15 से 10 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण दिल्ली से किया जाएगा।

0: कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान।
0: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में संस्कृत और हिंदी में समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को एक क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। भारत समुद्री नाविक उपलब्ध कराने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। वैश्विक जहाजरानी उद्योग में भारत ने 3,11,936 समुद्री पेशेवरों का योगदान दिया है। BIMCO, ICS, Seafarer, वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार अब वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत का 12.16% का हिस्सा है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक जहाजरानी मार्गों को प्रभावित कर रहे बढ़ते भू राजनैतिक तनावों के बीच संघर्ष संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापारिक जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों की समीक्षा की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलबीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: अभी समाचार दिल्ली से रिले किए जा रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

0: देने के लिए।
1: बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नागरिक केंद्रित शासन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि भारत की जनता प्रत्येक निर्णय और नीति के केंद्र में रहनी चाहिए। लोकसभा में आज

आज सुबह सुनने वाले सभी श्रोताओं को ऐश्वर्य का अभिवादन, स्वागत आप सभी का। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रोताओं, आज का दिन भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत पावन और प्रेरणादायी पर्व है, गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला ये पर्व हमें उस गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है जिसने हमारे जीवन में ज्ञान का दीप जलाया। हमारे यहाँ कहा गया है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है, गुरु ही सृजन है, गुरु ही पालक है, गुरु ही कल्याण का मार्ग है। हमारे शास्त्रों में महर्षि वेदव्यास को आदि गुरु माना गया है। उन्होंने वेदों का विभाजन किया, महाभारत और 18 पुराणों की रचना की। इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। श्रोताओं, गुरु केवल विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक ही नहीं होता। माता पिता, हमारे घर के बुजुर्ग, जीवन के अनुभव, प्रकृति और समय भी हमारे गुरु बन जाते हैं, जो हमें सही राह दिखाए, हमारे भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानने में मदद करे, वही सच्चा गुरु है। श्रोताओं, आज की भागदौड़ के जीवन में हम शायद अपने गुरुओं को धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। गुरु पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि सफलता की हर मंजिल के पीछे किसी न किसी गुरु का मार्गदर्शन अवश्य होता है। श्रोताओं, कबीरदास जी ने गुरु की महिमा बताते हुए कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी यदि गुरु और भगवान दोनों सामने हो तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। यह सच है कि गुरु वह दीप है जो स्वयं जलकर दूसरों का जीवन प्रकाशित करता है। गुरु ज्ञान नहीं, जीवन जीने की कला देते हैं। वे केवल मंजिल नहीं बताते, मंजिल तक पहुंचने का साहस भी देते हैं। ऐसे सभी गुरुओं को हमारा सादर प्रणाम। श्रोताओं, तकनीकी के युग में आज एक बटन दबाते ही सारी जानकारी आपके सामने आ जाती है। आज के युग में जानकारी पाना आसान है, लेकिन सही और गलत का विवेक, जीवन जीने की कला और अच्छे संस्कार हमें गुरु ही सिखाते हैं। यदि संभव हो तो आज अपने किसी शिक्षक या मार्गदर्शक को एक धन्यवाद अवश्य कहें। विश्वास मानिए, आपकी ये दो शब्द उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान होंगे।

0: श्रोताओं, इस गीत के सुंदर भाव के साथ आइए चलते हैं उमा शंकर पांडे जी के पास आज के ट्रैफिक अपडेट के लिए।
1: नमस्कार, प्रतिदिन की भांति यातायात पर आधारित सूचनात्मक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट ऑफ बिलासपुर के साथ मैं हूं उमा शंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है, सभी को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर आज शहर के साथ ही पूरे जिले में अनेकों मंदिरों में यह पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इसी क्रम में आज बेलगाना स्थित श्री अद्वैत परमहंस आश्रम में गुरु पूर्णिमा का भव्य आयोजन होगा, जिसमें काफी दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे आयोजनों में प्रायः देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों से लोग ट्रैक्टर, पिकअप, मेटाडोर या मालवाहक ऑटो जैसे वाहनों में भर कर आते हैं, जबकि हम विभिन्न माध्यमों से लगातार यह बताते आ रहे हैं कि मालवाहक वाहनों में यात्री परिवहन करना खतरे से खाली नहीं होता है। ऐसे वाहनों में सुरक्षित बैठने या पकड़ने की व्यवस्था नहीं होती है, ये घातक कदम हो सकता है। एक नहीं अनेकों ऐसी गंभीर से गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए ऐसी यात्रा से बचकर रहें। इसके साथ ही लगातार हो रही वर्षा के बीच भी संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, शहरी यातायात व्यवस्था को सुगमता से संचालित करने तमाम चौक चौराहों में लाल, हरी, पीली लाइट युक्त यातायात संकेत लगाए गए हैं, जिससे

0: शहर में सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनी हुई है। अभी तक यह सिग्नल लाइट प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलती थी, किंतु देखा गया कि सिग्नल लाइट के चालू होने के पूर्व लोग खतरनाक गति में खतरनाक ढंग से इन चौक चौराहों से वाहन दौड़ाते थे। इसी प्रकार रात 10 बजे के बाद तो कुछ असामाजिक और शरारती तत्व नशे की हालत में बेतहाशा वाहन भगाते देखे जाते थे, जिससे कई बार गंभीर सड़क दुर्घटनाएं भी घट चुकी हैं। ऐसे घातक वाहनों पर अंकुश लगाने एवं किसी भी संभावित सड़क दुर्घटना पर रोक लगाने के आशय से बिलासपुर जिले के SSP एवं DIG श्री रजनेश सिंह ने सभी चौक चौराहों पर लगी सिग्नल लाइट का समय प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक चालू रखने का आदेश दिया है। आमजनों से अनुरोध है, चौक से गुजरते समय सतर्क रहें। विडम्बना इस बात की है कि इस संबंध में आम सूचना के बाद भी प्रथम दिन ही 200 लोगों ने सिग्नल तोड़ा है। ध्यान रहे, ऐसा करने से खतरे की स्थिति तो बनती ही है, 2000 रुपए की बड़ी राशि जुर्माने स्वरूप भरनी पड़ती है। पसीने की कमाई व्यर्थ मत गंवाइए, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: अभी ट्रैफिक अपडेट आपको दे रहे थे उमा शंकर पांडे जी। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को स्टूडियो में शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा बरसात में कंधवा चरने एवं त्वचा रोग संबंधी रोग एवं उनका निदान, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा शरीर में होने वाले तेल व मसों का कैंसर में परिवर्तित होने वाले लक्षणों की पहचान एवं निदान के उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665923100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का STD कोड 20752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 30 जुलाई 2026 और 31 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
2: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी, मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बिलासपुर केंद्र से कार्यक्रम आज सुबह अपनी रेडियो दोस्त ऐश्वर्य के साथ। दोस्तों, बाहर बारिश हो रही है और हाथ में गर्म चाय की प्याली है। मौसम तो एकदम फिल्मी है ना? पर इसी सुहाने मौसम के साथ कुछ मेहमान अनजाने और अनचाहे हमारे घर भी आ जाते हैं। वो अनचाहे अनजाने मेहमान हैं बुखार, खांसी और मच्छर। बारिश आते ही सबसे पहले क्या होता है? सही सोचा आपने, हवा साफ हो जाती है, धूल बैठ जाती है, सांस लेने में आराम होता है। पेड़ पौधे ऐसे लहराते हैं जैसे नहा कर निकले हों। खेतों में किसान के चेहरे पर रौनक आ जाती है और भूजल भी रिचार्ज होता है। लेकिन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब हम कचरा सड़क पर फेंकते हैं तो बारिश वही कचरा उठाकर नाली में डाल देती है। परिणाम नाली जाम, फिर सड़क पर पानी, फिर वही पानी घरों में। और जहां पानी रुकेगा वहां आप समझ गए ना? तो बारिश हमें आईना दिखाती है। हमारा पर्यावरण जितना साफ और हमारा मौसम उतना ही हेल्दी होगा। अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर, यानी कि सेहत की बात पर। बारिश के बाद अस्पतालों में भीड़ क्यों बढ़ जाती है? चलिए पहचानते हैं उन चार दुश्मनों को। पहला है पेट की बीमारियां, टाइफाइड, पीलिया, डायरिया। इनकी वजह दूषित पानी। तो दोस्तों, घर का पानी हमेशा उबालें या फिल्टर करें। बाहर का कटा फल, बर्फ, गोलगप्पे का पानी इस मौसम में अवॉइड करें। याद रखिए, उबला पानी सेहतमंद जवानी। दूसरा आतंक होता है मच्छरों का। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये मच्छर गंदे पानी में नहीं, साफ रुके हुए पानी में पैदा होते हैं, कूलर, गमले, टायर जैसी जगहों में। तो हर रविवार को ड्राई डे मनाइए। 10 मिनट घर चेक कीजिए, पानी मत रुकने दीजिए। शाम को बच्चों को और बुजुर्गों को, साथ में स्वयं को भी फुल कपड़े यानी कि फुल आस्तीन वाले कपड़े पहनें और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। तीसरा आता है स्किन प्रॉब्लम। नमी की वजह से खुजली, दाद, पैरों में फंगस, इनसे बचने के लिए भीगे कपड़े तुरंत बदलें। पैर सुखाकर पाउडर लगाएं, सूती और ढीले कपड़े पहनें। और आखिरी है सर्दी जुखाम। इसमें आपको करना ये है कि जब भी आप भीगते हैं तो तुरंत अपना सिर पोछें, बालों को सुखाएं, गीले कपड़े बदलें और गर्मा गर्म अदरक तुलसी की चाय पिएं। इस मौसम में स्वस्थ रहने के लिए हल्का भोजन, खिचड़ी, दाल चावल, सूप और ताजा भोजन करें। बाहर का स्ट्रीट फूड, ज्यादा तला खाना ना खाएं। घर की नमी सोखने के लिए घर के कोने में नमक का एक कटोरा रखें। कचरा डस्टबिन में डालें। अपने मोहल्ले की नालियां आप साफ रखेंगे तो बीमारियां खुद दूर भागेंगी। दोस्तों, बारिश दुश्मन नहीं है, वो प्रकृति को स्वच्छ करने आती है। बस हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है। और हाँ, घर से बाहर निकलते समय छाता और रेनकोट हमेशा साथ रखें और फिर मानसून का भरपूर आनंद लें।

इस प्यारे गीत के साथ ऐश्वर्य को दें अनुमति आज सुबह कार्यक्रम से। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, आपका दिन शुभ हो और हमारे साथ जुड़े रहें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं पुराने फिल्म गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से। श्रोताओं, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जमाने की बात ही कुछ और है, और उन फिल्मों के गीत जब भी रेडियो पर सुनाई देते हैं तो बहुत सी यादें ताजा हो जाती हैं। तो आइए उन्हीं यादों के गलियारों में चलते हैं और सुनते हैं कुछ मधुर लोकप्रिय गीत।

0: भी से तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना जिसे हमने लिया था चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। आवाज़ थी किशोर कुमार की और इस गीत को लिखा था मजरू ने और धुन बनाई थी एसडी बर्मन ने। अगला गीत सुनते हैं जिस देश में गंगा बहती है फिल्म से, लता मंगेशकर और आशा भोसले के स्वरों में। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत से सजाया है जय शंकर जयकिशन ने।

और आइए अगला गीत सुनते हैं सीआईडी फिल्म से, गीता दत्त और मोहम्मद रफी के युगल सरों में जानिसार अख्तर के लिखे गीत को संगीत से सजवारा है ओपी नैयर ने।

बाप रे बाप। आइए इस फिल्म से सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वरों में ये गीत। गीत के बोल जानिसार अख्तर के हैं और धुन ओपी नैयर की।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी, मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 1-4447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7-0-6-5-5-1-4-4-4-7 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। और आइए अब सुनते हैं छाया फिल्म से तलत महमूद और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में ये गीत। गीत के बोल राजेंद्र किशन के हैं और संगीत सलील चौधरी का।

और आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म बरसात से। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में गीत शैलेंद्र का है और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म आजाद से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। राजेंद्र किशन का गीत है और सी रामचंद्र जी का संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों के झरोके से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए आइए जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में

0: ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फूर्ति और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। यह विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
4: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाबू श्री कृष्ण देव रायलू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित।

0: किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने

0: पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है पीओके में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले दो दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for breaking horizontal and vertical silos within government to ensure close coordination, reviews future action agenda of ministries and departments, Lok Sabha to resume discussion on public examinations prevention of unfair means, Amendment Bill 2026 today. Delhi government approves Lakshmi Yojana to provide financial assistance of 2,500 rupees per month to every eligible woman. Death toll and brutal crackdown by Pakistani forces in POJK rises to 30 during past 2 days. Iran launches multiple ballistic missiles towards US forces in West Asia. US and Saudi forces carry out joint precision strikes against Iran-aligned groups in Iraq. And Gulveer Singh becomes first Indian to win silver medal in the men's 10,000 meter race at the Commonwealth Games. Harjinder Kaur also bagged silver medal in women's weightlifting event. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries to the government at his residence yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. We have more from a correspondent.
3: During the meeting, Mr. Modi called for a strong focus on team building across ministries and departments, urging officers to work with a shared sense of purpose. He emphasized the need to break both horizontal and vertical silos within the government so that departments function.

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा।

0: बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: आप सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम अमराई, और आइए इसी क्रम में आगे सुनते हैं छाया शर्मा और साथियों के गायक कुछ लोकगीत।

छाया शर्मा की गाए इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, सुबह के 9 बजने वाले हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों में इशारा हो गया।
0: विविध भारती से चित्र लोगों को रब गूंज रही है। शान और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज़।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ चल दिए बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लापता लेडीज फिल्म का ये गाना आपने सुना और अब अंकित तिवारी की आवाज। फिल्म का नाम है एक विलन।

सुबह के 9:24 हुए हैं। दिन की इस भागदौड़ में आप विविध भारती के संग हैं और शान की आवाज गूंज रही है जो किसी के मुस्कुराने की बातें कर रहे हैं।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? शोधन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज के फनकार।

0: आज के फनकार हमारे आज के फनकार हैं कॉमेडियन अभिनेता जॉनी वॉकर।
1: मारे,

0: जी हाँ, सिने जगत का ये लोकप्रिय नाम है इनका, लेकिन इनका नाम कुछ और है। आपको बता दें, 11 नवंबर 1920 के दिन इनका जन्म हुआ था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के रूप में। बाद में ये फिल्मी नाम गुरुदत्त साहब ने इन्हें दिया, जॉनी वॉकर। पर्दे पर इन्हें देख करके आप जरूर मुग्ध हो गए होंगे, क्योंकि कॉमेडी के रूप में इन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया।
1: प्यार का हो बे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा।

भारतीय हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय कॉमेडियन के रूप में जॉनी वॉकर हमेशा याद किए जाएंगे। बिना पिए पीने वाले की भूमिका इतनी सुंदर ये पर्दे पर निभाते थे कि इनकी छवि को देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे, दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। इनका बहुत ही आकर्षक चेहरा था, उस पर से पेंसिल की तरह पतली इनकी मूछें थी जिन्हें देखते ही हंसी आ जाए। जॉनी वॉकर, इनका जन्म 11 नवंबर 1920 को हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में, और एक मिल वर्कर के यहाँ इनका जन्म हुआ था। बाद में इनका परिवार बॉम्बे में आ गया और यहाँ इन्होंने बहुत सारे काम किए जीविकोपार्जन के लिए। फिल्मों में इन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे। और आगे की बातें से पहले हम आपको गाना सुनवा रहे हैं सीआईडी फिल्म का।

0: मुश्किल जीना यहाँ जरा हटके।
1: जॉनी वॉकर की फिल्मों का सुनहरा दौर था सन 1951 से लेकर सन 1997 तक, यानी 1997 तक। मुंबई आने के बाद जॉनी वॉकर ने बेस्ट की बसेस में कंडक्टर का काम किया। बेस्ट की बसेस में ये कॉमेडी का रोल भी करते थे और जो पैसेंजर थे उनका मनोरंजन करते थे, लोग हंस

उस जमाने के सुप्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी जॉनी वॉकर को बस में देखते रहते थे, वहाँ ये एक्टिंग करते थे। बलराज साहनी सन 1951 में फिल्म बाजी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उसी दौर की फिल्म हलचल में इन्हें एक भूमिका दी गई। गुरुदत्त साहब जो कि उस जमाने में फिल्म का निर्माण करते थे, उन्होंने इनके काम को देखा और पसंद किया और बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को एक नया नाम दिया, जॉनी वॉकर।

0: चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मास्टर राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे।
1: फिल्मकार गुरुदत्त जॉनी वॉकर की भूमिका को देखकर बहुत ही प्रभावित होते थे, खासतौर से पीने वाले की भूमिका। लेकिन आगे चलकर इन्होंने तरह तरह की भूमिकाएं की, लेकिन उसमें कॉमेडी का पुट हमेशा होता था और उस जमाने के नायक के बराबर कॉमेडियंस को भी सम्मान मिलता था।

0: बात नहीं है डर की, ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर,
1: लाइन क्लियर बाय।
2: इनकी कामयाब फिल्में थी मेरे महबूब, सीआईडी, प्यासा, चोरी चोरी। इन फिल्मों में कॉमेडी के साथ साथ चरित्र अभिनेता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और इन्हें बहुत ही सम्मान मिला। सन 1950 से लेकर 1960 तक फिल्मी करियर जॉनी वॉकर का बहुत ही सुनहरा था।

0: किंतु इसके बाद फिल्मकार गुरुदत्त के निधन के बाद जॉनी वॉकर का करियर डगमगा गया। सन 1964 से इन्हें एक नया मोड़ मिला फिल्मी करियर में, जब जॉनी वॉकर डायरेक्टर बिमल रॉय और विजय आनंद से मिले और इन दोनों ही निर्देशक और फिल्मकारों ने इन्हें बहुत ही गोल्डन चांस दिए।
1: जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, जंगल में।

0: जॉनी वॉकर को अवार्ड्स भी मिले। फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मधुमती फिल्म में विशेष भूमिका के लिए, फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड शिकार फिल्म की भूमिका के लिए।
1: आज दहिया का याद आवत है,
2: तबीयत नरम है आज।
1: नरम है तो हमसे पूछो नुक्सा, कंपाउंडर के हाथ के नीचे भी काम किया है, बोलो क्या तकलीफ है।
2: नींद नहीं आती रात भर।
1: नींद नहीं आवत है पर का है? रोग तो बोलो, सर दुखत है, पेट दुखत है?
2: दुखता उगता नहीं, कस मसा है सारा बदन, नींद नहीं आती।
1: ओ ये तो नवा रोग लगत है, सोचो तेज बहादुर, खूब सोचो।
2: सोचना कैसा, कुछ इलाज करो ना हमारा।
1: ठहरो, पहले ये बताओ सोवत कैसी हो, चित पट के करवट
2: कैसे? ऐसे
3: बराबर लेटो,
2: भाता है ना ऐसा लेटना।
3: नींद ना आवे तो क्या फायदा।
2: अच्छा ये कैसा?
3: दुई कौड़ी का।
2: तो फिर कैसे?
3: इधर घूमो करवट,
2: पल्ले नहीं पड़ता, तुम ही घुमा लो ना।
3: गोबर गणेश कहीं की।
0: जॉनी वॉकर ने 300 फिल्मों में काम किया। इनकी चर्चित फिल्में हैं सन 1951 में बाजी।
4: मिस्टर जो डिक्रूज, सन ऑफ जॉर्ज डिक्रूज, तुम उधर क्या देखता?
1: उधर मैं टेलीफोन देखता था। तुमने कितना अच्छा टेलीफोन लगाया, नहीं डबल कनेक्शन वाला, हॉल में भी लगा और बेडरूम में भी।
4: यू फूल, तुम हमको फूल बनाता, तुम टेलीफोन को नहीं छोकरी को देखता था।
1: छोकरी? तुम्हें टेलीफोन छोकरी के हाथ में था?
4: यस।
1: ओ गॉड, जब भी हम सोचता था वो टेलीफोन वाला हाथ आदमी का नहीं हो सकता है, कहीं को हम खाली उसका हाथ देखता था ना। लेकिन डार्लिंग, जो बात तुम्हारे हाथ पे है ना वो किसी में नहीं। डार्लिंग तुम इसी लड़की का बात करता था ना, इसका अंकल पैसे नहीं भेजता है?
4: हम उसका बात करते तो वो ठीक है, पर तुम काहे को उसका बात करता है? डोंट फॉरगेट तुम हमारा पेइंग गेस्ट है।
5: वो तुम्हारा पेइंग गेस्ट हो या हमारा, रेंट किसी को नहीं देगा। लूसी बहुत रात हो गया, सोने दो ना बेचारे को, नहीं सोएगा तबीयत खराब हो
3: जाएगा। राइट राइट।
4: मैं सूजन फर्नांडिस, तुम अभी तक नहीं सोया?
5: कैसे सोएगा, नींद नहीं आता।
1: जब तक मैं नहीं सोऊंगा ये नहीं सोएगी।
4: यू शट अप। सूजन तुम्हारा ड्रेसिंग गाउन किधर है? तुम क्या बोला?
1: मैं बोला कि तुम सिस्टर कितना अच्छा है, साथ में सोता है साथ में उठता है, मैं तुम लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा।
4: हम जानते तुम इधर ही रहेगा।
0: सन 1952 में जाल।
3: क्या मुसीबत है, लोग रोमांस का भी चांस नहीं देते हैं।
4: अजी बात नहीं है, ये कोई रोमांस करने का जगह है? यहाँ तो लोग आएगा ही। चलो किधर घूमने को चले, गाड़ी नीचे उतारो।
3: नीचे उतारने के लिए थोड़ी ऊपर चलाया है।
4: फिर?
3: इसलिए कि जब तक तुम ये नहीं बताएगा कि तुम हमसे शादी कब बनाएगा, गाड़ी नीचे नहीं जाएगा।
4: ओहो, तुम्हारा खोपड़ी को सर्विस करना पड़ेगा। अरे बाबा, जब तक तुम अंकल से बात नहीं करेगा तो शादी कैसा होगा?
1: अंकल? ओ नो, हम उससे बहुत डरता है, वो तो हमारा होल बॉडी का सर्विसिंग कर डालेगा।
4: नहीं बाबा, वो ऐसा नहीं है। प्रॉमिस करो तुम घर आएगा।
3: प्रॉमिस जरूर आएगा, काय को नहीं आएगा। अभी अंकल हमको खलास करेगा ना, जब भी आएगा।
0: 1953 में ठोकर, 1954 में टैक्सी ड्राइवर, देवदास, मैरीन ड्राइव, रेलवे प्लेटफॉर्म, चंगेज खान, नया दौर, मधुमती, अमरदीप, काला पानी, लाइट हाउस, कागज के फूल।
6: मिस्टर आयर, आर यू देयर?
7: हम तुम

0: हम तुम जिसे कहता है शादी, लूनो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे, माइंड यू जाएगी आजादी।
1: ब्लैक कैट, जिंदगी और ख्वाब, सूरज, मॉडर्न गर्ल, शिकार, दिल और मोहब्बत, और इनकी आखिरी फिल्म थी 1997 में चाची 420। अपने जमाने की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शकीला की बहन थी नूरजहां, जिनसे इनका विवाह हुआ था।

अभी विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार रायपुर से रिले किए जाएंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश भर के चीनी व्यापारियों पर 1 अगस्त से 30 नवंबर तक भंडारण सीमा लागू की जाएगी। राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में विशेष अभियान चलाकर मानसून के दौरान करीब 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने कहा कि सभी चीनी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक स्थिति को अपडेट करना होगा। प्रदेश में हो रही अच्छी बारिश के बीच नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी 14 नगर निगम, 59 नगर पालिका और 121 नगर पंचायतों को लक्ष्य के अनुसार पौधारोपण की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। अगले महीने से शुरू होने वाले इस विशेष पौधारोपण अभियान में कुल 4,95,500 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि पुलिस का जज्बा ही सुरक्षित, शांत और विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत है। वे रायपुर में आयोजित जज्बा पुलिस अवार्ड्स 2026 कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सम्मान पूरे पुलिस बल की सेवा भावना और मनोबल का सम्मान है। मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता में पुलिस और सुरक्षा बलों के साहस और बलिदान को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रजत पदक जीतने वाली पुलिस की सहायक उपनिरीक्षक ज्ञानेश्वरी यादव की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने खेल और सेवा दोनों क्षेत्रों में प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। एमबीए में प्रवेश के लिए होने वाली कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट की अधिसूचना जारी हो गई है। परीक्षा का आयोजन आईआईएम इंदौर करेगा। ऑनलाइन आवेदन 3 अगस्त से शुरू होंगे। उम्मीदवार 15 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा 29 नवंबर को देश के 170 से अधिक केंद्रों में आयोजित की जाएगी। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले के मारवाही थाना क्षेत्र के मणवाही गांव में आकाशीय बिजली गिरने से धान की रोपाई कर रही एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 महिलाएं घायल हो गई। घायलों का उपचार मरवाही अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर

पहुंची और जांच शुरू कर दी है। वहीं मनेन्द्रगढ़ जिले के खड़गवां ब्लॉक में अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग झुलस गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले खेतों, ऊंचे स्थानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी ओडिशा और उससे लगे पश्चिम बंगाल के ऊपर एक अवदाब बना

0: के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी ओडिशा और उससे लगे पश्चिम बंगाल के ऊपर एक अवदाब बना हुआ है, इसके असर से प्रदेश में बारिश हो रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने ई और टी संवर्ग की शासकीय शालाओं में शिक्षक के 1,654 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने विज्ञापन जारी कर विषयवार पदों की जानकारी दी है। राजधानी रायपुर में कल पुलिस की टीमों ने एक साथ विभिन्न मेडिकल स्टोरों पर छापेमार कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार 30 से अधिक मेडिकल दुकानों पर छापा मारा गया। इस दौरान डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना प्रतिबंधित दवाइयां बेचने वाले 4 मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर कॉलेज कांकेर के प्रशिक्षक ब्रिगेडियर पी के पोनवार का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री पोनवार के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित एवं सशक्त बनाने में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर के चीनी व्यापारियों पर 1 अगस्त से 30 नवंबर तक भंडारण सीमा लागू की जाएगी। राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में विशेष अभियान चलाकर मानसून के दौरान करीब 5,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: अभी समाचार रायपुर से रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद। प्रस्तुति है पद्मा मणि की।
2: हेलो।

0: नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के हेलो आपकी पसंद के इस कार्यक्रम में। आइए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला। हेलो आपकी पसंद से मैं पद्मा।
1: हेलो आपकी पसंद बहना जी, प्रणाम, नमस्कार।
0: नमस्ते, बताइए कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं राजू यादव, ग्राम उपरहका श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
0: कैसे हैं आप?
1: मैं तो बहना जी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, बिंदास हूँ और बगीचे में ये अपनी जो खेती है, खेती में दवा का छिड़काव कर रहा हूँ इस समय।
0: तो क्या लगा हुआ है खेत में
1: इस समय? बहन मूंगफली लगी हुई है, 120 दिन में तैयार हो जाएगी।
0: फिर मंडियों में?
1: मंडी ले जाते हैं, महुआ मंडी।
0: अच्छा, जहाँ आप रह रहे हैं उस जगह की कोई खास बात बताना चाहेंगे?
1: खास बात ये है बहन, हमारे जो हमारा बुंदेलखंड है, ये अलाउदल की नगरी है, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी का किला है, गंगा जी है, बेतवा जी है, जमुना जी का संगम है यहाँ।
0: बहुत खूब खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी
1: जी बहन जी। जी
0: चलिए गीत बता दे, कौन सा सुनेंगे आज?
1: तकदीर का तमाशा, मैं कितना खुश नसीब हूँ अपने बीबी बच्चों के करीब हूँ। कुछ इजाजत हो तो दो लाइन गुनगुना दूं बहन?
0: कहे के अभी तो खूब गुनगुनाया आपने।
1: नहीं, ये दो शब्द शायरी है बहन।
0: चलिए बोलिए।
1: हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, सपनों की दौलत हम आप पर लौटाते हैं, ना कोई फूल है आज हमारे दामन में, पर बहना जी आपके आने पर पलकें बिछाती हैं।
0: वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए सुनिए अपनी पसंद का गाना।
2: अपने

0: हेलो
1: हेलो, आपकी पसंद से मैं पद्मा, बताइए कौन बोल रहे हैं?
0: हेलो पद्मा मैम।
1: हाँ जी, आवाज आ रही है आपको?
0: पद्मा मैम नमस्ते, प्रणाम।
1: नमस्ते, कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, और मैं सही मायने बोल जाता है देर से लगा रहा था कि मेरा फोन आज लग जाए और पद्मा मैम से बात हो जाए। काफी वर्षों बाद आपसे बात हो रही मैम।
1: चलिए, हमें भी बहुत खुशी है। बस अपना नाम बता दीजिए, श्रोता वेट कर रहे हैं।
0: आपका नियमित श्रोता जसवंत साहू संबलपुर से।
1: कैसे हैं जसवंत, क्या कर रहे हैं इन दिनों?
0: बहुत अच्छा हूँ और बहुत खुश भी हूँ आज कि मेरा फोन लगा अंततः बिलासपुर में।
1: बिल्कुल लगेगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ये तो है ना?
0: आप जैसे अनाउंसर अगर बिलासपुर में हो तो उनकी बातों से हार तो हो ही नहीं, क्योंकि जीवन के हर मोड़ में आप हमारे साथ हो। आपकी बातों से, आपके विचारों से और आपके जो बातें आप रेडियो से बोलते हैं उनसे हम इतना प्रभावित होते हैं कि आप सारा चीज को अपने जीवन में अपना लेते हैं मैम।
1: बिल्कुल, रेडियो तो हमारा दिन रात का साथी है, और बचपन से लेके हमारे बुढ़ापे तक का।
0: जी जी सही है मैम, जब से मैं रेडियो सुन रहा हूँ ना, समझ लीजिए मुझे संभाल रहा है रेडियो।
1: वो तो है।
0: और जीवन की हर परिस्थिति में जब भी मैं उलझा हूँ, लगा मुझे कि मैं अब हार जाऊंगा, लेकिन मुझे संभालने के लिए आप जैसे लोग और रेडियो मेरा साथ दिया।
1: और खुशी में भी तो इतने सारे गीत जिसमें कि हम झूमने लगे, नाचने लगे, साथ में गाएं, और मनोरंजन के साथ साथ जानकारियां, ये सब तो रेडियो हमें हमेशा प्रदान करता रहता है। चलिए गीत बता देंगे, आज कौन सा सुनेंगे?
0: मैम अभी मौसम बहुत सुंदर है, हरा भरा हो चुका है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। हमारे सामने अब स्वतंत्रता दिवस भी नजदीक है, क्योंकि आजादी का हम पर्व मनाने वाले हैं अभी 15 अगस्त को, तो मैं उनसे संबंधित राष्ट्रभक्ति से प्रेरित गीत सुनना चाहूंगा मैम। गीत के बोल हैं, तेरे मिट्टी में मिल जावा, तेरे नदियों में बह जावा, इस टाइप के गीत के बोल है, वही सुनाइएगा।
1: केसरी फिल्म का गीत है ये?
0: जी जी हाँ, केसरी फिल्म का ये गीत बहुत बहुत अच्छा है, तो सुनने से शरीर में ऊर्जा का एक संचार होता है।
1: वो तो है ही, मातृभूमि के लिए हमेशा हम सभी तैयार रहते हैं और रहना भी चाहिए।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से आपका निमित होता इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं इंद्रभान जी?
1: ठीक है मैडम, आप भी अच्छी हैं, मैं भी अच्छा हूँ। ड्यूटी पीरियड में हूँ मैडम और वही आपका कार्यक्रम फोन करने के लिए अभी जंगली नर्सरी के बीच में आया हूँ। मौसम तो एकदम बादल किया है मैडम और इसके बाद पानी अभी गिर रहा था, इसके बाद बंद हो गया है और चारों तरफ बादल है, हरियाली है, हरे हरे पत्ते हैं, पेड़ पौधे हैं। और लोगों से मैं आग्रह करूंगा मैडम कि इस मौसम में अपना बच्चों का विशेष ध्यान दें, क्योंकि इससे वायरल फीवर बुखार चल रहा है। और दूसरी जानकारी ये है मैडम, जैसे ग्रामीण लोग क्या करते हैं कि जैसे जमीन में सोते हैं तो क्या करते हैं मैडम, जैसे सोते तो लाइट वाइट बंद कर देते हैं, तो कोशिश करें कि वहाँ पर जमीन में न सो के खाट वाट में सोए, और हो सकता है कि करेर सांप निकल जाए, घर के क्या गेट के अंदर से घुस जाए या नली से घुस जाए, तो नली में घुसे तो जाली बांध दे, या गेट के अंदर घुस रहा है तो वहाँ पर वो फाका को बंद कर दे, और जो झोपड़ी है वहाँ पर जैसे डगा लगा सटा है आपका खपरा में या कोई बम्बू वम्बू उसमें सटा दिए हैं, तो कोशिश करें वहाँ से हटा दे, हो सकता है सांप चढ़ के आपके बिस्तर में कंडी से चढ़ते हुए आपको काट दे, तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि करेर सब काटता है कि मैडम वो चीटी जैसा लगता है।
0: हाँ।
1: तो उस समय फिर बाद में लोग झाड़ फूक कराते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा मैडम झाड़ फूक न कराएं, कोशिश करें कि तुरंत हॉस्पिटल तुरंत चले जाए। वो आप
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं इंद्रभान जी। और एक चीज और, बारिश का मौसम है, उनसे हम घबरा के उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये न करें। और आजकल उनको पकड़ने वाले पर्यावरण मित्र भी हैं, तो उनसे भी संपर्क किया जा सकता है।
1: तो आज मैं दिसंबर तो मैंने अपने पसंद के गीत बता देती हूँ, बिना अजनबी बिगी बिगी रात मीठी मीठी बातों में ऐसा लगता है। गाय किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राजेश खन्ना, जीनत तमान जी का गाना अजनबी।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते
1: दिया नारवानी हूँ, चेको बड़ा खेल से।
0: कैसे हैं नारवानी जी?
1: बहुत बढ़िया, बस बरसात के मौसम में बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही है।
0: आपकी आवाज़ गूंज भी रही है। खैर जल्दी हम बात कर लेते हैं, कहीं फोन ना कट जाए।
1: जी जी, अभी तो यहाँ बरसात चालू है, रात को भी पानी पड़ा तो बहुत, अभी भी झिम झिम पानी टपक रहा है। मौसम तो 15-20 दिन सुहाना है, गर्मी भाग गई है, आपके तो एक से बढ़कर एक है।
0: बिल्कुल, हमेशा जुड़े रहिए कार्यक्रमों से और अपनी समीक्षा भी लिख भेजिएगा। अब पसंद बता दीजिए।
1: गाना सुन रहे, सावन भी कल से आने वाला परसों से, नए जमीन झिमी गए सावन, सुलग सुलग जाए मन, मंजिल फिल्म गीत है लता की, आज सुनाइएगा।

0: हेलो
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते
1: धर्मेंद्र अरवाल बोल रहे हैं मैडम, ग्राम बोरोदिया वल्लभ जिला सागर।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम।
0: क्या करते हैं आप?

0: वैसे
1: खेती किसानी करते हैं, किराने की दुकान।
0: तो खेती किसानी में क्या अभी लगा हुआ है आपके?
1: सोयाबीन लगा, मक्का लगा।
0: पौष्टिक चीजें लगाई हैं आपने?
1: जी मैम।
0: चलिए तो पसंद बता दीजिए।
1: पसंद रहेगी आज साजन चले 17 रुपए का,
0: कोई सा भी।
1: जी

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, बताएं कौन बोल रही हैं।
1: मैं बिलासपुर से किरण बोल रही हूँ।
0: किरण, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताएं।

0: हम भी अच्छे हैं।
1: आपका मतलब जो भी प्रोग्राम होता है ना, जितने भी एंकर हैं, मेरे को इतने अच्छे लगते हैं ना, उनका जो सेवा कर रहे हैं रेडियो पे, जो विचार देते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बाय फेस में मिलना चाहती हूँ, पर पता नहीं कब मिल पाएंगे। कभी एक दिन मैं ऐसा करूंगी प्रयास।
0: जरूर जरूर, हमेशा स्वागत है सभी श्रोताओं का। अपने अपने विचार तो प्रस्तुत करते ही है, श्रोता भी हमारे साथ साझा करते हैं ईमेल के जरिए, पत्रों के जरिए, हमेशा जुड़े रहिए। क्या करते हैं अंजनिया?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ, पहले मैं घर के काम करती हूँ। मेरे अंदर जो जितना भी दुनिया में गलत चल रहा होता है या सही गलत का सब चलता रहता है कि कैसे ठीक हो।
0: चलिए अंजनी जी, पसंद बताइए अपनी।
1: मेरी पसंद है तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, कैसे
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, राम बसोरा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जी
0: हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। क्या करते हैं?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ।
0: क्या लगा हुआ है अभी खेत में?
1: अभी हमने सोयाबीन की फसल लगाई है। और आपको बताऊँ, अभी हम खेत में काम कर रहे हैं खरपतवार निकालने का। काफी अच्छा मौसम चल रहा है, ठंडी हवाएं भी चल रही है।
0: इसीलिए हमें आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, तो आप पसंद बता दीजिए अपनी।
1: जी, फिल्म का नाम है प्यासा सावन और गाने के बोले मेघा रे मेघा मत परदेस।
0: चलिए, मेघा परदेश तो नहीं गए हैं, हम सभी के साथ ही हैं, बरस रहे हैं। चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: धीरज रबारी बात कर रहा हूँ गुजरात से।
0: कैसे हैं आप धीरज जी?
1: मैं मजे में, आप कैसी हो दीदी?
0: हम बहुत अच्छे हैं। क्या चल रहा है इन दिनों गुजरात में?
1: देखा जाए तो मौसम यानी खुशनुमा मौसम है और मोर अपनी आवाज से और बारिश को बुला रहे हैं। देखा जाए तो इस मौसम में मोर ज्यादा बोलते हैं, अच्छा भी लगता है। प्रकृति का एक जीव है जो बारिश को बुलाने में बहुत उनका योगदान ज्यादा रहता है।
0: सारे जीव जंतुओं का जो है योगदान इकोसिस्टम के लिए बहुत आवश्यक है।
1: जी, आपकी बात सही है और इनकी संभाल रखने की हमारी जिम्मेदारी है।
0: और बारिश के दिनों में तो स्वास्थ्य का भी खूब ख्याल रखें।
1: ऋतु में आपने बताया कि सेहत का भी ध्यान रखना पड़े, तो इस ऋतु में ज्यादातर ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए और स्नान करने के लिए थोड़ा गर्म पानी करना चाहिए। और हो सके तो जो बारिश का पानी जब आता है तो उसका कई जगह पर हमने कई लोगों ने उसका जल संचय किया है, यानी संग्रह किया है। और जब बारिश की खत्म हो जाती है, जब पानी की दिक्कत आती है, तो वो पानी यानी गर्म करके पीने के लिए और रसोई के लिए यूज करते हैं, यानी उपयोग करते हैं।
0: भूमि है और जल संग्रह से फिर धरती माता की प्यास भी बुझती रहे, पानी की किल्लत महसूस नहीं हो पाएगी हमें।
1: जी, जी।
0: और पानी उबाल के पिए ये भी बहुत जरूरी है, ताजा खाना खाएं।
1: जी,
0: तो चलिए धीरज जी, श्रोता आपको सुन रहे हैं, आप फरमाइश भी बता दीजिए।
1: जी, गाना सुनना है मुझे रुदाली फिल्म का, लता मंगेशकर के आवाज में, दिल हूं करे।

0: हेलो जी, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।
1: जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा।
0: कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आकाशवाणी के परिवार के सदस्य बिलासपुर।
0: हम सभी बहुत अच्छे हैं, मजे में हैं। बताइए जबलपुर के हालचाल, भेड़ाघाट में अभी तो इन दिनों पानी किस तरह से नजर आ रहा है?
1: इस बार तो अभी कमी है, गेटेड नहीं खुले बरगी बांध।
0: तो सैलानी तो जाते होंगे, लेकिन एक चीज ये है कि अभी सेल्फी खिंचाने के चक्कर में बहुत पानी के नजदीक चले जाते हैं और दुर्घटनाएं सुनने को देखने को मिल रही है। बस इससे बचना है।
1: इससे बचना चाहिए ना, वहाँ पे जाते हैं ही तो है, सेल्फी वगैरह लेने के चक्कर में कई हादसे होते रहते हैं।
0: ये नहीं होना चाहिए, सब ध्यान रखें। चलिए गीत बता दीजिए, फिर
1: सुना दीजिए। पर्वत के पीछे चंबे लगा महबूबा।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: नाम मैं माखन वर्मा बोल रहा हूँ दीदी। ठीक
0: कैसे हैं माखन वर्मा जी?
1: है दीदी। क्या है कि धान की रोपाई काम चल रहा है दीदी।
0: तो व्यस्त हैं सभी
1: जी दीदी।
0: और पानी?
1: पानी तो बहुत बारिश हुआ है दीदी एक हफ्ता पहले। क्या है कि आसपास में नदी नाले हैं,
0: उफान आ गया उसमें
1: जी दीदी।
0: तो फिर जो निचले इलाके हैं वो भर जाते हैं, तो कैसे करते हैं आप लोग?
1: पानी खाली होने के बाद उसमें रोपाई उपाई करते हैं दीदी, थोड़ा थोड़ा का जुगाड़ करके।
0: बस यही है, अतिवृष्टि भी मुश्किल है हमारे लिए, अनावृष्टि भी।
1: जी दीदी।
0: पर्यावरण की सुरक्षा का ख्याल हम सभी को रखना है कि संतुलित रहे सब कुछ।
1: मैं तो 2-3 पेड़ लगाए हूँ दीदी और उसी का
0: संरक्षण भी कर रहे हैं।
1: जी
0: बहुत जरूरी है, हर वर्ष ये हम करते हैं।
1: दीदी पेड़ पौधे लगाएंगे तभी आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण में सहायक होंगे दीदी।
0: बिल्कुल। गीत बता दीजिए।
1: सावन को आने दो मत सुने दीदी, तुम्हें गीतों में ढालूंगा सावन को आने दो।
0: टाइटल सॉन्ग चलिए पहुंच रहा है आप तक।

0: ये था हमारा आज का हेलो आपकी पसंद, जिसमें हमें तकनीकी सहयोग मिला सिल्वेरियस लकड़ा का। तो अब चलते चलते यही कहेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए हमें उस कार्यक्रम से जिसका नाम है
1: हेलो

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद, प्रस्तुति थी पद्ममणि की। और आइए अब चलते हैं उमा शंकर पांडे जी के पास आज की ट्रैफिक अपडेट के लिए।
1: नमस्कार, प्रतिदिन की भांति यातायात पर आधारित सूचनात्मक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट ऑफ बिलासपुर के साथ मैं हूं उमा शंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है, सभी को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर आज शहर के साथ ही पूरे जिले में अनेकों मंदिरों में यह पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इसी क्रम में आज बेलगाना स्थित श्री अद्वैत परमहंस आश्रम में गुरु पूर्णिमा का भव्य आयोजन होगा, जिसमें काफी दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे आयोजनों में प्रायः देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों से लोग ट्रैक्टर, पिकअप, मेटाडोर या मालवाहक ऑटो जैसे वाहनों में भर कर आते हैं, जबकि हम विभिन्न माध्यमों से लगातार यह बताते आ रहे हैं कि मालवाहक वाहनों में यात्री परिवहन करना खतरे से खाली नहीं होता है। ऐसे वाहनों में सुरक्षित बैठने या पकड़ने की व्यवस्था नहीं होती है, ये घातक कदम हो सकता है। एक नहीं अनेकों ऐसी गंभीर से गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए ऐसी यात्रा से बचकर रहें। इसके साथ ही लगातार हो रही वर्षा के बीच भी संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, शहरी यातायात व्यवस्था को सुगमता से संचालित करने तमाम चौक चौराहों में लाल, हरी, पीली लाइट युक्त यातायात संकेत लगाए गए हैं, जिससे शहर में सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनी हुई है। अभी तक यह सिग्नल लाइट प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलती थी, किंतु देखा गया कि सिग्नल लाइट के चालू होने के पूर्व लोग खतरनाक गति में खतरनाक ढंग से इन चौक चौराहों से वाहन दौड़ाते थे। इसी प्रकार रात 10 बजे के बाद तो कुछ असामाजिक और शरारती तत्व नशे की हालत में बेतहाशा वाहन भगाते देखे जाते थे, जिससे कई बार गंभीर सड़क दुर्घटनाएं भी घट चुकी हैं। ऐसे घातक वाहनों पर अंकुश लगाने एवं किसी भी संभावित सड़क दुर्घटना पर रोक लगाने के आशय से बिलासपुर जिले के SSP एवं DIG श्री रजनेश सिंह ने

0: सभी चौक चौराहों पर लगी सिग्नल लाइट का समय प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक चालू रखने का आदेश दिया है। आमजनों से अनुरोध है चौक से गुजरते समय सतर्क रहें। विडंबना इस बात की है कि इस संबंध में आम सूचना के बाद भी प्रथम दिन ही 200 लोगों ने सिग्नल तोड़ा है। ध्यान रहे, ऐसा करने से खतरे की स्थिति तो बनती ही है, 2000 रुपए की बड़ी राशि जुर्माने स्वरूप भरनी पड़ती है। पसीने की कमाई व्यर्थ मत गंवाइए, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: अभी आप सुन रहे थे उमाशंकर पांडे से आज की ट्रैफिक अपडेट। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, सुबह के 11 बजने वाले हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
2: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी।
0: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में।
2: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
0: जी श्रोता, वे मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
2: जी,
0: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
2: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
0: एक बार की बात है श्रोताओं, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
2: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
0: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
2: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
0: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
2: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
0: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
2: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है, यदि हम में निरंतरता बनी रहे और
0: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
2: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
0: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
2: और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
2: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800 4405599 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी

0: audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया गया।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
3: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रहे थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
2: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
3: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
2: मेरे मन में एक बात आ रही है।
3: वो क्या?
2: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
3: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
2: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेन्सबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है जब जॉन लगभग 11 साल के थे।

शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को। जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए।

0: 1923 में वो लिंटन क्रेसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, जॉन क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा। हाँ, और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन हाँ, मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ जैसा तुमने कहा था।
1: अच्छा
2: ये देखो।
1: हेलो, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
2: छोटे छोटे छेद? हाँ, उनसे क्या होगा?
1: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
2: अच्छा।
1: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
2: वाह।
1: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है।
2: चलो करके देखते हैं।
1: इसको इसमें छेद तो कर दिए। हाँ। अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
2: ये प्रोजेक्शन लैंप में यहाँ रख देता हूँ।
1: हाँ। बनती नजर आ रही
2: है। देखो सामने दीवार पर देखो। जॉन लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
1: और घुमाओ, और घुमाओ। शाबाश शाबाश, ऐसे ही लगता है हमें कामयाबी मिल रही है। हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
2: हमारी मेहनत रंग लाएगी।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि अभी मंजिल बहुत दूर है। इसको मैंने यहाँ रखा, ये इसको दबाया। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखता हूँ कि क्या होता है।
1: विलियम।
2: हाँ जॉन।
1: प्रोजेक्शन लैंप ऑन करो।
2: करता हूँ।
1: हाँ, और सुनो।
2: हाँ।
1: अब कमरे में अंधेरा करो।
2: एक मिनट।
1: हाँ,
2: मैं ये लाइट बंद कर देता हूँ।
1: हाँ ठीक है। और सुनो, स्क्रीन ऑन करो।
2: हाँ, ठीक है।
3: अरे वाह जॉन। हाँ? देखो सामने।
1: अरे हाँ,
3: क्या बात है।
1: ये तो कमाल हो गया। मैंने कहा था ना कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी।
3: हाँ जॉन। हाँ। हमें कामयाबी मिल गई। कितनी मेहनत की थी हमने।
1: हाँ
3: जॉन, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत
1: तुम्हें विलियम, बहुत बहुत बधाई।

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशिष्ट व्यक्ति है जॉन लोगी बेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर
2: जी। साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
3: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव लगती है।
2: संभव है श्रीमान, ये संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे? आइए। आइए आइए, इस तरफ।
3: इधर?
2: अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। इधर? थोड़ा सा
3: इधर।
2: अब ठीक है। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
1: ये तो कमाल हो गया, आंखों को विश्वास नहीं होता। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, इट्स अ मिरेकल।
2: शुक्रिया।

0: सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर्ड अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपने जरूर पसंद किया होगा।

सोशल मीडिया पर चैटिंग करते समय अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। NCERT द्वारा जनहित में जारी।

0: तो अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुम लता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या
1: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCRT, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है।

कार्यक्रम में अब सुनिए राहुल देव बर्मन का संगीत, गुलजार साहब के बोल और आवाज आशा भोसले की।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।

0: हो रही है।
1: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और भी कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
2: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
3: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे बैजू मंगेशकर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में सईद राही का कलाम, आवाज घनश्याम वासवानी की।

0: मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से होगी चर्चा। विश्वभर में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। प्रधानमंत्री ने वन्य जीव प्रेमियों को दी शुभकामनाएं। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। यह विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। पेपर लीक से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान है। बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने और बाघों की घटती संख्या की रोकथाम के लिए आज विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% हिस्सा भारत में स्थित है। सूरजपुर जिले के धारसेड़ी गांव में मध्यप्रदेश के जबलपुर से पहुंची वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने छापेमार कार्रवाई के दौरान बाघ की खाल के साथ 3 संदिग्धों को पकड़ा है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। टीम वन्यजीव तस्करी से जुड़े बड़े नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी आज से राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत करेगी। अभियान के तहत विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहले दिन देश भर के मंदिरों में समरसता दीप उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत लगभग 51,000 मंदिरों में दीप प्रज्वलित कर सामाजिक समरसता और एकता का संदेश दिया जाएगा। नई दिल्ली में आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की समीक्षा बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता राहुल गांधी कर सकते हैं। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत समेत छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कांकेर के बाद कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड अंतर्गत मुड़वाही गांव में भी मलेरिया के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिविर लगाकर 1,270 से अधिक ग्रामीणों की जांच की, जिसमें 35 लोगों में मलेरिया की पुष्टि हुई है। मरीजों में करीब 6 बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि झलमला स्वास्थ्य केंद्र में 20 संक्रमितों का इलाज जारी है। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी ने कहा कि गुरु केवल ज्ञान प्रदान ही नहीं करते, बल्कि अपने शिष्यों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और उन्हें नेक विचारों और सद्गुणों से परिपूर्ण बनाते हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी ओडिशा और उससे लगे

पश्चिम बंगाल के ऊपर एक अवदाब बना हुआ है, जिसके असर से प्रदेश में बारिश हो रही है। प्रदेश में हो रही अच्छी बारिश के बीच नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी 14 नगर निगम, 59 नगर पालिका और 121 नगर पंचायतों को लक्ष्य के अनुसार पौधारोपण की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से होगी चर्चा। विश्वभर में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। प्रधानमंत्री ने वन्य जीव प्रेमियों को दी

0: उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। कोयला, खान और इस्पात पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है।
1: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहे है और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस खाद्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया है। इनमें खराब हो चुके खाना पकाने के तेल का उपयोग करना और भोजन की खराब गुणवत्ता शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में खाद्य सुरक्षा नियामक ने कहा कि जन स्वास्थ्य के हित में लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए निलंबित किया जाता है और खाद्य व्यवसाय संचालक को सभी खाद्य संबंधी गतिविधियां तुरंत बंद करनी होगी। खाद्य सुरक्षा नियामक ने सभी नियमों का पालन करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 849 अंक बढ़कर 77,615 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जाने माने अभिनेता संजय दत्त का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हमने संजय दत्त की फिल्मों से ही कुछ गीत आपके लिए चुने हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है रॉकी। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीत राहुल देव बर्मन का है।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था विधाता। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
3: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
3: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।
2: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
3: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल, जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
4: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, एसपी बालासुब्रमण्यम, कुमार सानू, पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें फिल्म साजन के लिए।

0: विविध भारती से।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
0: राहत इंदौरी का लिखा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इसे संगीत में ढाला है अनु मलिक ने, आवाजें श्रेया घोषाल और विनोद राठौड़ की। फिल्म का नाम है मुन्ना भाई MBBS।

और आइए अब सुनते हैं पंकज उदास और साथियों की आवाजों में फिल्म नाम का ये गीत, रचना आनंद बख्शी की और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की है।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मनहर उदास, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें। ये फिल्म है खलनायक। गीत रचना आनंद बख्शी की है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: फिल्म वास्तव का गीत सुनिए, गाने वाले कलाकार कुमार सानू और साथी, गीत रचना समीर की है और संगीत जतिन ललित का है।

कार्यक्रम का आखिरी गीत शांतनु मोइत्रा का संगीत है, स्वानंद किरकिरे की बोल, युगल स्वर सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, फिल्म का नाम लगे रहो मुन्ना भाई।

इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने संजय दत्त की फिल्मों से कुछ गीत आपके लिए चुने थे।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर, ये कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है आपका अपना कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी तो कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और सुरीला सफर के लिए तैयार हो गए हैं। क्यों, है ना भाई? आज का दिन भी कुछ खास है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज गुरु पूर्णिमा की हमें बहुत ज्यादा बधाइयां भेजी हैं, शुभकामनाएं भेजी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में जिस किसी से हम सीखते हैं वो भी गुरु होता है। विविध भारती हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है, तो बहुत कुछ सीखने को हमें इससे मिलता भी है। तो ये भी गुरु हुई हमारी, इसलिए गुरु पूर्णिमा के मौके पर हम अपने अपने गुरुओं को आज प्रणाम कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, संगीत हमारी जिंदगी और धड़कन का एक अमिट हिस्सा है, या यूं कहें कि एक अभिन्न हिस्सा बन गई है ये संगीत हमारी जीवन यात्रा में। और हम अक्सर फिल्मी गानों को खासतौर से हम गुनगुनाने लगते हैं। ये गीत हमारी जिंदगी से जुड़ गए हैं मानो, है ना? विवाह हो, उत्सव हो, सुख हो, दुख हो, हम इन गीतों को अपने जीवन में उतार कर जैसे उन्हीं पर आश्रित से हो गए हैं। खुशी है तो हैप्पी सॉन्ग गुनगुनाते हैं, दुख है तो सैड सॉन्ग हम गाने लगते हैं। और मजे की बात ये है कि इनमें से कुछ गीत ऐसे हैं जो फिल्मी पर्दे पर फिल्माकन के रूप में तो हमें नहीं दिख पाए, यानी उनका फिल्मी पर्दे पर तो हमें दृश्य नजर नहीं आया, वो फिल्माए नहीं गए, लेकिन इन गीतों में इतनी ताकत रही कि रेडियो के जरिए, एलपी या ग्राफोन रिकॉर्ड्स के जरिए ये किसी न किसी माध्यम से हमारे जीवन में घर कर गए, हमारे दिल में अपनी जगह बना गए। कुछ गाने ऐसे थे जो फिल्मांकन तो किए गए, जिनका फिल्मांकन हुआ, पर्दे पर दिखाई भी गई, लेकिन कुछ समय बाद शायद फिल्म की लंबाई ज्यादा होने के कारण उन्हें हटा लिया गया, यानी कुछ न कुछ कारण रहा इन गीतों को उस फिल्म से हटाने का, लेकिन ये गीत हमारे दिलो दिमाग से कभी नहीं हट पाए। तो आज का ये कार्यक्रम उन्हीं गीतों के लिए हम लेकर आए हैं खास। जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्हें तो पता है कि आज की इबारत हमने क्या लिखी है, लेकिन जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम बता दें, आज की इबारत है बिल्कुल हल्की फुल्की। रात भर जागते हैं आपकी याद में, हंसी खो गई है इस दिल की फरियाद में, दिल वहीं छोड़ आए थे जब आपको देखा था, अब अंधेरा है इस सूने से जहां में, जमुना किनारे यादों की महफिल सजी है, सजन बिना जहान सूना लग रहा है, दिल का चिराग बुझने लगा है अब तो, हमने तो उसी दिन से दिल को आपके कदमों में रख दिया था, जिस दिन से आपको देखा था नींद और चैन सब खो गया है उस दिन से, न आसमां अच्छा लग रहा है न जमीन भा रही है, ये कैसी बेखुदी है, कैसी ये तन्हाई है, देख ली तेरी खुदाई ऐ ऊपर वाले, बता कितना और तड़पना अभी बाकी है। जी हाँ, यह है इबारत और इनमें कुछ चीजें, कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो आज के गीतों से जुड़े हैं। हालांकि हमने कुछ शब्दों का जिक्र आपसे नहीं किया है, इस इबारत को पढ़ने के बाद आपको कुछ गीत अपने आप पता चल जाएंगे कि कुछ कुन किन गीतों को आज इस कार्यक्रम में हमने शामिल किया है। तो आज कुछ ऐसे बेहतरीन गाने, जैसा कि हमने आपको बताया, जो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो में बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन फिल्म की लंबाई या अन्य कारणों से उन्हें फिल्मी पर्दे पर नहीं दिखाया गया था। और बॉलीवुड में ऐसे कई बेहतरीन गाने बने जो सेंसर बोर्ड की आपत्तियों या फिल्म की लंबाई कम करने के लिए हटा लिए गए, लेकिन ग्रामोफोन रिकॉर्ड या एलपी और रेडियो के जरिए हम लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा सफर। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, फिल्म का नाम परवाना, गीतकार कैफी आजमी, संगीतकार मदन मोहन।

ये आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की। फिल्म का नाम था परवाना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज सबसे खास ऐसे गीतों की बारी है जो किसी कारणवश फिल्मी पर्दे पर नहीं दिखाई दिए पर ऑडियो हमेशा सुनाई पड़ा। जैसे एक गीत जिसका प्रिंट जल गया था लेकिन उसी फिल्म का गीत ये दिल और ये उनकी निगाहों के साए हमेशा सुनाई पड़ता है। वहीं श्रोता

लिखते हैं कि आज की इबारत से तो लगता है कि सभी गीत एक से बढ़कर एक होंगे, और ये गीत अगर आपकी लिस्ट में मिल भी जाते हैं तो कहना ही क्या। बहुत सारे गीतों का जिक्र आपने भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शब्दों से जहां प्यार है वहीं गमों की शाम की पीड़ा भी है, इंतजार के लम्हे हैं तो सूनापन भी है, हर पलों में इन शब्दों से भावनात्मक रूप से हम जीवंत हो उठते हैं। प्रकृति की खूबसूरती भी आज बेमानी लग रही है, आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं। ये सभी गीत उन्होंने लिख भेजे हैं और कहा है कि शायद इन गीतों को फिल्मों से हटाया गया था। आप लिखते हैं कि आज इबारत में बहुत ही खूबसूरत शब्दों के मोती हैं और गीत बड़े ही मनमोहक लगने वाले हैं, ऐसा आपका सोचना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म की लंबाई की वजह से कई ऐसे मशहूर गाने पर्दे पर नहीं आ सके, लेकिन उन्हें आज भी बड़े ही चाव से सुना जाता है। इस संदर्भ में कहीं और चल नाम से एक फिल्म बनी थी जिसमें एक गीत था डूबते हुए दिल को तिनके का सहारा भी नहीं, बाद में ये फिल्म से जो है गाना हटा लिया गया था। इसी तरह से बहुत सारे गाने हैं जिनका जिक्र आज के इस कार्यक्रम में होने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ गीत बिछड़ने के कुछ यादों में आने की दुनिया जहां से निराश होने की एक ऐसी फिल्म है जो कोर्ट के आदेश से हटा दी गई थी, लेकिन उसके भी कुछ गाने ऐसे थे बाद में काफी लोगों को पसंद आए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं कब से चाह रही थी कि आज आप खास इस टॉपिक पर एक इबारत ऐसी बनाएं जहां पर इस तरह के गानों का जिक्र हो। लगता है आज आपने बिना कही मेरे कहे बगैर ही मेरे दिल की बात सुन ली है। आज इस प्रोग्राम में नई जानकारी के साथ कुछ खास गाने सुनने को मिलने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जी हाँ, बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिन्हें फिल्मों में नहीं फिल्माया गया या नहीं दिखाए गए वो गीत, लेकिन उन्हें आज भी हम याद करते हैं और विभिन्न कारणों से अपने कालखंड में वो गीत नहीं बच पाए या नहीं सुनाए गए, लेकिन हमने उन गीतों को आज भी अपने दिलों में बसा रखा है। पूरी संभावना है कि इबारत के माध्यम से आज उन गीतों का जिक्र होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे गीत हैं जिनका चयन फिल्मों से निकाल दिया गया था, लेकिन उनको आज भी हम सुना करते हैं और पसंद किया करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिन्हें बेहतरीन हिंदी फिल्में हैं जिनके गाने ऑडियो और रेडियो पर रिकॉर्डिंग के बाद सुपर डुपर हिट हुए, लेकिन फिल्म की लंबाई कम करने या अन्य कारणों से उन्हें पर्दे पर नहीं दिखाया गया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में जिस किसी से भी हम सीखते हैं वो भी गुरु होता है, और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खास कुछ गाने हम विविध भारती से सुनने वाले हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की थीम बहुत ही अच्छी है, ऐसे गाने सुनने को बहुत ही कम मिलते हैं। आज इस कार्यक्रम में ऐसे कुछ गीतों का जिक्र होगा जिन्हें हमने पर्दे पर नहीं देखा लेकिन उन्हें सुना जरूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म महबूबा का ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। क्लासिक गीत है ये, आनंद बख्शी के बोल हैं, राहुल देव बर्मन की धुन है।

ग्यावासी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था महबूबा। और अब आपसे करते हैं दो सवाल हमेशा की तरह। आज का विषय क्या है ये तो आपको पता चल ही गया है, और हमारे सभी श्रोताओं ने, लगभग सभी श्रोताओं ने लिख भी दिए हैं कि कौन कौन से ऐसे गाने हैं जिन्हें फिल्मों में नहीं रखा गया है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ढूंढना भी पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें गलत जानकारी भी मिल जाती है। बहुत सारी खोज के बाद ये पता चलेगा कि कौन से गाने फिल्मों में रखे गए और कौन से हटा लिए गए। जैसे कि फिल्म महबूबा का गीत अभी आपने सुना था, इसके लिए जब हम पढ़ रहे थे, इसके बारे में खोजबीन कर रहे थे, तो पता चला था कि इस गाने को जो है फिल्म की लंबाई या कहानी की जरूरत के कारण, मतलब कहानी की जरूरत में ये गीत नहीं फिट हो रहा था, तो वहाँ थिएटर में प्रदर्शित अंतिम कट से इस फिल्म गाने को हटा लिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिन्हें किसी न किसी कारण से हटाया गया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा गीत, किसी एक गीत का नाम आपको लेना है, फिल्म का नाम, गाने के बोल आपको बताने हैं जो आपको पसंद है, और वो गीत फिल्मी पर्दे पर नहीं फिल्माया गया या नहीं दिखाया गया था। वैसे हमारे श्रोताओं ने हमारे कहे बगैर भी बहुत सारे ऐसे गीतों का जिक्र कर दिया है, लेकिन आपको ये बताना है आपकी पसंद का कौन सा ऐसा गीत है जो आपको बेहद पसंद है, लेकिन आपको ये भी पता है कि वो गीत फिल्मांकन में या फिल्मों में नहीं दिखाया गया था। और हाँ, हमारा दूसरा सवाल ये है कि ऐसा कोई गीत जो आपको बेहद पसंद है, जिसे देखने के लिए आप उस फिल्म को देखने गए थे थिएटर तक, और वहां जाकर आपको पता चला कि अरे ये गीत तो फिल्म में रखा ही नहीं गया है, तब आपको कैसा लगा होगा, क्या मनस्थिति आपकी रही होगी, ना वो फीलिंग्स आपको हमारे साथ शेयर करनी है। तो सवाल एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, ऐसा कौन सा गीत जो आपको पसंद है और फिल्मी पर्दे पर वो गीत आज भी जब हम उन फिल्मों को देखते हैं कहीं न कहीं तो वो फिल्म में हमें नहीं दिखाई देता है, किसी एक गीत का जिक्र आपको करना है। और हाँ, ऐसा कोई गीत जिसे देखने के लिए आप थिएटर तक गए और उस फिल्म को देखने आपने पूरा देखा, लेकिन पता चला कि अंत तक वो गीत उस फिल्म में कहीं भी नजर नहीं आया, उसके बाद आपकी मनस्थिति क्या हुई, उस फिल्म का, उस गाने का जिक्र हमारे साथ आपको करना है कम से कम शब्दों में। आइए बढ़ते हैं आगे और

दोस्तों 1966 की फिल्म है ये, सावन की घटा, और मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें थी। ओपी नैयर का संगीत था। कहते हैं कि इसे साउंडट्रैक एल्बम में तो जारी किया गया था, लेकिन संपादन या अन्य कारणों से ये पर्दे पर फिल्माए गए दृश्यों में ये गीत नहीं आ पाया था।

आज की सुंदर सी इबारत में विरह, याद, तड़प, बिछड़न और अधूरे प्रेम की गहरी अनुभूति है। भाव भी यही है कि प्रेम में बिछड़ने के बाद हर पल याद, तन्हाई और इंतजार का एहसास बना रहता है, फिर भी दिल तो दिल है। ये हर पल किसी न किसी की याद में धड़कता है, किसी की खुशी में मुस्कुराता है और किसी की कमी में चुपचाप भीग जाता है। यही तो दिल की सबसे खूबसूरत पहचान है। और आपने कुछ गानों का जिक्र भी किया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज काव्यांश का मूल भाव शायद ये है कि याद, तड़प, इंतजार और विरह ये चार शब्द नहीं बल्कि प्रेम के वे चार महाद्वीप हैं जिनसे निकलकर हर सच्चा अनुराग अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। याद वर्तमान में अतीत की सजीव उपस्थिति है, ये हृदय के वीराने में चुपके से जलने वाला दिया है। तड़प बिना धुएं के लगातार सुलगती हुई प्राणों की आग है। इंतजार प्रेम की पराकाष्ठा है जो चौखट पर टंगी आंखों की मुख प्रार्थना है। विरह को विप्लव श्रृंगार कहा गया है जिसे मिलन से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। ये मिलन की आनंदमयी सुबह से ठीक पहले की घनी रात है। यानी याद अगर बीज है तो तड़प उसकी अंकुरण की चटपटाहट है, इंतजार उस पौधे को सींचना है और विरह वो मौसम है जो अंततः मिलन के अमर फल को जन्म देता है। आपने आगे लिखा है कि गाने पर्दे पर जीवंत नहीं हुए लेकिन कानों को सुकून जरूर देते हैं, वही गाने आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत सुंदर इबारत आपने लिखी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार फिल्म 3 घंटे से ज्यादा लंबी हो जाती है जिस कारण निर्देशक को मजबूत गानों को भी हटाना पड़ता है। कहानी का ट्रैक बदलना, अगर किसी गाने के आने से फिल्म की कहानी की मुख्य धारा प्रभावित होती है या भटकाव महसूस होता है तो संपादन के दौरान यानी एडिटिंग के दौरान उसे हटा दिया जाता है। ऑडियो की लोकप्रियता फिल्म से हटने के बावजूद संगीत प्रेमियों के बीच ये ट्रैक कैसेट और एल्बम के माध्यम से अमर हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत यानी विरह व्यथा की आह है, याद, तड़प और इंतजार की राह है। सुनी है राहें, सुना है डगर, तुम्हारे बिना थम सा गया है सफर। खिलते हैं फूल पर खुशबू नहीं है, पास है सब कुछ मगर वो एहसास नहीं है। कहने को तो सारा जहां साथ है मेरे, पर सच कहूं तो हर तरफ घने अंधेरे। तुम ही हो मेरी दुनिया का उजाला, बिन तुम्हारे सुना है इस जीवन का प्याला। बहुत सुंदर।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है मुनीम जी, गीतकार साहिर लुधियानवी हैं, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था मुनीम जी, गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। तो सवाल आज के जो हमने आपसे पूछे हैं एक बार फिर आपको दोहराई देते हैं, किसी एक गीत का नाम बताइए, फिल्म का नाम बताइए, गाने के बोल बताइए, कलाकार का नाम बताइए जो गीत आपको बेहद पसंद है और वो फिल्मी पर्दे पर नहीं दिखाया गया लेकिन रेडियो के जरिए आपके दिलों तक पहुंचा और आज भी अपने दिलों में अपना घर बनाए हुए है। बस किसी एक गीत का जिक्र। और हाँ, हमारा दूसरा सवाल ये है कि ऐसा कोई गीत जब आप उसे देखने के लिए, उसका फिल्मांकन देखने के लिए किसी थिएटर में गए हो उस फिल्म को देखने के लिए और वहाँ जाकर आपको पता लगा कि अरे इस गीत को तो फिल्म में रखा ही नहीं गया, तो आपकी मनस्थिति क्या थी, कौन सा था वो गीत और आपको उस फिल्म को देखने के बाद फिर कैसा लगा, वो अनुभव कम से कम शब्दों में आपको साझा करना है।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि विरह केवल बिछड़ने का नाम नहीं बल्कि उस प्रेम का दूसरा रूप है जो मिलन से भी ज्यादा अधिक गहरा होता है। अधूरे प्रेम की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसमें शिकायत कम और प्रतीक्षा अधिक होती है। किसी की याद आज भी आपकी मुस्कान और आपकी आंखों की नमी दोनों की वजह हो सकती है और वो प्रेम कभी अधूरा नहीं होता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज कुछ ऐसे गाने आप सुनाने को बेताब लग रही हैं और हम भी जो गाने फिल्मों से हटा दिए गए लेकिन वो बेहतरीन नगमे हैं, जब आप प्ले करेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये गाने कभी हमने सुने थे या नहीं। तो अब तो आपको पता लग गया होगा, लगभग आधा कार्यक्रम निकल चुका है, आपने काफी गीत सुन लिए हैं, अब बताइएगा कि ये गीत आपने सुने थे या नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे अपने फिल्म के लिए गुलजार साहब ने मीना कुमारी को जहन में रखकर गीत लिखा, रोज अकेली आए बेचारी जाए, चांद कटोरा लिए भिखारन रात। लेकिन गीत शूट होने से पहले ही मीना जी नहीं रही, सुमनताई कल्याणपुर की आवाज में ये गीत कभी कभी रेडियो पर सुनने को मिलता है, आज भी आप सुनाइए। नहीं, आज तो ये गीत हम आपको नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन हाँ, जब भी इसी तरह का कार्यक्रम या कभी कोई खास गाने हम लेकर आएंगे तो इस गीत को जरूर अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत भी बहुत अच्छी है, इस प्रकार के गीत तो बहुत सारे हैं, पर एक कव्वाली शोले फिल्म की थी जिसे मन्ना डे, शैलेंद्र और किशोर कुमार जी ने गाया था। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये गाने जो है मन को रोशन कर देते हैं। मंदाकिनी जी, एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में जिस किसी से भी हम सीखते हैं वो भी गुरु होता है। आज हम कार्यक्रम के जरिए सीख रहे हैं कि ऐसे कौन से गीत हैं जो फिल्मों में शामिल नहीं किए गए थे। वहीं हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि इस तरह के कार्यक्रम अगर अलग अलग तरीके से पेश किए जाए तो अच्छा लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म प्राण जाए पर वचन ना जाए का प्रसिद्ध गीत है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, फिल्मों में नहीं रखा गया था और संगीतकार ओपी नैयर और गायिका आशा भोंसले के बीच व्यक्तिगत कारणों से, लेकिन फिल्म में ये गाना न होने पर फिल्में पर्दे पर फिल्माया नहीं गया, इसके बावजूद गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और इसी गाने के लिए आशा भोंसले को वर्ष 1975 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। वो गीत भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जरूर आपको सुनवाएंगे इस कार्यक्रम में। एक श्रोता लिखते हैं कि रात की तन्हाई में जब आपकी याद आती है तो दिल की फरियाद और भी गहरी हो जाती है, नींद और चैन कहीं खो जाते हैं और तब लगता है कि जमुना किनारे सजी यादों की महफिल में ये जहां सूना सूना लग रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम सुनने के लिए हम तैयार हैं, आपके साथ सुरीला सफर तय कर चुके हैं और आगे आप तक बने रहे।

आएंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। जी तो हमें बिल्कुल यकीन है कि सुरीला सफर में आप हमारे साथ हैं और उन गीतों के साथ हैं जो हमने अक्सर सुने हैं और ये गीत हमारी जिंदगी में रच बस गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, ओपी नैयर का संगीत है, युगल स्वर मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम मेरे सनम।

हमने जो दो सवाल आपसे किए हमारे श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आम्रपाली का एक गीत जो लता जी ने गाया था लेकिन फिल्म में नहीं दिखाई पड़ा, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये गीत इन्हें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज कार्यक्रम सुनने का आनंद ही अलग है, दुर्लभ मधुर गीत सुनकर मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए फिल्म का गीत, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुनीम जी का गीत जो आपने सुनवाया था इसे लता मंगेशकर ने गाया था, एसडी बर्मन ने संगीतबद्ध किया था, साहिर लुधियानवी ने लिखा था। हालांकि ये गाना अपने आप में एक बेहतरीन रचना थी लेकिन फिल्म की पटकथा और गति को ध्यान में रखते हुए इसे थिएटर से पहले हटा लिया गया था, रिलीज होने से पहले हटा लिया गया था, जो बाद में ऑडियो रिकॉर्ड के रूप में लोकप्रिय हुआ। बिल्कुल वो गीत बहुत ही खूबसूरत था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो दीदी आप एक ऐसे कार्यक्रम को गूंथ कर लाई हैं, ऐसे गाने सुनने को मिल रहे हैं जो सिर्फ विविध

भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर ही सुनने को मिलते हैं। शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, ये मेरे सबसे प्रिय गानों में से एक है। आशा भोसले की दर्द भरी भीगी भीगी आवाज, ओपी नैयर का अद्भुत संगीत और SH बिहारी के भावपूर्ण शब्द इस गीत को एक नया अनुपम ऊंचाई दे देते हैं। इस गीत को सुन सुनकर मेरे मन में इसे बड़े पर्दे पर देखने की तीव्र इच्छा थी। इसी उत्सुकता के साथ में प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म देखने गया। पूरी फिल्म समाप्त हो गई लेकिन ये गीत कहीं दिखाई नहीं दिया। उस क्षण जो निराशा हुई उसे शब्दों में बांधना कठिन है। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में ये गीत एक विशिष्ट और अमर पहचान रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये गीत सुनने के बाद तो वाकई दिल में एक अलग ही किस्म का दर्द उठता है। तो चलिए इसी गाने को सुन लिया जाए। आपने जैसा कि बता ही दिया है कि ओपी नैयर का संगीत है, SH बिहारी के बोल हैं, आशा भोसले की आवाज है और फिल्म का नाम है प्राण जाए पर वचन न जाए।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिस दौर में कलात्मक फिल्में बना करती थी वो दौर तो स्वर्णिम काल था। वहीं श्रोता लिखते हैं कि फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म का ये गीत चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया। ये फिल्म देखने बार बार हम इस गीत को याद करते हैं। मल्टी स्टारर और डाकुओं की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म की कहानी तो अच्छी थी लेकिन ये गीत पूरी फिल्म में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम आपके हैं कौन का फिल्म छत्रपति संभाजी नगर में प्रदर्शित हुई तब थिएटर मालिक ने माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया चॉकलेट लाइम जूस।

गीतकार दिया था, फिर कुछ सप्ताह बाद फिल्म में से दिखाया भी गया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए का गाना चैन से हमको कभी, ये गाना कई बार रेडियो पर सुना है। 1972 में यानी 1972 में, फिर जब 1974 में मेरी शादी हुई तो मैं पत्नी के साथ देखने गया था फिल्म, परंतु इस गाने को फिल्म में नहीं देखकर बहुत ही निराशा हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं तो आज जो जानकारी बटोर रही हूं कि इतने सुपरहिट गीत हैं जिन्हें हम सुनते रहते हैं और ये फिल्मी पर्दे पर कहीं दिखाई नहीं गए थे, ये जानकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संजय दत्त और सलमान खान अभिनीत फिल्म 10, जिसमें एक गाना था 10 बहाने करके ले गई दिल, ये फिल्म में नहीं दिखाया गया। वहीं श्रोता लिखते हैं कि फिल्म सावन की घटा, जिसका तभी आपने सुनवाया, होठों पे हंसी आंखों में नशा, संगीतकार ओपी नैयर की एक बेहतरीन और मधुर रचना थी जिसे मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया था। ये बात सही है कि ये गाना फिल्म के सिनेमाई प्रदर्शन स्क्रीन पर फिल्मांकन में से हटा लिया गया था और केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग या एल्बम में ही उपलब्ध रहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि होठों पे हंसी जो गीत आपने सुनवाया आशा ताई और रफी साहब की आवाजों में, इस दिलकश गीत के लिए मैं आपका यानी मेरा मंदाकिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने खूबसूरत गीत को आज हमें सुनवाया है। क्या बात है, आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। लिखते हैं कि वाह क्या बात है, दिल खुश हो गया है, बहुत खुशी की बात है। और अगर हमारे श्रोता खुश हो जाते हैं तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कोई होती ही नहीं है, यकीन करिए हमारा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यूपी नैयर साहब अपनी खास तांगा लय और फुट टैपिंग संगीत के लिए जाने जाते थे। इस गाने में भी उन्होंने अपनी उसी सिग्नेचर शैली का इस्तेमाल किया है। गाने का संगीत बेहद चुलबुला, ऊर्जावान और रोमांटिक है। एकोस्टिक गिटार, ढोलक और सैक्सोफोन का जो मिश्रण नैयर साहब ने तैयार किया, सुनते ही श्रोता तो झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म 5 राइफल्स का झूम बराबर झूम शराबी जो गाना है, वो फिल्म देखने जब हम गए तो पता चला कि ये गाना काट लिया गया है, तो हमें बेहद निराशा हुई। जी तो आज इस कार्यक्रम में हमने कोशिश की है उन 10 गीतों को लाने की। वैसे तो बहुत सारे गीत हैं ऐसे जिन पर अगर हम चर्चा करें तो शायद कई सारे कार्यक्रम हमें देने पड़े, लेकिन आज जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं वो फिल्मों में किसी न किसी वजह से हटा लिए गए थे। और जब कोई श्रोता या हम में से कोई एक उस फिल्म को देखने गया होगा उस गीत को खास सुनने के लिए, तो उसे बेहद अफसोस भी हुआ होगा या निराशा हाथ लगी होगी। ऐसा ही एक गीत है फिल्म कश्मीर की कली का, आशा भोसले की आवाज है, SH बिहारी के बोल हैं, ओपी नैयर साहब की धुन है। आइए सुनते हैं ये गीत। कहते हैं ये गीत दिखाया गया था इस फिल्म में, लेकिन बाद में इस गीत को हटा लिया गया था।

हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत शानदार है, उन गीतों को न चाहते हुए भी जब फिल्म में नहीं देखा गया तो बहुत उदासी सी छा जाती है। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म रोटी के गीत की, फूलों के साथ दिल भी। ये लता मंगेशकर की आवाज में गीत है और जब मैं फिल्म देखने गया तो ये गीत उस फिल्म में नहीं था। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है। बिल्कुल आपने सही कहा। और जब हम अपनी पसंद का कोई गीत फिल्मी पर्दे पर नहीं देखते हैं या वो निकल जाता है तो हमें बेहद अफसोस होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुना है कि फिल्म शोले की शुरुआत में कव्वाली रखी गई थी अमजद खान पर, फिल्माया गया था, क्या वो गीत आज सुनने को मिलेगा? जी नहीं, आज इस कार्यक्रम में तो हमने उसे शामिल नहीं किया है। हाँ, आगे कभी हम उस गीत को ढूंढकर जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म सुनहरा संसार का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ हेलो हेलो, जो राजेंद्र कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया जाने वाला था, वो नौशाद के केशोरदा के प्रति पूर्वाग्रह के कारण फिल्म के निर्देशक तक नहीं पहुंच पाया, पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर वो गाना चढ़ गया था। वो गीत इन्हें बेहद पसंद आता है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बाजीगर का एक गीत मुझे बहुत पसंद है, जब मैं उसे कैसेट या टेप खरीद कर लाया तो मैंने इस गीत को कई बार सुना और मैं फिल्म देखने गया बड़े चाव से इस गीत को सुनने के लिए, लेकिन वो फिल्म में मुझे लास्ट तक वो गीत सुनाई नहीं दिया तो मुझे बेहद दुख हुआ। गुट है समझकर चांद जिसको आसमान ने, अच्छा कोई गाना जो विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज में है वो आपको बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी कुछ याद तो नहीं आ रहा, मगर फिर भी कुछ फिल्में हमने देखी हैं जिनमें से कुछ चुनिंदा गीत को तो फिल्म से हटा दिया गया था मगर आकाशवाणी और ऑडियो कैसेट के जरिए हमने उन्हें कई बार सुना है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म हकीकत का गाना खेलो ना मेरे दिल से और ऐसे बहुत सारे गीत हैं जिन्हें हटा लिया गया था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पसंद का गीत फिल्म राम और श्याम का है जो फिल्म में नहीं रखा गया, वो है मैंने कब तुमसे कहा था कि मुझे प्यार करो, इसमें दिलीप कुमार और वहीदा रहमान है, ये गाना भी मुझे बेहद पसंद आता है। और कई श्रोताओं ने अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है, लेकिन अब कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम आपको सुनवा रहे हैं एक ऐसा गाना, फिल्म नीला आकाश से हमने लिया है। लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को आपने बहुत कम सुना होगा, बेहद ही खूबसूरत गीत है। राजा मैदेली खान की बोल है और मदन मोहन की धुन है।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म नीला आकाश का ये गीत सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सिर्फ लंबी होने की वजह से जो गीत काट दिए गए, लगता है उनमें से कुछ गीत तो ऐतिहासिक गीत बन गए। जी हाँ बिल्कुल, और ये गीत हमारे दिलो दिमाग पर आज भी असर किए हुए हैं, ये बात क्या कम है। तो अब कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें बाघों की। एक इंसान के तौर पर हम सभी जीवों की सुरक्षा का दायित्व रखते हैं, क्योंकि हम ऐसा करने में सक्षम हैं और हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम वन्य जीवों की देखभाल करें। बात भारत की हो तो हमारा देश कई वन्य जीवों के संरक्षण में अग्रणी रहा है, इनमें ही शामिल है बाघ। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में विश्व के कुल बाघों में से तकरीबन 75% बाघ वास करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब बाघों की घटती संख्या चिंता का विषय बन गई थी। ऐसे में उसे बचाने और उसकी संख्या बढ़ाने की कवायद शुरू हुई और आज बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बाघ एक प्रमुख शिकारी जानवर माना जाता है, इसलिए उससे हम इंसानों का डरना स्वाभाविक है। उस पर न जाने बाघों को लेकर कितने किस्से कहानियां भी तो हमने सुन रखी हैं। वैसे बच्चों को तो वन्य जीवों के कई गीत भाते हैं, जैसे कि ये।

0: हालांकि शेर, चीते और बाघ जैसे वन्य प्राणियों के हमलों को लेकर कई किस्से कहानियां तो हमने सुनी हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जिस तरह हम उनसे डरते हैं, वो भी हमसे बिल्कुल उसी तरह डरते हैं। कई बार मानव बस्तियों में शेर, चीते या बाघों का आना तो हमने सुना है, किंतु क्या वाकई वो हमारी बस्ती में आते हैं, या हमने ही उनकी रहने की जगह पर कब्जा करते करते उनके लिए स्वतंत्र रहने की जगह ही बाकी नहीं रखी है। फिर भी शेर, चीते और बाघ जैसे प्राणी दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी यानी मानव से दूर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मानव उनसे भी ज्यादा हिंसा प्रेमी रहा है। अगर वो गलती से भी मानव बस्ती में आ जाएं, तो उन्हें बचकर जाने के लिए जी जान लगाना पड़ता है, और मानवों के पास बाघ, शेर, चीतों को भगाने की न जाने कितने किस्से हैं।
1: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है,

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई फिरकी बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ में, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम।

0: भैया, लेकिन आप तो जिंदा है।
1: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ,
2: वन्य जीवों के संरक्षण में तो हम अपना दायित्व निभा ही रहे हैं, लेकिन क्या उनकी सुरक्षा में हम अपना हिस्सा निभाते हैं? वन्य अभयारण्य या जू आदि में जब हम शेर, चीते या बाघों को देखने जाते हैं तो उन्हें तरह तरह की चीजें फेंक कर परेशान करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी ओर देखें। उनके साथ फोटो लेने की होड़ भी इन दिनों हावी रहती है। इसके लिए तरह तरह की फ्लैश लाइट्स भी उनके मुंह पर चमकाने से हम नहीं चूकते, जबकि इससे उनकी आंखों को नुकसान हो सकता है। जंगल सफारी के दौरान भी हम उन्हें परेशान करने का कोई ना कोई मौका तलाश ही लेते हैं। अब जब हम उनके आधे से ज्यादा निवास स्थान पर अपना आधिपत्य जमा ही चुके हैं, तो कम से कम उनके संरक्षित स्थलों पर तो उनकी सुविधा का ख्याल रख ही सकते हैं। एक मनुष्य के तौर पर सभी जीवों का सम्मान करना भी तो हमारा ही फर्ज है, ताकि वो भी अपने स्थान पर उसी सुकून से रहें जैसा हम अपने घर में रहते हैं।

तो आज ही कीजिए ये फैसला कि अब से अपनी ही तरह हर जीव की देखभाल का भी करेंगे ख्याल। इसी संदेश के साथ आज की त्रिवेणी यहीं समाप्त होती है। दीजिए अपनी दोस्त निहार शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जाँच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा

0: और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौड़ने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यह जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
2: झारखंड के अंदर एक टीडीपीएल एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, थालियां परोस के दे दिया, अब आप कहां से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
3: जेपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
4: प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष

0: हाँ वालों पक्षों प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनःस्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
2: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF और ODRAF के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
4: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
5: कॉल्स फॉर एन इमीडिएट डीएस्केलेशन ऑफ टेंशंस।
1: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि MV अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि यह घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
1: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2,226 थी, वो बढ़कर 3,600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी, वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी, जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है सुहाग रात, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था सुहाग रात। गीतकार थी इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी थे।

0: के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं,
1: जी
0: 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
2: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
2: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
2: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजी फिल्म का नाम शिकार, गीत रचना हसरत जयपुरी की है और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र। गीत इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी ने बनाई है।

फिल्म साथी का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, धुन नौशाद साहब की और आवाज लता मंगेशकर की है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म मेरे हुजूर का गीत, गीत हसरत जयपुरी का और संगीत शंकर जयकिशन का है।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को, सभी गुरु को जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा उन्हें प्रणाम। सोनाली आपको भी नमस्कार।
1: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं।
0: आज गुरु पूर्णिमा के दिन सभी अपने गुरु को याद कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। सच में अगर गुरु न होते तो हम इतना सब कुछ कैसे सीख पाते लगता है। हालांकि सबसे पहली गुरु तो माँ होती है, माँ के बाद सबसे पहली गुरु या पहला गुरु जो होते हैं वो स्कूल में टीचर होते हैं। तो कई बार ये स्थिति आ जाती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए,
1: बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए।
0: हाँ, तो ऐसी नौबत भी आती है तो हमें लगता है कि बस जिनसे आपने सब कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, उन्हें प्रणाम कर लें आज।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, ममता जी हमने विविध भारती से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विविध भारती को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
0: बिल्कुल, तो हम सभी विविध भारती को प्रणाम करते हैं क्योंकि हमने भी तो सीखा है
1: जी, और हमने बहुत सारे हमारे जो साथियों से भी बहुत कुछ सीखा है। वो जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखकर भेजते हैं तो उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को
0: बिल्कुल
1: मिलता है।
0: और श्रोताओं का से तो हमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलता है
1: जी,
0: जब वो कोई समीक्षात्मक टिप्पणी लिखते हैं, कोई आलोचना लिखते हैं, तो उससे हमें हमारा विकास होता है, परिष्कार होता है हमारी भाषा का, शब्दों का जो हम बोलते हैं और विषयों का। अब बात विषयों की चली है तो हम बता देते हैं कि आज हम किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। एक तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और बाघ के नाम से डरी तो नहीं ना डर तो लगता है,
1: डर तो लगता है,
0: लेकिन घूमने भी जाते हैं।
1: बस हमें थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए जब हम देखने जाते हैं, जब हम जंगल सफारी पे जाते हैं तो उस वक्त हमें थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि हम जोश में आके ऐसी कुछ हरकतें कर देते हैं हम सभी कि उसके कारण जो है बाघ जो है वो हमारे ऊपर हिंसक रूप से हमला वगैरह
0: करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी सावधानी तो ये रखनी चाहिए कि जो सबकी बोलने की आदत होती है, समूह में जाते हैं और एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, तो जब वहाँ जंगल सफारी की सैर पर जब जाएं तो एकदम जैसे मोबाइल में म्यूट बटन होता है, म्यूट टच, तो वैसे ही म्यूट हो जाए वहां पर, क्योंकि जरा से भी बातचीत से उनका असंतुलन होता है, ध्यान विचलित होता है और फिर हमला कर सकते हैं। तो ये ख्याल रखना चाहिए। हालांकि जो जंगल विभाग के अधिकारी या कर्मचारी होते हैं वो बाकायदा इसका ख्याल रखते हैं और
1: रखते हैं।
0: हाँ, और वो बताते भी हैं, हमें समझाइश भी देते हैं इस बात की
1: जी।
0: और
1: आज क्रेडिट कार्ड का माया जाल जिसमें हम लोग उलझते जा रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी,
0: बिल्कुल,
1: तो इस बारे में भी आप लिखकर भेजिए कि आप के क्या अनुभव रहे हैं और किस तरह से ने क्रेडिट कार्ड का हमें उपयोग तो करना ही है पर उसे किस सावधानी के साथ उसका उपयोग करना है, यानी उसके माया जाल में हमें फंसना नहीं है।
0: बिल्कुल सही कह रही है सोनाली। एक बात बताइए कि जब कहीं घूमने जाते हैं किसी पार्टी फंक्शन में तो क्या पहनना पसंद करती हैं आप, जो रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है ड्रेस या फिर और कुछ?
1: साड़ी पहनना बहुत पसंद है
0: हमें लगता है हर भारतीय स्त्री को साड़ी पहनना पसंद आता होगा। हमने तो सुन रखा है कि जो सुन क्या बातें होती रहती हैं, अब तो मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप के जरिए बातचीत होती है, तो जो विदेशों में जो भारतीय महिलाएं हैं वो यहाँ से बाकायदा साड़ियां मंगवाया करती हैं
1: जी, और पहनती भी हैं बड़े शौक
0: मौकों
1: से।
0: पर शौक से पहनती हैं
1: जी।
0: तो साड़ी के बारे में बहुत सारी जानकारी हम देंगे क्योंकि साड़ियों का
1: साड़ी केरल
0: साड़ियों का संसार क्योंकि बहुत समृद्ध है
1: जी,
0: तो साड़ी के बारे में जानकारी देंगे। और शब्द बहुत अहम होते हैं,
1: अहम होते हैं।
0: हाँ, वो एक तीर की तरह है, कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली दोनों वापस नहीं आते
1: नहीं आते,
0: तो इसलिए जो भी बोलें तो सोच विचार कर बोलें, शब्द हमारा और विचार आपके।
1: इसमें आदर को हमने चुना है तो आदर भी वैसे ही ममता जी कि आदर जब हम देते हैं तो हमें आदर मिलता है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो या हम उम्र हो, सभी से आदर के साथ पेश आए तो हमें भी आदर ही मिलेगा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं।

0: और व्यंजन
1: उसके बिना तो अधूरा लगता है
0: और व्रत के
1: प्रोग्राम।
0: व्यंजन। अब व्रत के व्यंजन की बात चलती है तो वही बात चलती है, लोग वही मूंगफली दाने, वही साबूदाना, पर हम उसमें भी अगर कुछ पौष्टिक खाएं, जैसे मखाने खा सकते हैं, फिर कच्चा पपीता है उसके व्यंजन बना सकते हैं, फिर उसके अंदर रामदाना है जिसे राजगीरा भी कहते हैं, या सामा के चावल, तो उसमें कुछ पौष्टिक हो तो उस तरह के व्यंजन में हमें लिखकर भेजिए।
1: बिल्कुल। और मखाने के लड्डू भी बनते हैं,
0: हाँ, मखाने की
1: और
0: खीर बनती है
1: जो खाने के बाद अक्सर मीठा खाने के जो शौकीन होते हैं,
0: जी।
1: तो अगर इस तरह खाएं, व्रत में खाएं या ऐसे भी खाएं, बहरहाल अब क्या करें,
0: आप गीत सुनते हैं।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं दी है। वैसे गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता का पावन उत्सव है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में सफलता, संस्कार और आत्मिक उन्नति का मार्ग गुरु के मार्गदर्शन से ही प्रशस्त होता है। इसलिए हमें सदैव अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनके उपकारों को स्मरण रखना चाहिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। और जब चाहिए आपने कहा ना, तो हमें लगता है कि और भी बहुत कुछ चाहिए, जैसे कि पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए।
0: जी
1: उसके लिए हमें खुद निजी स्तर पर जूझना चाहिए। एक कहावत याद आ रही है, जब बाघ की बात चली है, आज हमारा विषय भी है,
0: जी
1: आज बाघ दिवस है, तो ऐसे में लोग कहते हैं ना कि जंगल की शान है बाघ, प्रकृति की पहचान है बाघ। जिस दिन जंगल से बाघ चले जाएंगे, उस दिन जंगल भी वीरान हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये केवल एक वन्य जीव नहीं है बाघ,
0: जी
1: बल्कि ये पर्यावरण के प्रहरी के रूप में हम इन्हें जानते हैं। और अगर हम जंगलों की जो कटाई होती है, क्षरण हो रहा है, जंगलों की कटाई को रोकेंगे तो हम बाघ की सुरक्षा कर सकते हैं।
0: जी
1: जो लोग शिकार करने जाते हैं और बड़े मजे से शिकार करके लौटते हैं और कहते हैं कि हम बाघ का शिकार करके आए, वो ठीक नहीं है। तो
0: जी
1: उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि अगर ये वन्य जीव हमारे साथ नहीं रहेंगे, जंगलों में नहीं रहेंगे, तो हम जंगल से धीरे धीरे वंचित होते जाएंगे।
0: जी और बाघ खाद्य श्रृंखला में सबसे शीर्ष पर होते हैं संतुलन में। ये शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित कर वन पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं और एक स्वस्थ बाघ आबादी, समृद्ध जंगलों और बेहतर जल प्रणालियों को का संकेत देती है। ये बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है।
1: तो इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और बता दें अपने श्रोताओं को कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक टाइगर समिट के दौरान ये हुई थी।
0: और इस दिवस का उद्देश्य बाघों के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, जंगलों की कटाई को रोकना इत्यादि बातें शामिल है। और भारत को विश्व के बाघ संरक्षण में अग्रणी देशों में माना जाता है। दुनिया के अधिकांश भाग बाघ भारत में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ने 1973 और बाघ अभयारण्यों की स्थापना जैसे प्रयासों ने बाघों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: तो अब एक काम करते हैं, ऐसा ही एक गाना है जिसमें जंगल आता है और पूरा जंगल की कहानी है,
0: और बाघ की दहाड़ भी सुनाई देती है।
1: तो सुने वही गाना।
0: जी

आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम मजा आ गया मुझे मार कर, बेशरम खा गया।
2: खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है।
0: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ,

0: हाँ तो भाई,
1: अरे एक साथ
0: हमारे एक साथी ने लिखा है, एक बाघिन तो मेरे घर में ही है, मेरी वाइफ। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुभकामनाएं।
1: लेकिन भाई अगर वो सुन रही हैं तो हम तो चाहते हैं कि ये बात उनकी सुन ली जाए और ताकि उनको ये दोबारा कहने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए कि कैसे कह सकते बाघिन।
0: और एक सखी ने और लिखा है कि बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा पार्क में हम बंद गाड़ियों में हम घूमने गए थे और जो दो दो दो बाघ अगल बगल से आ गए, जबकि हम सुरक्षित थे, पर डर के मारे मुंह से आवाज ही नहीं निकली और हम एकदम बुद्ध बनकर गाड़ी में बैठे रहे।
1: क्या बात है भाई। तो ये मतलब बाघ से डरना भी जरूरी है लेकिन बाघ से प्रेम करना भी जरूरी है
0: और बाघिन से भी डरना जरूरी है।
1: बिल्कुल। और
0: घर
1: डर
0: में उपस्थित,
1: हाँ वो डर प्रेम वाला डर होना चाहिए
0: जी,
1: क्योंकि बहुत ज्यादा डर अगर लगी तो फिर घर में दिक्कतें पैदा हो जाएगी।
0: वैसे आज साड़ियों का संसार, इसमें हम कसाबू साड़ी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो कसाबू साड़ी भारत की सबसे प्राचीन, गरिमामयी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध पारंपरिक साड़ियों में से एक है। ये मुख्य रूप से केरल राज्य की पारंपरिक वेशभूषा है। अपनी सादगी, शालीनता और सुनहरे किनारे ने सुनहरी जरी के कारण कसाऊ साड़ी भारतीय हस्तकरघा कला का अनुपम उदाहरण मानी जाती है।
1: और कसावू का मतलब ही है।

0: की गोल्डन बॉर्डर
1: जी
0: किनारा ना,
1: जी
0: यही सुनहरी जरी इस साड़ी की सबसे बड़ी पहचान भी है, विशिष्टता भी है। पारंपरिक रूप से इसमें असली सोने और चांदी की जरी का प्रयोग किया जाता था, जबकि आजकल उच्च गुणवत्ता वाली जरी का भी उपयोग होता है। अब सोने चांदी का उपयोग कहाँ कोई कर सकता है,
1: बहुत महंगी हो
0: तो
1: जाएगी
0: बहुत
1: फिर वो
0: ज्यादा
1: साड़ी।
0: महंगी हो जाएगी और पहनने के बाद भी दिक्कतें पैदा हो
1: हो
0: जाएंगी। तो
1: सकते
0: इसलिए कि वो ना ही लगे तो अच्छा है।
1: जी। और कसाऊ साड़ी का इतिहास कई सौ वर्ष पुराना माना जाता है। ये केरल की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग रही है। प्राचीन समय से इसे विशेष अवसरों और धार्मिक अनुष्ठानों में पहना जाता था। समय के साथ ये साड़ी देश विदेश में अपने विशिष्ट सुंदरता के कारण लोकप्रिय हो गई है।
0: और अमूमन इसका मूल रंग सफेद या ऑफ व्हाइट होता है। चौड़े सुनहरे जरी बॉर्डर इसकी मुख्य पहचान है। ये हल्की और आरामदायक होती है, साथ में आकर्षक भी। पारंपरिक होने के साथ साथ आधुनिक डिजाइनों में भी ये उपलब्ध है।
1: यानी
0: और
1: आजकल इसमें सुनहरे बॉर्डर के साथ साथ लाल, हरे, नीले और मैरून रंगों की सजावट भी देखने को मिलती है। और कसाऊ साड़ियों का निर्माण मुख्यतः हथकरघा यानी हैंडलूम पर किया जाता है। पहले सूती धागों से साड़ी बुनी जाती है, फिर उसके किनारों पर सुनहरी जरी जोड़ी जाती है। इसी पूरी प्रक्रिया में बुनकरों की महीन कारीगरी और धैर्य का विशेष योगदान होता है। और केरल के बलरामपुरम, चेंदमंगलम, कुथमपुल्ली और कन्नूर जैसे क्षेत्र कसाऊ साड़ियों की उत्कृष्ट बुनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ अनेक परिवार पीढ़ियों से इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं।
0: और ये भी बता दें कि कसाबू साड़ी विशेष रूप से ओणम, विशु, विवाह, मंदिरों के धार्मिक समारोहों, सांस्कृतिक आयोजनों और शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों में पहनी जाती है। केरल की दुल्हन भी विवाह के अवसर पर पारंपरिक कसाबू साड़ी पहन लेती है। और कसाबू साड़ी केवल एक परिधान ही नहीं है, पहनावा ही नहीं है, बल्कि केरल की बाकायदा संस्कृति है, परंपरा है और हस्तशिल्प की पहचान भी है। इसके निर्माण से हजारों बुनकर परिवारों को आजीविका मिलती है। ये भारतीय हस्तकरघा उद्योग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: कसाऊ साड़ी सादगी, शालीनता और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम है। इसकी सुनहरी आभा केवल वस्त्र की शोभा नहीं बढ़ाती, बल्कि केरल की समृद्ध विरासत, बुनकरों की कला और भारतीय परंपरा की चमक को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। इसलिए कसाऊ साड़ी को भारतीय संस्कृति का एक अनमोल धरोहर माना जाता है।
0: अब एक गाना सुनते हैं और फिर और चर्चा करते हैं अन्य विषयों पर भी।

0: ममता जी, एक हमारे साथी कहते हैं कि लेडीज के लिए कपड़े जितने हो उतने कम ही होते हैं। साड़ी तो अलग-अलग जगहों से लेना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उस साड़ी को जब हम पहनते हैं तो उस जगह की, उस शहर की यादें ताजा हो जाती है।
1: क्या बात है। और कुछ लोगों को साड़ियों का इतना ज्यादा शौक होता है कि पहले साड़ी के बारे में रिसर्च करते हैं और उस साड़ी की विशेषता के बारे में जानकारी हासिल करती हैं महिलाएं, फिर वो साड़ी खरीदती हैं। और फिर आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है और वहां पर
0: पहन के पोस्ट करना।
1: पोस्ट करना, फोटो डालना और उसके बारे में लिखना, ये भी आजकल चलन में है।
0: जी
1: तो जिनको रुचि है, ये अच्छी बात है। अगर आप कोई विशेष साड़ी पहन रही हैं और उसके बारे में जानकारी है तो आप सोशल मीडिया पे बातें अपनी लिखती हैं और लोग लाभान्वित होते हैं, तो अच्छी बात है। अब जैसे
0: लोगों के
1: सखी
0: ज्ञान
1: से
0: में भी बढ़ोतरी होती है।
1: जैसे सखी सहेली कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत सारी बातें अपनी सखियों तक पहुंचा रहे हैं कि जब आप जब कोई नई साड़ी खरीदती हैं और उसके बारे में आपको लगता है कि बताना चाहिए, तो आप लिख सकती हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर और हम आपकी बात आप तक पहुंचाएंगे। मतलब उससे नए श्रोता भी जानेंगे कि अन्य साड़ियों की अन्य क्या-क्या विशेषताएं होती हैं, है ना।
0: जी,
1: तो अब क्या करें
0: आप
1: हम,
0: ब्रेक
1: एक
0: लेते हैं।
1: ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर और भी हम बातें करते हैं।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका

0: रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली। और सोनाली जी, आज का जो आधुनिक युग है इसमें क्रेडिट कार्ड केवल एक प्लास्टिक कार्ड नहीं होता है, बल्कि सुविधाओं, आकर्षक ऑफरों और तात्कालिक इच्छाओं का ऐसा संसार बन चुका है जो देखते ही देखते व्यक्ति को आर्थिक भ्रमजाल में उलझा सकता है। और हम सब कहीं न कहीं कभी न कभी उलझ जरूर जाते हैं,
2: इस माया जाल में उलझ जाते हैं।
1: और बिना जेब में पैसे रखे खर्च करने की शक्ति देता है भाई, लेकिन यही शक्ति संयम से न बरता जाए तो आर्थिक स्वतंत्रता को बंधन में ये बदल सकती है।
2: और क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज हमें आज खरीदो बाद में भुगतान करो का अवसर देता है। शुरुआत में यह सुविधा बहुत आकर्षक लगती है ना ममता जी, महंगे मोबाइल है भाई, फिर कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, छुट्टियां हैं या रेस्टोरेंट का खर्च है, सब कुछ एक छोटी सी स्वाइप में संभव हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति को यह एहसास ही नहीं रहता कि वो अपनी वर्तमान आय नहीं बल्कि भविष्य की कमाई खर्च कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कैश रखने की जहमत भी नहीं उठाना है, और क्योंकि कैश रखो, गिनो, खर्च करो, कई बार गिरने का भी खतरा रहता है, तो ये फायदेमंद भी है लेकिन कई बार नुकसानदेह भी होता है। बाजार इस मनोविज्ञान को भली भांति समझ जाता है। कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, जीरो डाउन पेमेंट और विशेष छूट जैसे आकर्षक प्रस्ताव उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं।
2: यानी हमें जो लालच मिल जाता है तो हम भी लालची बन जाते हैं। और कई बार लोग केवल ऑफर का लाभ लेने के लिए ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं ममता जी, जिनकी वास्तव में आवश्यकता ही नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड का सबसे खतरनाक पहलू तब सामने आता है जब व्यक्ति केवल न्यूनतम भुगतान यानी मिनिमम पेमेंट करता है, उसे लगता है कि उसने बिल भर दिया, लेकिन जब शेष राशि पर ऊंचा ब्याज जुड़ता है तब समझ में आता है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम सब इस माया जाल में कभी न कभी तो फंसे। साड़ियों की बात कर रहे थे तो आप भी साड़ी खरीदने गई होंगी निश्चित रूप से कि चलो आज ये साड़ी खरीद ही लेते हैं।
2: तो मन बहुत है, भले हमारे अकाउंट में नहीं है पर क्रेडिट कार्ड तो है हमारे पास में,
1: तो ये हम सब कभी न कभी करते ही है। इससे
2: समय के साथ ब्याज इतना बढ़ जाता है ममता जी कि मूल खर्च से कहीं अधिक राशि हमें चुकानी पड़ सकती है और धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और आर्थिक तनाव भी आ जाता है।
1: जाहिर सी बात है, अगर ब्याज होगा, बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा तो तनाव तो होगा ही। ये मायाजाल केवल पैसों तक सीमित नहीं रहता है बल्कि लगातार बढ़ते बिल, भुगतान की चिंता और कर्ज का दबाव मानसिक शांति भी छीन लेता है। कई परिवारों में तो आर्थिक असंतुलन के कारण तनाव, विवाद, लड़ाई झगड़े, भविष्य की योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बचत घटने लगती है और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटना कठिन होने लगता है।
2: हालांकि क्रेडिट कार्ड स्वयं में बुरा नहीं है, ये एक उपयोगी वित्तीय साधन है। इसका उपयोग समझदारी से किया जाए, समय पर पूरा बिल चुकाना, अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना, अनावश्यक खरीदारी से बचना, एक साथ अनेक क्रेडिट कार्ड ना रखना और ऑफरों के मोह में ना फंसना, ये आदतें व्यक्ति को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखती है।
1: बिल्कुल सही सोनाली जी, आपको याद होगा बचपन में अपने माता पिता को, दादी को, नानी को बजट का हिसाब करते हुए देखा था। कागज पर, पन्ने पर लिखा जाता था खर्च कितना हुआ और कितने पैसे आए, कितनी है और कितने खर्च करने हैं। महीने के बाकायदा सामान की लिस्ट बनती थी। अब वो सब है ही नहीं, वो जमाना ही नहीं रहा। अब तो आप सीधे मॉल में चले जाइए, शॉप पर चले जाइए और चीजें खरीदते रहिए और हाँ कितना हुआ बिल, वो पेमेंट आप सीधे कर देते हैं। तो ये एक नुकसान हो गया है क्रेडिट कार्ड का, फायदे भी है।
2: बिल्कुल सही बात कही कि पुराने जमाने में यानी 2-3 महीने बाद में कोई बड़ा त्यौहार आने वाला है, जैसे दिवाली आने वाली, तो उसकी तैयारियां 2-3 महीने पहले से की जाती थी कि हमें ज्यादा बचत करना है तो फिर त्योहारों के वक्त हमारा खर्च ज्यादा होगा। आजकल हम इन बारे में कुछ सोचते ही नहीं।
1: और बुजुर्ग कहा करते थे चादर जितनी हो उतनी ही पांव पसारे, और अब चादर की ओर कोई ध्यान नहीं देता तो कई बार जो कर्ज तले भी फंस जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड सुविधा देता है, आय नहीं बढ़ाता है। वास्तविक समृद्धि अधिक खर्च करने में नहीं बल्कि संतुलित खर्च, नियमित बचत और विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने में है।
2: और जिस प्रकार क्रेडिट कार्ड का आकर्षण भी यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो आर्थिक जीवन को उलझा सकता है। और क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग जीवन को सरल बना सकता है, लेकिन लापरवाही इसे आर्थिक संकट का कारण बना सकती है। इसलिए खरीदारी से पहले स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछे, क्या मेरी ये आवश्यकता है या केवल एक क्षणिक इच्छा है। यदि इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से दिया जाए तो क्रेडिट कार्ड

0: कभी मायाजाल नहीं बनेगा बल्कि एक उपयोगी वित्तीय साथी सिद्ध होगा।
1: बिल्कुल सही कह रही। क्रेडिट कार्ड की चमक क्षणिक होती है, लेकिन कर्ज का बोझ वर्षों तक चलता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। और हमें ध्यान रखना है कि सुनवा दे एक गाना
0: गीत
1: इस वक्त।

0: सोनाली जी कहाँ खोई हुई हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर बस टिप्पणियां ही देखती रहेंगी या कुछ कहेंगी भी?
1: हाँ,
0: कहिए।
1: कहेंगे ममता जी, श्रोताओं ने इतने सुंदर सुंदर हमें कमेंट्स लिखकर भेजे हैं, तो चलिए उन्हीं के कमेंट्स पढ़ रहे हैं।
0: वो तो हम समझ गए कि आप ढूंढ रही हैं लगातार, लेकिन पढ़ के भी सुना दीजिए कुछ कमेंट, हम भी
1: जी
0: तो सुन लें क्या आपने अभी क्या पढ़ा।
1: जी हमारे एक साथी ने क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत अच्छी बात लिखी है। ये कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का मायाजाल मैं बताना चाहूंगा। जब क्रेडिट कार्ड का चलन जब शुरू हुआ था, उस समय प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों ने चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया था, लेकिन बिल में ऐसे चार्जेस लगाना शुरू हो गए थे जिनके विषय में मुझे बताया ही नहीं गया, और बहुत जल्दी मैंने अपना क्रेडिट कार्ड सरेंडर कर दिया। उस समय से आज तक मैंने तौबा कर ली है, और अभी भी मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड का कोई ऑफर आता है तो मैं मना कर देता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि जान बची लाख उपाय।
0: और हमने अपने श्रोताओं से ये भी आह्वान किया था कि शब्द हमारे, विचार आपके,
1: जी
0: तो अभी तक कोई टिप्पणी तो दिख नहीं रही है,

0: तो शब्दों का प्रयोग कैसे करें ये लगता है श्रोता समझ नहीं पाए क्या? और हमें तो इंतजार रहता है उनकी टिप्पणियों का, और उन्हें इंतजार रहता है कि हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचाएं। तो
1: जी
0: तब तक एक काम करते हैं, हम व्यंजनों की बात करते हैं। और ये जो व्यंजन व्रत में खाए जाने वाले व्यंजनों की हमने चर्चा की थी, तो
1: जी
0: हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि व्रत की शाही नमकीन कच्ची मूंगफली 100 ग्राम। अब यहाँ पर एक मिनट हम अपने श्रोताओं से फिर कह दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टिप्पणी शामिल हो, क्योंकि ये जो सेगमेंट हम श्रोताओं के नाम रखते हैं
1: जी
0: कि हम एक विषय देते हैं और आपको अपनी टिप्पणी लिखनी होती है,
1: जी
0: तो आदर शब्द हमने दिया है आज, तो आदर पर वो उनके क्या विचार हैं वो भेजें। तब तक हम ये टिप्पणी पढ़ रहे
1: जी
0: हैं। व्रत की शाही नमकीन बनाने के लिए कच्ची मूंगफली 100 ग्राम ले लें, और मोटा वाला साबूदाना ले लें 100 ग्राम, 100 ग्राम काजू, 10 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम चारोली, चारोली यानी चिरौंजी दाने,
1: चिरौंजी जी
0: और बादाम गिरी 100 ग्राम, मखाने 50 ग्राम, खरबूजा और कद्दू के बीज 50-50 ग्राम, शुद्ध घी तलने के लिए। अगर आप तलना नहीं चाहती हैं तो सिर्फ मूंगफली को भून ले, सेक ले, सारी चीजों को मिक्स करके ऊपर से 2 चम्मच घी डालकर, काली मिर्च, सेंधा नमक और पुदीने का चूर्ण डालकर एयर फ्रायर में 160 डिग्री पर 10-15 मिनट के लिए लगा दें। आपकी हेल्दी नमकीन तैयार हो जाएगी। और अगर घर में एयर फ्रायर ना हो तो कढ़ाई में घी डालकर तल भी सकती हैं, या कम घी में भी भून कर बना सकती हैं। यहाँ एक बात ध्यान देना है कि एयर फ्रायर में साबूदाना न डालें, साबूदाने को अलग से कढ़ाई में भून कर फिर इस मिश्रण को मिक्स करें।
1: एक हमारे साथी ने मखाने या साबूदाने की खीर की रेसिपी लिखकर भेजी है कि दूध को गाढ़ा करके मखाने, मेवे और चीनी डालकर बनाई जाने वाली एक पारंपरिक मिठाई, फलों का रायता, ताजे दही में अनार, सेब और केला मिलाकर बनाया गया एक ताजा सेहतमंद विकल्प है। साथ ही एक साथी ने लिखा है कुट्टू का आटा, इससे स्वादिष्ट और कुरकुरी कुट्टू की पूड़ी, पकौड़ी या पराठे बनाए जाते हैं जो शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं। सिंघाड़े का आटा, इसका उपयोग मुख्य रूप से मीठे सिंघाड़े का शीरा यानी हलवा या नमकीन सिंघाड़े की कढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। राजगिरा का आटा, इसकी रोटियां और पूरी स्वास्थ्य के लिए बेहद पौष्टिक है। और एक हमारे साथी ने तो व्रत वाले दही वड़े लिखकर भेजे ममता
0: अरे
1: जी
0: वाह, तब तो आप जरूर बताइए कैसे बनाते
1: एक
0: हैं
1: कप सामा के चावल, 1/4 कप साबूदानों को अच्छे से धोकर 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दे, फिर पानी छान कर दोनों को मिक्सी में डाले। साथ में हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सेंधा नमक और 2 चम्मच पानी डालकर चिकना पेस्ट कर ले। अब इस पेस्ट को एक पैन में डाल के मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा होकर आटे जैसा ना बन जाए। मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ एक उबला आलू, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से गूंथ ले और हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाए और मिश्रण से गोल गोल बड़े बनाए और गर्म तेल या घी में मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल ले। और तले हुए गर्म वड़ों को हल्के गुनगुने पानी जिसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला लो, 5 मिनट के रख दे, फिर हल्के हाथों से निचोड़ कर निकाल ले। अब आवश्यकता अनुसार दही ले, इसमें चीनी और थोड़ा सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह फेंट ले। एक प्लेट में वड़े रखे, ऊपर से गाढ़ा फेंटा हुआ दही डाले। इसके बाद व्रत वाली खट्टी मीठी चटनी, अमचूर या खजूर की हरी चटनी, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च और अनार दानों के साथ साथ ठंडा ठंडा परोसे।
0: क्या बात है। और हमारी एक सखी लिख रही है कि व्रत में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, पर मेरी समझ से व्रत का मतलब शरीर को डिटॉक्स करना है,
1: जी
0: जिसमें हमें तरल पदार्थ और वो पदार्थ जो आसानी से पच जाने जाए लेने चाहिए, जैसे कि कम घी में भुने मखाने, ऐसे ही भगर यानी कि सामा के चावल की खिचड़ी और खीर,
1: जी
0: फल मिक्स, कच्चे सलाद, खीरा, गाजर, चुकंदर का रायता, दही, नींबू, पानी, छाछ और खूब सारा पानी, इससे शरीर भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ये बात भी सही है कि जब हम व्रत करते हैं कि हमें मतलब शरीर को थोड़ा आराम मिले, पेट को आराम मिले,
1: जी
0: तो ये तरीका भी सही है। व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि रोज
1: खूब
0: की तुलना में खूब सारा
1: सारा
0: तला भुना खा लें
1: तला
0: और इतना ज्यादा खा लें कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए।
1: जी
0: और इस समय हम एक गाना सुनवा लेते हैं, तब तक हमें इंतजार रहेगा कि हमारे श्रोता लिख भेजेंगे। कुछ टिप्पणियां आई हैं शब्दों के लिए,
1: जी
0: लेकिन अभी और बाकी हैं, सुनते हैं गाना।

0: सोनाली, रात के कली एक ख्वाब में आए। हम रात को तो ख्वाब देखते ही हैं, कई बार दिन में भी लोग ख्वाब देखते हैं
1: जी
0: और ख्वाब देखने के बाद उसकी चर्चा भी करते हैं, बताते भी हैं, लेकिन कई बार कुछ बताने का अंदाज बड़ा अलग होता है,
1: जी
0: अनोखा होता है, जो आपको अलग जुदा करता है लोगों से, मतलब अच्छा लगता है। और कुछ लोगों के बोलने का अंदाज बहुत ही रफ होता है, रूखा होता है, रूखा होता है तो बहुत खराब लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि जब भी बोलें तो किसी के साथ सम्मान के साथ बोलें, आदर के साथ।

0: रिस्पेक्ट के साथ, तो कितना अच्छा लगता है ना।
1: फिर
0: कई
1: वो
0: बार
1: बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो, या फिर वो हम उम्र हो, है ना।
0: तो आप छोटों से आदर के साथ बोलती हैं?
1: जी बोलना ही पड़ता है आजकल
0: नहीं
1: के
0: तो
1: छोटे भी।
0: सीखेंगे कैसे?
1: जी जी
0: अगर
1: जी
0: हम उन्हें सिखाएंगे कि आप आदर के साथ बोलो और उन्हें आदर नहीं देंगे तो कहाँ से सीखेंगे, है ना।
1: ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने। वैसे आदर केवल एक शब्द नहीं बल्कि मानवीय रिश्तों की पवित्र बुनियाद है। दिखावा बनाम वास्तविकता, ये झुककर प्रणाम करने से ज्यादा मन में सद्भाव रखने की भावना है। समानता का प्रतीक है आदर, सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि हर छोटे बड़े व्यक्ति के अस्तित्व के लिए जरूरी है। ये बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है।
0: हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि शब्द होठों से निकलते हैं, विचार मन से जन्म लेते हैं, लेकिन आदर दिल से आता है, और जिस बात में दिल का आदर जुड़ जाए वो हमेशा याद रह जाती है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि आपके लिए एक छोटी सी बात शब्दों की मिठास कानों तक पहुंचती है, विचारों की गहराई मन तक, लेकिन आदर सीधे दिल में उतर जाता है, इसलिए जीवन में सबसे सुंदर भाषण हमेशा सम्मान वाले होते हैं।
1: एक साथ ही लिखते हैं, आप दूसरों को जो आदर देते हैं वो असल में आपके अपने संस्कार को दर्शाता है। अधिकार नहीं, उपहार, आदर कभी भी ताकत या पद के बल पर नहीं मांगा जा सकता। इसे अपने आचरण से कमाया जाता है। आत्मसम्मान से जुड़ाव, जो व्यक्ति खुद का आदर नहीं करता वो दूसरों का सच्चा आदर कभी नहीं कर सकता।
0: कई बार तो सम्मान लोग मांग के लेते हैं, कहते हैं कि देखो अरे आपने हमसे ऐसे बोला, हम तो इतने बड़े ओहदे पर काम करते हैं और ये हम इतने बड़े हैं आपसे उम्र में। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग आदर नहीं मांगते हैं, वो जैसे भिक्षा मांगते हैं, और आदर मांग के नहीं लिया जा सकता है,
1: जी
0: आदर के लायक
1: कमाया
0: होना,
1: जाता है।
0: कमाया जाता है, उसके लायक बनना पड़ता है।
1: जी
0: आपके भी आपके अंदर कुछ ऐसा हो, आपके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ हो कि लोग अपने आप विनम्रता से झुक जाए आपके सामने।
1: जी एक साथी ने लिखा है कि आदर वो सुगंध है जो शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से फैलती है। जिस घर में आदर का दीपक जलता है वहां प्रेम की रोशनी भी कम नहीं होती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि आदर वो खामोश भाषा है जिसे हर दिल बिना किसी अनुवाद के समझ लेता है, इसमें ऊंची आवाज की नहीं बड़े दिल की जरूरत होती है, जहां आदर हो वहां रिश्ते अपने आप खूबसूरत हो जाते हैं।
1: एक साथी ने और भी लिखा, आप पढ़ रही हैं और
0: नहीं आप पढ़िए, आपके हाथ में मोबाइल है और स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं
1: जी एक
0: तो।
1: साथ ही लिखते हैं, आदर ऐसी चीज है जिसे पाने की इच्छा हर इंसान के मन में होती है। बड़े हो या छोटे, हर किसी को अच्छा लगता है जब उसकी बात सुनी जाए और उसे महत्व दिया जाए। मेरा मानना है सम्मान देने से कोई छोटा नहीं होता, और रिश्ते बल्कि रिश्ते बड़े हो जाते हैं जब जहां आदर होता है वहां प्यार, अपनापन और विश्वास अपने आप आ जाते
0: बिल्कुल, जैसे आपने हमें आदर दिया अभी कि आप पढ़ेंगे, तो मैंने कहा नहीं आप पढ़िए। तो ये एक शब्दों में आदर कहीं छिपा होता है,
1: जी
0: हमें बताने की जताने की जरूरत नहीं होती। ये तो हम श्रोताओं को बता रहे हैं, वरना हम आपस में कहाँ कभी बताते हैं कि हम आपको आदर दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आदर वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। क्या बात है भाई, जिस व्यक्ति के व्यवहार में सम्मान होता है उसके रिश्तों में विश्वास और अपनापन बना रहता है। बड़े हों या छोटे, हर इंसान सम्मान का अधिकारी होता है। मीठे शब्द, विनम्र व्यवहार ही सच्चे संस्कार की पहचान है। हमने तो कई घरों में देखा है कि वो छोटे बच्चों से, 3-4 साल के बच्चों को भी आप कहकर बात करते हैं,
1: जी
0: तो कई बार ये भी लगता है इतने छोटे बच्चे को आप क्या कहना,
1: हाँ
0: लेकिन वहीं से सीखते हैं बच्चे।
1: जी और फिर बच्चे हम जैसा जैसा सुनते हैं वैसा ही वे पेश आते हैं।
0: अब आदर की बातें हो गई हैं, अब घड़ी की ओर जरा देखिए,
1: तो गाना सुनते हैं,
0: सुनते हैं ये गाना, प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: भाई दिल तो हमारा भी अभी नहीं भरा है, लग रहा है कि अभी और थोड़ा बोल लें बतिया लें, लेकिन
1: पर
0: बिल्कुल
1: रुकना
0: वक्त नहीं।
1: पड़ेगा।
0: तो अब सभी श्रोताओं से लेते हैं इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: ही सहेली।
1: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र। और इन दोनों गायकों ने न केवल मुकेश के बहुत सारे गाने गाए, बल्कि ये भी बताया कि मुकेश की गायकी की क्या खासियत थी और मुकेश उनकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं।
1: सजन रे झूठ।

0: उठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
1: आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग, पार्श्व गायक मुकेश की विनम्र याद।

0: बताइए अपने परिवार वालों में किसके लिए कौन सा गाना गाते हैं आप लोग?
1: पर्टिकुलरली ऐसा तो घर के अंदर वो बोलते हैं ना कि जो बाहर अपना प्रोफेशन होता है, घर के अंदर इंसान की आखिर पूरी पर्सनैलिटी अलग
0: होती है। बिल्कुल
1: तो वैसा तो होता नहीं है।

0: तो वैसा तो होता नहीं है।
1: हाँ
0: कभी घर के अंदर तो उल्टा, शायद अगर गा रहे हो तो घर वाले बोलते होंगे कि भाई अभी यहाँ बंद।
1: आपके साथ भी ऐसा होता है?
2: मेरे साथ तो क्या है कि अगर रिहर्सल है और शाम को शो है तो मुझे पता है कि मैं सुबह निकल रहा हूँ, रात को ही घर वापस आऊंगा, तो वाइफ का थोड़ा सा मूड उखड़ा रहता है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, गा के चला आता हूँ, उसके बाद ना कोई फोन आता है ना कोई मैसेज आता है, घर में शांति बनी रहती है।
1: ये देखो गाना जो है एक जरिया बन गया खुश करने का। तो ये गाना सुनाइए फिर
2: क्या।

फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना

0: हो,
1: मतलब ये गाना काम कर जाता है।
0: कभी कभी कर जाता है। अच्छा ये बताइए, रेडियो का आप लोगों की जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रहा है बचपन से अब तक? विविध भारती एक ऐसी संस्कृति है, मैं इसको रेडियो चैनल के बजाय कल्चर कहना ज्यादा पसंद करता हूं।
2: हम तो मैं समझता हूं इतने खुश नसीब लोग हैं कि हमने अपने दौर में रेडियो का वो सुनहरा दौर भी देखा है कि जब एक किसी के पास एक रेडियो हुआ करता था और हम उसके घर पे इकट्ठा होके 8-10 घर के अड़ोस पड़ोस के लोग, क्योंकि सबके रेडियो भी नहीं होता था, तो जैसे रेडियो सिलोन सुनते थे अमीन साहनी साहब को, तो वो दौर भी देखा। हवा महल एक प्रोग्राम आता था आपका, मेरा बहुत फेवरेट था वो, मैं 9:15 बजे वो हमें सुनता था।
1: क्या बात
2: तो
1: है?
2: आपको इतना हमने सुना है इन दिनों आप जो काम कर रहे हैं, तो ये चीजें संगीत से जुड़े रहने के लिए और उस दौर के दिलचस्प बातें और किस्से सुनने के लिए बहुत अच्छा जरिया रहा है हमारी जिंदगी में, इसने बहुत अहम किरदार निभाया हमारे जिंदगी।
1: क्या बात है गोविंद, आप तो इलाहाबाद से आते हैं और बहुत पॉपुलर है वहां पर भी।
0: बहुत बहुत। और मैं तो मतलब इलाहाबाद जहाँ पे गांव में पला बड़ा हूँ वहां पे तो अक्सर लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम होती थी रात में।
1: हाँ।
0: तो हमारे घर के बाहर के हिस्से में सब चारपाई लेके बैठ जाते थे, मेरे बाबूजी, चाचा जी, मेरी दादी, मेरी अम्मा, मेरे बुआ, वो सब बैठ जाते थे और रेडियो बीच में रख देते थे। तो वो दौर छोटा था लेकिन सुनता रहता था उनके साथ कि वो क्या सुन रहे हैं, मैं भी उनके पंखे हांकते रहता था और सुनता रहता था।
1: वाह वाह।
0: वो दौर लेकिन मैं आज भी याद करता हूँ, मतलब अब वापस नहीं आया।
2: हाँ, सच सच बात, सच
0: बात। बहुत मजा आता
1: तब
0: था उस टाइम पे,
1: एक सादगी थी और सब लोगों का साथ था।
0: सच में, सच
2: हाँ,
0: में।
2: और बहुत खुशी थी।
0: हाँ। बहुत खुशी।
2: अभी बाकी की सारी चीजें बहुत सारी जिंदगी में आशाएं बहुत सारी, लेकिन वो खुशी जो दिल की थी वो कहीं ना कहीं लेकेंगे।
1: अब कौन सा गाना सुनाने वाले हैं आप लोग?
2: अभी हमारी चॉइस की बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: गाने तो मुकेश जी के गाए तो सारे ही हमको पसंद हैं। ये ऐसी ऐसी बात होती है कि मतलब इतने सारे गानों के बीच में कभी कोई बोल देगा अच्छा कोई अपनी पसंद का गाना सुना दे,
1: ये बड़ा मुश्किल हो जाता है।
2: कौन सा मेरे को कौन सा पसंद है।
1: बिल्कुल सही है। देखिए ऐसा करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर चुनते हैं रोशन।
2: तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं। और
1: एक बहुत प्यारा गाना मुझे याद आ रहा है शैलेंद्र का, बहुत दिया देने वाले ने।
2: हाँ क्या बात है, क्या फ्लूट उसमें बजाई,
1: क्या बात है।

वाह वाह वाह, देखिए हमने रोशन की बात की, अब गोविंद जो है वो ये सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर बोलने वाले हो मेरी तरफ। मुझे ना रानी रूपमती फिल्म याद आ रही।

0: ये एस एन त्रिपाठी का संगीत है और वो भी एक ऐसे संगीतकार और फिल्मकार भी थे, फिल्में भी बनाते थे, जिन्होंने बहुत क्लासिकल टच के गाने बनाए।
1: आपने अच्छा वो फिल्म का नाम लिया, म्यूजिक डायरेक्टर बोलते तो मैं नहीं गा पाता।
0: मेरी वो तो हमारी जिम्मेदारी है। मुख्तार भाई, मुकेश को हमेशा ये कहा जाता है कि वो सादगी भरे गाने, सीधे चलन के गाने गाते थे, लेकिन उनके बहुत सारे गाने हैं जिनमें प्रॉपर शास्त्रीयता है, क्लासिकल टच है। तो इसकी बात करते हैं और कुछ गानों की मिसाल के साथ करते हैं।
2: थोड़ा सा लाइट वो उन्होंने गाया है, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए,
1: इन कदमों पे
2: किस का जिया ना झुक जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए।
0: एक फूल चार कांटे फिल्म का ये गाना है।
2: हाँ,
0: है ना।
2: हाँ,
0: आपको याद था?
1: नहीं।
0: क्या प्यारा गाना याद दिलाया, वाह वाह। और कौन से क्लासिकल गाने याद आ रहे हैं?
1: चंदन साबधन ने
0: आप गाओ।
1: चंद

0: चितवन।
1: क्या बात क्या बात है। देखिए आज हम मुकेश जी को याद कर रहे हैं और उन्हें याद करते हुए न केवल उनके गानों की, उनकी शख्सियत की बात कर रहे हैं और अभी उनके क्लासिकल टच वाले गानों की बातों से बात करते हुए हम यहां तक आ गए। मुझे पंडित रविशंकर के म्यूजिक डायरेक्शन वाली एक फिल्म याद आ गई, गोदान।
2: गोदान राजकुमार।
1: हाँ, और इस गाने की कितनी कम चर्चा होती है।
2: वाह, सही बात, सही
1: जो
2: बात।
1: भोजपुरी शैली का गाना
2: शैली
1: है।
2: के गाना।

0: देखिए क्लासिकल मुकेश जो है ना, ये एक पूरा अध्याय है जहां पर एक से बढ़ के एक गाने आते हैं, और बल्कि मजाहिया गानों का भी एक पूरा मामला है ना। जैसे मुझे कहते हैं कल्लू कबाल जैसा गाना भी उन्होंने गाया है, मैं हूं ठुमरी तू है ख्याल, मतलब कमाल है ना। ये देखिए राजेंद्र किशन क्या लिखते हैं इस गाने का मुखड़ा।
1: मुझे कहते हैं, मुझे

0: रहेगा।
1: क्या बात है। मुकेश को याद करते हुए ये जो शुरुआत में हमने कहा था ना कि उनको केवल सैड सॉन्ग्स के बादशाह नहीं कहा जा सकता, एक तरफ उनके गानों में रूमानियत है, दर्शन है, दूसरी तरफ जो है बहुत खिलंदर किस्म के, बहुत शरारती किस्म के गाने भी उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में, उनकी डिस्कोग्राफी में बाकायदा आते हैं। लेकिन शोज में अमूमन बहुत पॉपुलर गाने ही चलते हैं, तो मुझे तौबा ये मतवाली चाल जैसा गाना याद आता है।
2: हाँ,
1: मजरूह साहब का ये गाना,
2: तौबा ये मतवाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, तौबा ये मतवाली चाल झुक जाए।

0: गोविंद ये बताइए कि वो क्या बात है कि आज के जमाने के गाने इतना नहीं ठहर पाते हैं जितने अभी हम जितनी देर से बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है हमने दर्जनों गानों की बात की और न जाने कितने गाने आपसे तो मैंने गवा लिए हैं। वो क्या बात है कि आज के गानों की शेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं है?
1: एक बात जो मैं जैसा मुख्तार भाई ने कुछ समय पहले बोला था और मैं 2020 की बात करूं, 2020 में मैंने प्यारे लाल जी के साथ गुजरात टूर किया और रेफरेंस देने वाले भी यही हैं।
0: अच्छा,
1: थ्रू ही मैं गया था उनके साथ, 8 शो किया। जैसा इन्होंने बोला कि वो रिहर्सल में सीखने को मिलता है, वैसा वो एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ कि 8 के 8 शो में हम उनके साथ रहे, लेकिन शो से 2 घंटे पहले वो मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे गाने को कैसे क्या करना है, कैसे करना है, किसके बाद क्या, किसके बाद वो पूरा होता था। तो उस चीज को जब मैंने फील किया तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे भी ऐसे होते होंगे कि लिरिसिस्ट बैठते होंगे, कंपोजर बैठते होंगे, सब बैठते होंगे, फिर वो गाना बनता होगा। आज के दौर पर ऐसा नहीं है। आज के दौर पर मैंने भी भजन बहुत सारे रिकॉर्ड किए तो कंपोजर आता है, वो ट्यून देकर चला गया, लिरिक्स देकर चला गया, मैं खाली गा लिया, रिकॉर्डिंग बोला मैं मिक्सिंग कर लूंगा। तो आज जैसा चल रहा है उस हिसाब से वो सोल जो होता है ना वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। शायद यही रीजन है कि गाने आज जो है वो आ रहे और जा रहे, लोगों के मन में नहीं बैठ रहे।
0: आपका क्या कहना है मुख्तार भाई?
2: बिल्कुल, गोविंद भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है। और ये पुराने गानों पे एक तो लिरिसिस्ट ने इतने खूबसूरत अल्फाज लिखे
0: जी।
2: और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उतनी खूबसूरत ट्यून बनाई, गाने वालों ने, गुलकारों ने इतनी सहजता के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ उनको अदायगी की और स्टोरी के साथ, फिल्म की स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड रहते थे। और वो फिल्मों का जो दौर था वो एक आम इंसान की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट करता था, तो इसलिए वो सारे गाने इतने मीनिंगफुल थे कि आज भी अगर खुशी के गाने सुनो तो आपको खुशी महसूस होती है, गम के गाने सुनो तो गम महसूस होता है
0: जी।
2: और आजकल के सच बात है कि फिल्मों में अमूमन ज़्यादातर गाने ऐसे होते हैं कि जिसको शायद वो इस तरीके से काम नहीं किया जाता। गोविंद भाई ने बताया कि अगर सिंगर आ रहे हैं तो उनको एक लाइन बताई और उसने एक लाइन गाया और उसके बाद दूसरी लाइन उसको बताया, पूरा गाना भी शायद उनको नहीं पता हो क्या होना, एक एक लाइन पंच कर करके। और डिजिटल टाइम में ये सब शायद हो सकता है उनके वक्त की रिक्वायरमेंट ऐसी हो
0: जी, और इसीलिए आज के संगीत में उस तरह से
2: ठहरा हो
0: ज्यादातर गानों में आत्मा नहीं है।
2: नहीं,
0: अब मैं आप लोगों को एक मुश्किल चैलेंज देने जा रहा हूं और वो चैलेंज ये है कि कोई एक फीमेल गाना चुनिए जिसको आपको मुकेश की आवाज में गाना है।
2: अच्छा,
0: लेकिन उसका मुकेश वर्जन नहीं होना चाहिए।
2: मुझे स्ट्रेट यही याद आ गया कि चलो मुझको इस रात की तन्हाई में यहाँ लौट के आ
0: जाए।
2: मजेदार बात तो है ये कि अगर मुकेश जी गाते तो कैसे गाते हैं ना।
0: हाँ, ये सुनने वालों को भी एक अंदाजा लगेगा।
2: देखिए, एक मुझे लता मंगेशकर जी का गाना बहुत पसंद है, लग जा गले के फिर यहाँ सीधा,
0: तो ये यही सुनते हैं। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, जैसे मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ ना तो गोविंद ऐसे बैठ जाते हैं, मेरी बारी आने वाली है।
1: मैं सीरियस जाता हूँ, एक्चुअली मुख्तार भाई जो सोच रहे थे ना वही मैं भी सोच रहा था,
0: तब तक ये सोच
1: उनको ये गाना है
0: ये, लेकिन मजेदार होगा, लग जा गले मुकेश की आवाज में।
2: लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर

0: क्या बात, क्या बात है, देखो क्या मजेदार है कि मुख्तार भाई ने मदन मोहन का गाना चुना और इन्होंने शंकर जयकिशन का दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का गाना।
1: देखिए लोगों को लगना चाहिए हम वर्सटाइल हैं।
0: क्या बात है, सकते वाह वाह वाह, ये बहुत मजेदार बात थी। आपके परिवार की नई पीढ़ी नए गानों को सुनती है या पुराने गानों को सुनती है?
2: मेरी बेटी जो है वो पुराने गाने सुनती है और बेटा जो है वो नए गाने।
1: मैं देखिए मेरी रोजी रोटी मुकेश से चलती है।
0: हाँ।
1: लेकिन मेरे घर में मेरी वाइफ मुकेश जी को छोड़कर सब कुछ सुनती है।
0: तो आपको जबरदस्ती
1: और एकदम रेयर नंबर सुनती है, मतलब वो जो हम रेगुलर गाते हैं ना।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: वो नहीं सुनती वो, इसलिए शोज में अच्छा, भी नहीं आती, बोलती तुम वही तो गाओगे, कुछ नया तो गाओगे नहीं। इसलिए वो आती भी नहीं है और एकदम रेयर सुनेगी वो। अच्छा। अनरिकॉर्डेड किशोर जी का, आशा जी का, लता जी का एकदम वो सुनेगी, क्योंकि बंगाली है तो वो अलग सुनेगी और मुझे भी सुनाती है।
0: अच्छा।
1: सुनो सुनो सुनो
0: बिठा के
1: सुनना पड़ता है, घर में खाना मिलेगा तो सुनना ही पड़ता है।
0: ये मजेदार है। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि जिस गाने की चलित ट्यून जो बनी हुई ट्यून है उससे इतर किसी और ट्यून पर उसको गाया जाना चाहिए, मुकेश जी का गाना हो कोई?
2: ये सोचने के लिए तो हम बहुत छोटे हैं, हमको तो वो जो गाने जैसे बने हुए हैं ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट बने हुए और इसको अगर गा लें तो वही बहुत बड़ी बात है।
0: लेकिन आजकल बहुत रीमिक्सेस हो रहे हैं तमाम तरह के गानों के और मुखड़े उठा के कई बार ये होता है कि पूरे गाने को वैसा का वैसा रीमिक्स कर दिया, कई बार ये होता है कि सिर्फ मुखड़ा उठा लिया और आगे के अंतरे नए तरीके से लिख लिए और गाने डाल दिए। इधर के सालों में ये प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है।
2: एग्जैक्टली,
0: आप लोगों की क्या राय है इस बारे में?
2: मैं समझता हूं कि जो अभी ये कंटेम्प्रेरी जो सिंगर्स प्रोग्राम या वो करने लगे हैं या थोड़ा बहुत अगर फिल्मों में कर रहे हैं तो वो रिमिक्स का जो बीच में थोड़ा सा एक दौर आया जिसमें कुछ एक एडिशनल रिदम वो लोगों ने ऐड करके थोड़ा उसको डांसिंग मोड बनाने की कोशिश की कोई भी गानों के अंदर। मैं जैसे नेदरलैंड भी जाता हूं तो शो के बाद वो लोग एक सक्सेस पार्टी करते हैं, शो खत्म हो गया पूरा ही पुराने गानों का जैसा था वैसा, फिर वहां के वो गोरे म्यूजिशियन हमारे साथ ये पुराने गाने गा रहे हैं। अब अगर वो तेरे प्यार का गम तो अब उसमें वो लोगों को डांस करना है तो वो उसके अंदर वो थोड़ा सा बेस गिटार वो ऐड करके तो उसको वो रिदम दे दिया जाता है कि उन लोगों को वैसे उसमें मजा आ रहा हो डांस करने।
0: क्या मजेदार बात है, मतलब ये सोचना ही मजेदार है कि वो तेरे प्यार का गम जो है वो जैज हो जाए, रॉक हो जाए, उसमें वायलिन आ जाए, उसमें बेस गिटार आ जाए, ये तो अलग ही बात हो गई पूरी तरह से।
2: तो शायद नए लोगों ने इस वजह से, यंगस्टर्स की वजह से शायद ये किया हो कि भाई थोड़ा लोगों को लिरिक्स से उनको मतलब नहीं, जो शायद ये नई पीढ़ी है ज्यादातर लोगों को, और डांसिंग बीट अगर चल रहा है तो वो दे एंजॉय।
0: गोविंद आपका क्या कहना है रिमिक्सेस के बारे में, गानों को नई शक्ल देने के बारे में?
1: मैं तो इसके खिलाफ हूँ, मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि पुराने जमाने में जो गाने बने हैं वो कुछ सोच के ही बने होंगे। आपके पास उनसे कुछ बेहतर है तो आप लेकर आइए।

0: उनसे कुछ बेहतर नहीं है तो आप मत कीजिए, छेड़खानी मत कीजिए। और आप अभी का जनरेशन की बात करो तो मतलब मेरा ऐसा मानना है या मैंने देखा भी है बहुत जगहों पर कि आजकल छोटे बच्चे भी जो हैं, जो 10 12 15 साल के जो जनरेशन आजकल जो चल रही है, वो पुराने गानों की ही ट्यून सीख रहे हैं
1: बिल्कुल
0: और वो गा भी रहे हैं। मैंने कई जगह पर बहुत से लोग मेरे साथ गाते भी हैं पुराने गानों को, जैसे भाई अजीब दास्ता मैंने गाया, इन्होंने लग जा गले गाया, वो सब गाते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे गाते हैं, जीना यहाँ गाते हैं, जाने कहाँ गए वो, ये सब गाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: भाई
1: आज
0: चलो
1: इतने
0: अभी जो चल
1: बरस
0: रहे हैं।
1: बाद भी, और हम तो विविध भारती में बैठे हैं जिसने संगीत को, पुराने संगीत को बाकायदा बचा कर रखा है, और दिन रात हम वही गाने तो प्ले करते हैं।
2: हाँ बिल्कुल, और शायद यही वजह क्या, अभी जितने ये बड़े सिंगर्स जो स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं, तो मैंने इनको लाइव शोज में भी देखा है कि वो अपने गाने या डांसिंग और उसके बाद भी एक एक अपना एक पार्ट तो ऐसा रखते हैं जिसमें वो पुराने गाने गाते हैं, और वो लोगों को वो भी बहुत अच्छे लगते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुकेश के गाने गाते हुए लाइव शोज में आपने देखा कि लोग जज्बाती हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, है ना?
2: यस,
1: ये जो है कहीं ना कहीं वो गाने कनेक्ट करते हैं किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो जाने कौन सा दर्द उभर के आ जाता है।
2: एग्जैक्टली, सही बात है।
1: अब आप दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि एक एक दर्द भरा गाना आप लोग गाइए।
2: मैंने अक्सर ये देखा है कि जैसे जाने कहाँ गए वो दिन ये गाना हुआ, या दोस्त दोस्त ना रहा, या एक दिन बिक जाएगा, ये गानों में कभी शो खत्म होने के बाद कोई ऐसा ऑडियंस में से कोई आता है और वो बोलता है कि आप वो गा रहे थे तो मेरे आंख में आंसू आ गए। क्योंकि ये गानों का फील इतना जबरदस्त है,
1: बिल्कुल
2: इसको बनाया गया है, ऐसे ट्यून इतनी खूबसूरत है, तो शायद कहीं ना कहीं अगर इंसान की अपनी जिंदगी के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ या रिलेट कर रहा है वो,
1: जी जी,
2: तो जज्बात उसके उभर आते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो जाने कहाँ गए वो दिन।

0: क्या बात है, बिल्कुल मन में वायलिन बजने लगा इस गाने को सुनकर। गोविंद, आप कौन सा दर्द भरा गाना गाएंगे?
1: मुझे तो एक गाना बहुत पसंद है और बहुत कम गाने को मौका मिला, जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल।

0: जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल।
1: क्या बात है, ये वो गाने हैं जो जिंदगी के तनावों और दबावों में हमें थामते हैं। अब एक बात बताइए कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में बाकी तमाम गायक होते और मुकेश न होते तो कितनी सुनी होती ये दुनिया।
2: मतलब अब हमारे हिसाब से अगर आप देखें तो हमको तो बहुत सारा वैक्यूम दिखाई देता अगर
1: जी
2: मुकेश जी नहीं होते तो।
1: जी
2: क्योंकि मुकेश जी ने गाने कम गाए हैं बनिस्बत और प्लेबैक सिंगर्स के, लेकिन आप भी जानते हैं कि उनका जो पॉपुलैरिटी का रेट है, ग्राफ है, वो अगर कंपैरिजन किया जाए जितने नंबर ऑफ सॉन्ग्स दूसरों ने गाए हैं वो सबसे ज्यादा है,
1: आम जनता की बहुत चहेते
2: बहुत
1: गायक हैं।
2: चहीते गायक थे। यस यस
1: गोविंद आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल, ये बात तो सही है मुख्तार भाई से, मैं एकदम वो सहमत हूँ कि एकदम अगर वो नहीं होते तो एक खालीपन होता। और गाने भले बहुत कम गाए हैं, और मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि नंबर ऑफ सोलोज जीते हुए डुएट्स सब ज़्यादा हिट्स उनके पास ही हैं। और गुजरात के तो बाप रे बादशाह ही माने जाते हैं वो, गुजरात में तो हर घर में हर गली गली में उनके गाने बजते हैं।
1: तो दामाद थे वो
0: अच्छा
1: गुजरात
0: दामाद
1: के,
0: भी
1: है ना।
0: थे।

0: उनकी जो पत्नी है उनका नाम था सरल वेन, है ना, उनसे उनकी शादी हुई थी। और ये शादी जो है ये कांदीवली के एक मंदिर में की गई थी। उन्होंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ ये शादी की थी सरल बेन के साथ।
1: जी जी जी जी,
2: देखिए ना क्या रंग आ गया था, गुजराती बोलने लगे थे,
0: गुजराती गाने भी गाए,
2: गुजराती गाने भी।
1: और आज इनफेक्ट जो 22 जुलाई है जिस दिन जो उनका जन्मदिन है वही उनकी शादी का दिन।
0: हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत दिलचस्प बात है।
1: और शायद पर्पजली उन्होंने उसी दिन किया होगा।
0: हाँ मेरा ख्याल शायद कितनी
1: 46 में।
0: हाँ और तब उनकी उम्र थी 23 साल।
1: 23 साल
0: कुछ गुजराती गाने गाए उन्होंने,
1: 49 सॉन्ग्स है मुकेश जी के।
0: तो फिर हम कुछ सुनना चाहेंगे आपसे क्योंकि आप अहमदाबाद से आते हैं तो गुजराती तो गाएंगे।
1: बहुत मशहूर गाना जो कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक में है, नजर ना जाम छलकावी ने चाल्या क्या तमें,

0: क्या बात है, क्या बात है, कितनी मिठास है इस गाने में।
1: जी
0: बल्कि वो जाया भी करते थे गुजरात रेगुलर, है
1: ओ
0: ना, वहां
1: बिल्कुल
0: शोज भी उन्होंने काफी सारे
1: काफी
0: किए।
1: सारे किए
0: कई लोग किशोर वर्सेस मुकेश करते हैं और कहते हैं कि एक कंपटीशन थी, जबकि ऐसा नहीं था। किशोर, मुकेश, रफी एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। इन तीनों महान
1: एग्जैक्टली
0: गायकों की अपनी अपनी जगह है।
1: एग्जैक्टली
0: बिल्कुल
1: यस।
0: बिल्कुल। अब कौन सा गाना सुनाने वाले हो गोविंद आप?
1: मुख्तार भाई ने गुजराती गाना गाया, मैं भी गुजराती गा लेता
0: अरे बाबा क्या बात है,
1: हूँ
0: जरूर।
1: मारा भो

0: गया आंखों थी आंखों चार करी ने, बीमार करी ने मारा भोरा दिलो।
1: वाह वाह वाह, एक बिल्कुल अलग रंग आ गया। गुजराती गाने हमने सुने। ये जो आखिरी दौर था मुकेश जी की गायकी का, उसमें उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के गाने गाए, चाहे वो धर्मात्मा हो, धर्म कर्म हो, कभी कभी हो। ये बाद के दौर के जो गाने हैं उनके, उनमें से कुछ गानों को याद कीजिए।
2: जैसे मुक्ति।
1: हाँ हाँ, अरे वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
2: आर डी बर्मन जी,
1: आर डी बर्मन के साथ बहुत कम गाने हैं ना।
2: हाँ, 16 गाने हैं।
1: हाँ, एक फिर कब मिलोगी भी है।
2: हाँ, हाँ, लेकिन आमतौर से लोगों को जो पता है वैसे 5 ही गाने हैं।
1: अच्छा,
2: जो 16 गाने कुल गाए उनके साथ वैसे उन्होंने।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
2: लेकिन
1: मुक्ति, सुहानी चांदनी रातें।
3: हाँ।

0: क्या बात है, ये आडी बर्मन और मुकेश ही बिल्कुल अलग कॉम्बिनेशन है। तो गोविंद कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार,
1: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।

0: क्या बात है, क्या प्यारा आलाप इस गाने में लता जी का, और क्या रंग आता है। मुख्तार भाई मेला और अंदाज जैसी फिल्मों में मुकेश नौशाद के लिए गाते हैं, फिर एक बहुत लंबा गैप आता है,
1: गैप आ गया, हाँ।
0: और उसके बाद कहां वापस आते हैं, साथी में,
1: साथी
0: साथी की तरफ मैं आना चाहता हूं। क्या प्यारे गाने हैं, हालांकि एक दो गाने हैं जिनकी चर्चा होती है, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं कि मैं किस गाने का जिक्र करने जा रहा हूं।
1: हाँ, हुस्ने जाना है,
0: एग्जैक्टली इसी गाने की बात करनी है।
1: हुस्ने जाना इधरा, आईना हूँ मैं तेरा,

0: क्या बात है, क्या बात है। यहाँ कुछ बातें जो ये जो गानों के बीच में जो जानकारी की पुड़ियाएं मैं छोड़ता रहता हूँ वो जरूरी है बताना कि मजरू साहब अंदाज में लिखते हैं
1: हाँ
0: नौशाद साहब के लिए, और उसके बाद एक पूरा लंबा गैप आता है। कई दशक के बाद साथी में फिर से नौशाद और मजरू आते
1: जी
0: हैं, मुकेश और नौशाद आते हैं, और ये पूरा वेस्टर्न नोटेशन वाला
1: हाँ
0: मामला था जो कि नौशाद की फितरत नहीं थी। तो ये एक बड़ी बात है। केरसी लॉर्ड जो है उन्होंने
1: केसी
0: सारा
1: लॉर्ड
0: अरेंजमेंट इस
1: अरेंजमेंट
0: इन
1: किया
0: गानों का किया था। बारिश का मौसम है और मुकेश जी की याद जो है,
1: था
0: जुलाई और अगस्त ये वो महीने हैं जो जब पानी जम के बरसता है,
1: जी
0: और मुकेश जी का जन्मदिन आता है और उनकी याद का दिन 27 अगस्त भी आता है। बारिश के कुछ गानों की बात करते हैं। पहले शोर नहीं बाबा, शोर।
1: सावन।

0: और अब बारिश का दूसरा गाना।
1: उषा खन्ना जी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मैं कहने वाला था
0: इशारों में बात हो रही है सबक।
2: बर

0: वाह, जिस तरह से इस साल गर्मी पड़ी है हाँ। मुझे लगता है ये गाना बिल्कुल मुफीद है कि बरखा रानी जरा जम के बरसो, उतना ज्यादा जम के ना बरसो,
1: आना जाना ही मुश्किल हो जाए
0: लेकिन फिर भी बरसो, है ना। बारिश के दिनों में या कभी भी ऐसा हुआ है कि कभी किसी शो के लिए बहुत लेट हो गए हो और एकदम से सीधे स्टेज पर जाना पड़ा हो?
1: हाँ हाँ, ऐसा कई बार तो ऐसा मौके आए हैं कि बारिश के दिनों में, क्योंकि आमतौर से अपने का थोड़ा सा सिस्टम जो है रोड पे पानी भर जाना या
0: हाँ, हाँ.
1: कभी गाड़ी अगर जा रही और गाड़ी खराब हो गई, कहीं ट्रैफिक जैम है तो कभी थोड़ी सी देरी हो गई है। एक दो मरतबा ऐसा मेरे साथ भी हुआ है
0: और सीधे स्टेज पर जाना पड़ा,
1: सीधे स्टेज पर जाना पड़ा है।
0: तो कैसी कैफियत होती है उस वक्त?
1: थोड़ा सा वो होता है अनकंफर्ट, लेकिन ठीक है, वो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस और वो रहता है तो प्रैक्टिकली इसको निभा लेते हैं।
0: अब गोविंद, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से डिलेज हो गए और भागते दौड़ते हाँफते हुए?
2: मैं तो एक बार प्रबोधन ठाकरे में ऐसा हो गया था, एकदम अटक गया था और ब्लेजर पहनने का मौका नहीं मिला था ऐसे ही जाके पहला गाना गाया, उसके बाद आके चेंज किया।
0: क्या बात है,
2: कर्टन ओपन हो चुका था, अनाउंस एंकर ने अनाउंस कर दिया सब है, अब इंस्ट्रूमेंट दो दो बार बज गए।
0: अरे बाप रे बाप,
2: सिंगर आया ना, माइक भी चेक नहीं किया, जैसे मिला वैसे गाया।
0: और उसमें ये है कि आपको अपना एक तो बैलेंस प्रॉपर रखना है, है ना, और उसके बाद गाने को पूरी तरह से निभाना है क्योंकि लोग सीधे मुकेश जी से तुलना कर रहे हैं।
2: आप कितने भी टेंशन रहे, बैक स्टेज आपको टेंशन छोड़ के स्टेज पे रिलैक्स होके जाना है।
0: बिल्कुल,
2: ये बहुत जरूरी बात है, के लिए आए हैं तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, हमको बेस्ट देना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा होता है कि सफर करते हुए लोगों ने पहचान लिया और कहा कि भाई आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, हमने आपके फला शो में आपको देखा था?
1: हाँ, ऐसा तो बहुत मर्तबा होता है।
0: और लोग गाने वाने की फरमाइश भी कर देते हैं?
1: कभी कुछ लोग होते हैं ऐसे कि हाँ, कि बोल देते, कह रहे यार दो लाइन गा ही दो।
0: मतलब मूड है कि नहीं
1: वो नहीं, वो लोगों का तो, लोग इतने वो स्पॉन्टेनियस होते हैं तो शायद वो एक जज्बात में आ जाते हैं शायद, हाँ, देखने के बाद के उनको ऐसा लगता है कि शायद ये हर जगह यही काम करते रहे,
0: मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ। गोविंद, आपके साथ भी होता है?
2: बहुत बार हुआ है, अभी तो एक रिसेंट में भी हुआ था, मैं आरसीटी गया था वाइफ के साथ कुछ कपड़े लेने के लिए, तो वाइफ तो लेडीज सेक्शन चली गई, मैं जेंट्स में, तो मेरे पीछे पीछे एक आदमी घूम रहा है।
0: अच्छा,
2: मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों घूम क्यों रहा है मेरे पीछे पीछे। मैं मेरी वाइफ को इशारा किया, देखो कोई घूम रहा है, तो फिर पीछे से किया, मैं कहा मिश्रा भाई तमे सिंगर छो? हाँ। अरे वाह, मैं आपको सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है ऐसा वैसा, एक सेल्फी ले ली फोटो, ठीक है कुछ गा दीजिए, किसी की मुस्कुराहटों पे गा दीजिए।
0: अरे बाप रे बाप, मतलब आप
2: यहाँ पे कैसे, हाँ यहाँ पे कैसे गाओ, फिर गाया दो लाइन धीरे से उसके लिए मैंने।
0: देखिए ये होता है, फैंस
2: किसी को नाराज नहीं कर सकते,
0: जो संगीत के दीवाने उनको खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, आज की इस बहुत शोर भरे, भाग दौड़ भरे, व्यस्तताओं से भरे जमाने में मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है?
1: थोड़ा सा वैसे तो मुश्किल सवाल है ये, लेकिन यही है कि मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ कि इंसान अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर, खासतौर से पुराने गाने, चाहे वो मुकेश जी के हैं और सेंटिमेंटल सॉन्ग्स, चाहे वो किशोर कुमार साहब के आप सुन लो या रफ़ी साहब के, अगर ये पुराने गानों के अंदर इतना ठहराव और सुकून है कि अगर आप वो सुन लो तो दिमाग डेफिनेटली आपका खुश हो जाता है या शांत हो जाता है। और इसी वजह से मैं हमेशा स्टेज पर कहता हूँ कि ये पुराने गानों के अंदर जो बात है, जो मेलेडीज है, अगर ये पुराने गाने अपने 2.5-3 घंटे सुन लिए तो अगले एक साल तक यकीन मानिए कि नो कार्डियोग्राम, नो ECG, नो ब्लड टेस्ट।
0: बड़ी प्यारी बात बोली गोविंद, आप बताइए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो बहुत लोगों के मुंह से सुन भी लिया हूँ कि बोलते हैं कि म्यूजिक से अच्छा मेडिसिन कुछ नहीं है। और आज के टाइम पे इतना दौड़ भाग वाली जिंदगी में सबको रिलैक्स चाहिए, और जो 2.5-3 घंटे का 4 घंटे का समय लोग निकाल के आते हैं हमें सुनने के लिए, वो उस समय, मतलब मैं तो कितने लोगों को सुनते हुए ऐसा बोलते हैं मुझे कि ये 3-4 घंटे मामू सेरा में चले जाते हैं, अब एकदम भूल जाते हैं सब कुछ, सारी दिमागी टेंशन एकदम खत्म हो जाती है, वो 3

0: घंटे का रिलैक्स हमको अगले एक हफ्ते तक का एनर्जी देता है।
1: एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो आजकल इंस्टाग्राम का और ये जो 60 सेकंड की और 30 सेकंड की रीलों का जमाना आ गया है, क्या उससे लोगों का फोकस खत्म हुआ है? क्या आपको ये लगता है कि ऑडियंस में कोई बंदा फोन पे लगा हुआ है या हम गा रहे हैं?
2: हाँ, कुछ कुछ लोग होते हैं ऑडियंस में, डेफिनेटली ऐसे इस दौर में भी मैंने देखा कि हमारे पुराने गानों का प्रोग्राम चल रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, शायद हो सकता है कि वो लोग हों जो किसी के बुलाने की वजह से शर्म में आए हों या ज़बरदस्ती, या शायद वो चीज़ को लाइक नहीं करते हों, क्योंकि जिसको खुदा ने संगीत दिया ही नहीं है दिल में, और उसको अगर वो जगह पर लाके बिठा दो तो शायद उसके लिए टाइम पास कैसे करके और यहाँ से मैं अपना ख़त्म करके जाए, ऐसे शायद वो लोग होते होंगे। बाकी आम तौर से अमूमन मैंने देखा है कि जो लोग हमारे पुराने गीतों को सुनने आते हैं प्रोग्राम में, वो फुल्ली इंजॉय करते हैं। और मेरा बिल्कुल मानना ये है कि जो दिल से जुड़ा हुआ पुराने गीतों के साथ, मेलेडीज़ के साथ है, अगर वो दिल से इसको एंजॉय करेगा तो उसकी डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट वो इंसान के दिल और जहन पे होगी।
1: बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात है। गोविंद, आप क्या कहेंगे कि जो भी लोग लाइव म्यूजिक सुनने आते हैं, चाहे वो फिल्म म्यूजिक हो या इंस्ट्रूमेंटल हो या क्लासिकल म्यूजिक हो, मोबाइल एटिकेट क्या होने चाहिए? लोग किस तरह का न्यूसेंस करते
0: इसका जवाब तो मैं मुख्तार भाई से ही चाहूंगा, वो भी दें, क्योंकि सीनियर यही है, ये ज्यादा देखते
1: नहीं, सबसे
0: हैं।
1: पहले तो अपना मोबाइल म्यूट रखें,
2: मोबाइल म्यूट रखना
0: वो तो
2: चाहिए,
0: जरूरी है,
2: डेफिनेटली।
0: वो तो जरूरी
2: और
0: है।
2: अगर आपका एटलीस्ट कभी कोई इंसान ऐसा है कि प्रोग्राम में आया और उसको कोई ऐसा इमरजेंसी कॉल वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट वो वाइब्रेशन पे रख दे ताकि उसको इतनी सो पता चल जाए। लेकिन आप जो जिसको एंजॉय करना है उसको दिल से एंजॉय करना चाहिए।
1: बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
2: एग्जैक्टली।
1: मुझे लगता है कि हम अपनी इस बातचीत के लगभग आखिरी दौर में आ गए हैं, और अब अपनी अपनी पसंद के कुछ गाने आप लोग जो हैं उनका जिक्र करेंगे और उनमें से कुछ गाएंगे, और उसके बाद फिर हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेंगे।
2: जहाँ तक ताल्लुक यूनुस भाई हमारे पसंद का है, तो हमको तो मुकेश जी के सारे गाने पसंद हैं, लेकिन अब पर्टिकुलरली जैसा मैंने बताया कि कलाकार होता है तो वो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हमको थोड़े वैसे गाने अच्छे लगते हैं, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे हुआ, या जिस
1: हाँ
2: गली में तेरा घर ना
0: क्या
2: हो
0: बात
2: बालमा
0: है।
2: हुआ।

0: हमें पांव रखना नहीं, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा।
1: अब मैं आपको ऐसे फंसाने वाला हूं जैसा किसी ने नहीं फंसाया होगा।
2: ऑलरेडी आप कर चुके हो।
0: कब से सोच रहा हूं मैं ये चीजें कि अभी तक
1: अब मैं चाहता हूं कि आप लोग अंताक्षरी खेलें। आप एक गाना गाएं और अब जाहिर है कि इनको जवाब देना पड़ेगा, तो ये करते हैं 5 मिनट तक।
2: एक चलिए मेरा पसंदीदा गाना,
1: हाँ,

0: हूँ।
1: लो भाई
0: एच,
1: गोविंद।
0: हाँ एच है। हाँ, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन,
1: ये
0: के
1: जी
0: जिसके बाद

0: ओ रंग भरी चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे,
1: वाह
0: ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन

0: क्या प्यारी बात है। इसी स्टूडियो में जहां हम बात कर रहे हैं, योगेश जी आए थे और उन्होंने अपने गानों की कितनी सारी कहानियां मुझे सुनाई थी। बहुत प्यारे शानदार गीतकार, कितना प्यारा गाना उन्होंने ये लिखा है। और देखिए, मुकेश के गानों से भी अंताक्षरी खेली जा सकती है, ये हमने अपने सुनने वालों को बताया कि केवल मुकेश के गानों की अंताक्षरी हुई। एक आइडिया हमने लिसनर्स को दिया है कि वो मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि उनकी अंताक्षरी भी खेले अपने घरों की महफिलों में, अपने आयोजनों में, तो कितना मजा आएगा। अब बस श्रोताओं से इजाजत लेने की बारी है, तो मुकेश को श्रद्धांजलि देते हुए आप दोनों मिलकर कौन सा गाना पेश करेंगे?
1: जीना है मरना है कल के

0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र भाई, आप दोनों ने वक्त निकाला मुकेश जी की याद के लिए, ये महफिल विविध भारती में सजाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई, आपका भी, विविध भारती का भी, और उम्मीद करते हैं कि सुनने वालों को बहुत मजा आएगा इसको सुनकर, और बहुत दिल से हम सभी सुनने वालों का आपका शुक्रिया अदा करते
2: आप
1: हैं।
2: हाँ बिल्कुल, विविध भारती का और यूनुस भाई आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि मुकेश जी के गानों को और घर घरों में गुनगुनाया जाएगा और गाया जाएगा।
0: बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू।
0: ये था पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक विशेष कार्यक्रम। आज आपने इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी सुनी। इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे गायक मुख्तार शाह और उनके साथ गोविंद मिश्र। इन दोनों से बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोट कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये टुकुडाण, कनकनगर, सिलफली, चाचीडाण, करसी, बूढ़ा डाण, बरबसपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज, राजपुर और धमनी में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये इंदरपुर, नीलकंठपुर, शिवपुर, चिनिया, महावीरगंज, परसवार, दुप्पी, चौरा, इंद्रावतीपुर, धौली, सिमरवा, कामेश्वर नगर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये उदारी, असकला, दोरना, जरहाडी, शिवनाथपुर, सरगा, पेटला, ढोढ़ा गाँव, दातीढाप, कंडराजा, बरडांड, घटगांव, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, कांसाबेल और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये कुंजारा, लोटापानी, मयूरचुंदी, जामटोली, बिलासपुर, साजापानी, सोनारपहरी, तीतापाकेर, बर्नीझरिया, खड़ामाचा, पीठा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 101 है। ये प्रेमनगर, पोटिया, आमापाली, इंचपारा, कुड़ेकेला, बोजिया, जमाबीरा, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा, करतला और पसर खेत में हाथियों की कुल संख्या 13 है। ये बैगामार, चचिया, कलमी टिकरा, बरपाली, धौरा भाटा, घोटमार, पतरा पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधी बहरा, मतीन, आमा टिकरा, नवापारा, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 39 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, भैंसगढ़ी, कंटाझरिया, बटुरा कछार, अमलीडी, सराई पाली के वन क्षेत्रों में

0: विचरण कर रहे हैं।
1: अचानक मार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।
0: बलौदा बाजार वन मंडल के रवान और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये छताल, दलदली, तालाझर, मुरुमडी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, ताल, दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कुकरार, ताराझर, कुरवा पानी, खोला पारा, छिंदौला, लूठा पारा, फरसरा, बोडापाला, जारन डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।
1: दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल न करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।

0: वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कुकरार, ताराझर, कुरवा पानी, खोला पारा, छिंदौला, लूठा पारा, फरसरा, बोडापाला, जारन डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे अमर हाथी अमर गोट।
2: हमर हाथी हमर गोट ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।

चित्रपट संगीत का पहला गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम है सबक, सावन कुमार के शब्द हैं और उषा खन्ना का संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना मुकेश की आवाज़ में, सावन कुमार के शब्द थे और उषा खन्ना का संगीत, फिल्म का नाम सबक। आइए सुनते हैं आशा भोसले और विनोद राठौड़ की आवाज़ में चांदनी फिल्म का ये गीत। गीतकार आनंद बख्शी, शिव हरि ने संगीत दिया है।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए अब सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक के युगल स्वर में धड़कन फिल्म का ये गीत। समीर के लिखे गीत पर धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को स्टूडियो में शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा बरसात में कंदवा चरने एवं त्वचा रोग संबंधी रोग एवं उनका निदान, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा शरीर में होने वाले तिल व मसों का कैंसर में परिवर्तित होने वाले लक्षणों की पहचान एवं निदान के उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 2665923100026। फ़ोन नंबर एक बार मैं फिर से दोहरा रही हूँ, 2665923100026। श्रोताओं, फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 30 जुलाई 2026 और 31 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत हैप्पी न्यू ईयर। इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में, इरशाद कामिल के शब्द, विशाल और शेखर का संगीत।

बीवी नंबर वन इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गायक कलाकार अभिजीत और अनुराधा पौडवाल, समीर की रचना अनु मलिक ने तर्ज बनाई थी। और इसी के साथ चित्रपट संगीत

अभी चित्रपट संगीत का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 5:35 हुए हैं। आइए शामिल होते हैं युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवा जगत में।

नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। युवा जगत कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी श्रुति साहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? वैसे इन दिनों मौसम कितना सुहाना हो गया है। कहीं रिमझिम बारिश, कहीं मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, और ऐसे मौसम में अगर हाथ में गर्मा गर्म चाय का कप हो, साथ में कुरकुरे पकौड़े हों, तो बस मज़ा ही आ जाता है। ये बारिश जो हमें इतनी प्यारी लगती है, ये हरियाली जो हमारी आंखों को सुकून देती है, और ये ठंडी ठंडी हवाएं जिन पर हम बड़े प्यार से कहते हैं वाह क्या मौसम है। पर अगर प्रकृति नाराज हो जाए तो ये सब कहाँ से आएगा? इसलिए दोस्तों, आज सिर्फ मौसम का आनंद लेने का ही नहीं, बल्कि इस प्रकृति का शुक्रिया अदा करने की भी बात करेंगे, जिसकी वजह से ये मौसम इतना खूबसूरत है। बीते दिन हमने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया, तो चलिए चाय की चुस्कियों के साथ करते हैं आज की बातचीत की शुरुआत। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर एक सुबह आप उठें और चिड़ियों की चहचहाट सुनाई ही न दे, पेड़ों की ठंडी छांव की जगह सिर्फ कंक्रीट की गर्मी हो, नदियों का साफ पानी सिर्फ किताबों में रह जाए, ये सोचकर ही अजीब लगता है ना? आज सुबह की ताजी हवा बिना बिल भेजे मिलती है, धूप बिल्कुल मुफ्त है, बारिश बिना किसी बुकिंग के मिलती है, पेड़ों की छांव बिना किराए के। फिर भी सबसे ज्यादा नुकसान हम इन्हीं चीजों का करते हैं। जरा याद कीजिए अपना बचपन। बारिश में कागज की नाव, पेड़ों पर झूले, आम, इमली, जामुन, खेतों की मिट्टी की खुशबू, ये सिर्फ यादें नहीं हैं, ये प्रकृति के दिए हुए सबसे खूबसूरत तोहफे हैं। लेकिन आज के बच्चे मोबाइल स्क्रीन ज्यादा देखते हैं, आसमान में उड़ती चिड़िया कम, उन्हें वीडियो में झरने दिखते हैं, असली झरने कम। यही बदलाव हमें सोचने पर मजबूर करता है। दोस्तों, प्रकृति हमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देती, वह हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार, हमारा संगीत, हमारी खेती और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। सोचिए, अगर मधुमक्खियां ना रहे तो कितनी फसलें प्रभावित होंगी? अगर जंगल कम होते जाएं तो सिर्फ जानवर ही नहीं, इंसान भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर नदियां बीमार होंगी तो शहर भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। यानी प्रकृति की हर कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है, और हम भी उसी कड़ी का हिस्सा है। अक्सर हम कहते हैं सरकार को कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा कि क्या मैं उतना ही पानी इस्तेमाल करती हूँ जितनी जरूरत है? क्या मैं पक्षियों के लिए पानी रखती हूँ? क्या मैं बच्चों को प्रकृति के करीब ले जाती हूँ? दोस्तों, प्रकृति संरक्षण कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, ये छोटी छोटी आदतों का नाम है। और अच्छी बात यह है कि इन आदतों की कोई उम्र नहीं होती। एक बच्चा भी प्रकृति का दोस्त है और एक बुजुर्ग भी। तो आज कोई बड़ा वादा नहीं करते, बस इतना तय करते कि जब भी प्रकृति हमें कुछ दे, हम उसे लौटाने की भी कोशिश करेंगे।

ठीक है दोस्तों, आगे हम और भी बातें करेंगे, अभी वक्त है प्यारा सा गीत सुनने का। आइए सुनते हैं शान और आमिर खान के आवाज़ों में तारे ज़मीन पर का ये गीत, जिसे लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत दिया है शंकर महादेवन, एहसास एहसान नुरानी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, हम बात कर रहे थे विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में। ये दिन हर साल 28 जुलाई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को ये याद दिलाना है कि पृथ्वी पर मौजूद जल, जंगल, जमीन, वन्य जीव और जैव विविधता हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर इन्हें आज नहीं बचाया गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की कल्पना करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो प्रकृति संरक्षण की सोच कई दशकों से दुनिया भर में विकसित होती रही है, लेकिन बदलती जलवायु, बढ़ते प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के तेजी से हो रहे दोहन ने इस दिवस की अहमियत को और भी बढ़ा दिया है। दोस्तों, एक समय था जब मौसम लगभग तय समय पर आते थे, लेकिन आज कभी बहुत ज्यादा गर्मी, कभी अचानक तेज बारिश, कभी सूखा और कभी बाढ़, ये सब हमें एक ही बात समझाते हैं कि प्रकृति हमें लगातार संकेत दे रही है। हम सब कहते हैं कि प्रकृति हमारी माँ है, लेकिन सच तो ये है कि हम अक्सर उसी माँ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना भूल जाते हैं। कभी प्लास्टिक इधर उधर फेंक देते हैं, कभी पानी बेवजह बहने देते हैं, तो कभी पेड़ कटते देख कर भी चुप रह जाते हैं। पर हमें ये पता है कि बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। क्या आपने कभी एक पौधा लगाया और उसकी देखभाल की? क्या आपने कभी किसी को प्लास्टिक की जगह कपड़े का बैग इस्तेमाल करने की सलाह दी? या फिर कभी किसी प्यासे पक्षी के लिए गर्मियों में पानी रखा है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपने भी प्रकृति संरक्षण में अपना योगदान दिया है। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं अकेला क्या बदल लूंगा, पर एक एक बूंद से ही तो नदी बनती है, एक एक पेड़ से ही जंगल, और एक एक इंसान की अच्छी आदत से ही समाज बदलता है। आज के युवा तकनीक से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं। अगर हम हर दिन सिर्फ एक अच्छा मैसेज प्रकृति के नाम का साझा करें तो इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। और हाँ, प्रकृति संरक्षण का मतलब सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं है। अब आप बताइए, जब मैं प्रकृति बोलती हूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हरे भरे पेड़, पहाड़, झरने। अगर यही सब आया है तो जवाब आधा सही है, क्योंकि प्रकृति सिर्फ पेड़ पौधों का नाम नहीं, सुबह आपकी खिड़की पर आकर गुड मॉर्निंग कहने वाली चिड़िया भी प्रकृति है, बारिश की पहली बूंद भी, नदी की कलकल, समुद्र की लहरें, पहाड़ों की ठंडक, सूरज की रोशनी, तारों से भरा आसमान, सब प्रकृति है। और इतना ही नहीं, जंगल में घूमता बाघ, पेड़ों पर उछलता बंदर, फूलों पर मंडराती तितली, तालाब में तैरती मछलियां, यहाँ तक कि हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी और जमीन के भीतर छिपे खनिज भी प्रकृति का हिस्सा है। यानी जो कुछ भी हमने नहीं बनाया वो सब प्रकृति है। और अब जरा भारत की बात करें तो दोस्तों, ये तो आप भली भांति जानते हैं, हमारा देश प्राकृतिक संपदा

के मामले में बेहद समृद्ध है। हिमालय की बर्फीली चोटियाँ, पश्चिमी घाट के घने जंगल, सुंदरवन के मैंग्रोव, राजस्थान का विशाल मरुस्थल, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के समुद्री तट, हर क्षेत्र की अपनी एक अलग पहचान और जैव विविधता है। और अगर खनिज संसाधन की बात करें तो भारत के पास प्रकृति का अनमोल खजाना है। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट जैसे खनिजों से समृद्ध हैं। राजस्थान तांबा, जस्ता, संगमरमर और चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। कर्नाटक में सोना, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई जरूरी खनिज पाए जाते हैं। ये खनिज हमारी सड़कें, रेल, घर, बिजली, उद्योग और मोबाइल से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों तक हर जगह काम आते हैं। लेकिन जितना जरूरी इन संसाधनों का उपयोग है, उतना ही जरूरी उनका समझदारी से संरक्षण भी है, क्योंकि प्रकृति का खजाना असीमित नहीं है। इसलिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हमें यही याद दिलाता है कि प्रकृति सिर्फ हमारी जरूरत नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। ओके, तो रुकते हैं थोड़ा और सुनते हैं अगला गीत। लीजिए सुनिए अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाजों में फिल्म ताल का ये गीत, जिसे लिखा है।

0: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी, मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: दोस्तों, अभी तक हमने प्रकृति की हरियाली की बात की, पेड़ पौधों की बात की, नदी पहाड़ प्राकृतिक खनिज संसाधनों की बात की। अब बारी है प्रकृति की असली रौनक, जीव जंतु और वन्य जीव की। सच कहूं तो जंगल एक बड़े से परिवार की तरह है, जहां पेड़ घर है, नदियां जीवन है और वन्य जीव उस घर की हंसी, रौनक और धड़कन है। अगर परिवार का एक सदस्य भी कम हो जाए तो घर वैसा नहीं रहता। ठीक उसी तरह अगर कोई एक प्रजाति भी विलुप्त हो जाए तो पूरी प्रकृति का संतुलन प्रभावित होने लगता है। तो चलिए बात करते हैं उन साथियों की जो बोल तो नहीं सकते लेकिन अपने होने भर से पूरी धरती को जीवंत बनाए रखते हैं। हर जीव का अपना एक काम है। मधुमक्खियां फूलों का परागण करती हैं, तभी फल और बीज बनते हैं। तितलियां प्रकृति की रंग बिरंगी कलाकार ही नहीं बल्कि कई पौधों के जीवन चक्र का हिस्सा है।

जंगल और आसपास के इलाकों को प्राकृतिक रूप से साफ रखने में मदद करते हैं। हाथी जंगल के इंजीनियर कहे जाते हैं। वे चलते चलते नए रास्ते बनाते हैं और कई पेड़ों के बीच दूर दूर तक फैला देते हैं। और अब बात उस शेर दिल मेहमान की, जिसका नाम सुनते ही जंगल का हर जीव चौकन्ना हो जाता है। जी हाँ, बाघ। दोस्तों, आज 29 जुलाई को पूरी दुनिया विश्व बाघ दिवस मना रही है। इस दिन की शुरुआत 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट के बाद हुई थी। उस समय दुनिया में जंगली बाघों की संख्या तेजी से घट रही थी, इसलिए कई देशों ने मिलकर बाघों के संरक्षण का संकल्प लिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक बाघ को बचाने के लिए इतनी चिंता क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वह खूबसूरत दिखता है? तो जवाब है, बिल्कुल नहीं। बाघ सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि पूरे जंगल के स्वास्थ्य का संकेतक है। वह खाद्य श्रृंखला के सबसे ऊपर रहने वाला शिकारी है। अगर बाघ सुरक्षित है, तो इसका मतलब है कि पर्याप्त शिकार है, जंगल स्वस्थ है, पेड़ पौधे हैं, पूरा पारिस्थितिक तंत्र संतुलित है। भारत के लिए गर्व की बात है कि दुनिया के जंगली बाघों का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे देश में पाया जाता है। यही वजह है कि भारत में कई प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। यहाँ बाघों और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा की जाती है। लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। जंगलों का सिकुड़ना, अवैध शिकार और इंसान तथा वन्य जीव के बीच बढ़ता संघर्ष, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि संरक्षण की जिम्मेदारी सिर्फ वन विभाग की नहीं, बल्कि हम सबकी भी है। दोस्तों, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत, फिर हम आगे और भी बातें करेंगे।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान के आवाज़ में फिल्म चमेली का गीत, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है संदीप शांडिल्य ने। दोस्तों, अगर कभी जंगल घूमने जाएं तो वहाँ के मेहमान बनकर जाइएगा, मालिक बनकर नहीं। कूड़ा मत फैलाइए, जानवरों को खाना मत खिलाइए, तेज़ आवाज़ में संगीत मत बजाइए और जंगल के

नियमों का सम्मान कीजिए। याद रखिए, प्रकृति का हर जीव, चाहे वो चींटी हो, तितली हो, हिरण हो या बाघ, धरती की कहानी का एक जरूरी किरदार है। अगर एक भी किरदार चला गया तो कहानी अधूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर उन सभी गुरुओं को मेरा सादर नमन जिन्होंने हमें ज्ञान संस्कार दिया, साथ ही प्रकृति को भी नमन। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ आपकी अपनी श्रुति साहू। तब तक हंसते मुस्कुराते

अभी युवा जगत का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से

अभी युवा जगत का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

0: ग्राम सभा में बेरा की गोट के तहत आज विषय होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आज सफल कृषक से भेंट क्रम में कृषक श्री सुख सागर कैवर्त ग्राम आंकडीह कोनी विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर से राम सनेही की बातचीत सुनिएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 7:20 पर। कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण समय होता है 8:15 पर। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने हम आपके लिए लेकर आएंगे 6:20 पर और इसका शेष भाग सुनिएगा 7:00। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि 6:10 पर छत्तीसगढ़ी में और 6:45 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम अनुप्रसारित करते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। सुबह 9:55 पर और दिन के 11:55 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम रिले करते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। ये तो थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। खेती की बात आप सुनते हैं 6:30 पर। कल का विषय होगा गेंदा फूल की खेती। चिंतन का विषय होगा जीभ का सदुपयोग। इस कार्यक्रम को हम प्रसारित करेंगे कल 6:45 पर। सदाबहार नगमे सुनिएगा 7:30 पर। कल 9:00 आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग। प्रायोजक हैं विधि एवं न्याय मंत्रालय। इस कार्यक्रम का तीसरा एपिसोड आप सुनिएगा। कार्यक्रम आपकी पसंद सुनिएगा 10:00 और नैतराने का प्रसारण समय होगा 10:30 पर। संदेश टू सोल्जर्स, इस कार्यक्रम को हम अनुप्रसारित करेंगे कल 4:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कल 5:05 पर चित्रपट संगीत का प्रसारण किया जाएगा। महिला सभा सुनिएगा 5:35 पर। इसमें सामयिक चर्चा का विषय होगा बच्चों को स्क्रीन से दूर कर क्रिएटिव बनाएं। क्रम उड़ान में अमिता श्रीवास से भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे की। ग्राम सभा में बेरा के गोट के तहत विषय होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं 7:20 पर। संसद समीक्षा हम अनुप्रसारित करेंगे रात 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। चिट्ठी मिली का प्रसारण समय होगा 8:15 पर। किसानवाणी में फोन इन कार्यक्रम में आज की बात के तहत विषय होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किसानों के हित में। इसी कार्यक्रम में डॉक्टर अजय पांडे चर्म रोग विशेषज्ञ बिलासपुर श्रोताओं द्वारा फोन से पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। विषय होगा बरसात में कंदवा चरने एवं त्वचा रोग संबंधी रोग एवं उनका निदान। इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 7:30 पर। संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण सुनिएगा रात 10:00 कल, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 6:10 होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मिनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। लोकसभा आज लोक परीक्षा

अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक करीस पारित। प्रदेश के आने आने जिला मा पाछू दू दिन ले होवत सरलग वर्षा के सेती सामान्य जनजीवन प्रभावित होए हे। उहे कतकुन नंदिया नरवा उफान मा हवय। और झारखंड मा सक्रिय माओवादी संगठन के 8 झीन सदस्य मन ह आज बीजापुर पुलिस के आगू करीन आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार ले। लोकसभा ह आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दीस। ये विधेयक ले लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करे गए है। ये विधेयक में 10 बच्छर तक के कारावास, 10 करोड़ रुपया तक के जुर्माना और दोषी अपराधी मन के संपत्ति जब्त करे जैसा दंड के प्रावधान है। मामला ला जल्दी निपटारा करे खातिर विधेयक में हरेक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश ला रोज के सुनवाई बर विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करे के आदेश दे गए है। एमा यहू प्रावधान है कि अपराध के जांच में पुलिस थाना में सूचना दर्ज होए के तारीख ले 2 महीना के भीतर पूरा होना चाहिए। मुकदमा के सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होए के तारीख ले 3 महीना के भीतरी पूरा हो जाना चाहिए। विधेयक में गोटबात के जवाब देवत कार्मिक लोक शिकायत और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह किहिन की विधेयक में संशोधन कानून ला और ज्यादा कड़ा बनाए और तुरते न्याय दिवाए बर ये करे गए है। उमन यहू किहिन की नवा विधेयक विद्यार्थी और युवा मन के कल्याण के रक्षा खातिर सरकार के प्रतिबद्धता ला दिखाते। प्रदेश के आने आने जिला मा पाछू दू दिन ले होवत वर्षा के सेती सामान्य जनजीवन प्रभावित होए हे। उहे कतको नंदिया नरवा उफान मा हवय। बीजापुर जिला मा होवत सरलग वर्षा के सेती बारेगुड़ा गंगालूर समेत कतको रद्दा बंद होए ले सैकड़ों गांव के जिला मुख्यालय ले संपर्क टूट गए हे। उहे कतको जगह पानी रद्दा ऊपर ले बुहात हे जेखर ले अवई जवई प्रभावित होए हे। जिला प्रशासन ह लोगन ले जरूरत होए मा ही घर ले बाहर निकले और उपनत नंदिया नरवा पुल पुलिया ले दूरिया रहे और कोनो किस्म के आपात स्थिति मा तुरते एनडीआरएफ और तहसील कंट्रोल रूम मा सूचना देके अपील करीन है। एति महासमुंद जिला मा घलो सरलग होवत वर्षा ले कतकुन क्षेत्र मा बाढ़ जैसन स्थिति बन गए है। जिला के बागबहरा ब्लॉक के गाँव सिवाती मा भारी वर्षा के सेती मुख्य रद्दा के एक हिस्सा बुहागे जेखर ले गाँव के सड़क संपर्क टूट गए है। उहे कलमी दादर बांध मा पानी के आवक बाढ़े ले बांध लबालब भर गए है और पानी बुहा के तीर तखार के क्षेत्र और पहुंच रद्दा मा बुहावत है जेखर ले रद्दा मा गाड़ी के लाइन लग गए है और यातायात बाधित होवत है। जिला प्रशासन ह स्थिति के गंभीरता ला देखत प्रभावित क्षेत्र मा अलर्ट जारी करे है। गरियाबंद जिला में भारी वर्षा के सेती गरियाबंद के नगरी धमतरी और छूरा ले सड़क संपर्क टूट गए है। उहे पंटोरा कन्या आश्रम में जल भराव के सेती उहां के 50 ले ज्यादा लेका मन ला बारुका में भेजे गए है। सीकासेर बांध के 16 गेट खोले गए है। ये बांध ले 44,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाए ले पैरी और सोंढूर नदिया उफान में हवय। जिला मुख्यालय में घलो कतकुन जगह पानी भरे के समाचार मिले है। उहे सूखा नाला में बुहा एक सियान के शव 6 किलोमीटर दूरिया आज बरामद करे गए है। ओति धमतरी जिला में घलो मूसलाधार वर्षा ले नगरी ब्लॉक में कई ठीन गांव संपर्क जिला मुख्यालय ले टूट गए है। परिसर में पानी थी जिला स्कूल मुरुमसिल्ली

जारी है। प्रदेश में होवा सरलग वर्षा के बीच नगरी प्रशासन विभाग जम्मू 14 नगर निगम 59 नगर पालिका और 121 नगर पंचायत ला लक्ष्य के मुताबिक पौधारोपण की तैयारी के निर्देश दिए हैं। अवैया महीना ले शुरू होवैया ये विशेष पौधारोपण अभियान में कुल 4,95,500 पौधा लगाए के

रक्षक रखे गए हे। प्रदेश में काली 30 जुलाई के महतारी वंदन वृक्षारोपण अभियान राखे जाही, जेमा माइलोगिन मनला मुफत में पौधा बांटे जाही। ये अभियान में ग्राम पंचायत के मदद ले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर पहुंच के पौधा दीही। हर एक महिला काली के दिन अपन घर आंगनबाड़ी या सही जगह देख के पौधा लगा सकत है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। और अब आगु बढ़बो बांचे समाचार कोती। राज्यसभा हर राष्ट्रीय सम्मान के रक्षा बर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पारित करे हे। ये विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 मा अव संशोधन करही। प्रस्तावित विधेयक वंदे मातरम ला राष्ट्रीय गान असन वैधानिक संरक्षण दीही। विधेयक में हुए गोट बात के उत्तर देवत केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हकीन की वंदे मातरम के जानत बुझत अपमान करना मौजूदा कानून के तहत दंडनीय हो। 3 बच्छर के कैद, जुर्माना या दोनों हो सकत है। झारखंड में सक्रिय माओवादी संगठन के 8 जिन सदस्य मन हा आज बीजापुर पुलिस के आगू आत्मसमर्पण करीन है। एमा नक्सली मन के सेंट्रल कमेटी के सदस्य मिसिर बेसरा घलो शामिल है। आत्मसमर्पण करैया माओवादी मन में 5 महिला शामिल है। इखर मन पर कुल 49 लाख रूपया के इनाम घोषित रहीस। जिला के पुलिस अधीक्षक उमेश गुप्ता है बताइन की ये माओवादी मन पर झारखंड के आने आने क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर हमला, IED विस्फोट और आने कतकुन गतिविधि में शामिल रहे के आरोप हवाए। कांकेर के बाद कबीरधाम जिला के बोरला विकासखंड के मुड़वाही गांव में मलेरिया के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के टीम गांव में शिविर लगा के 1270 ले ज्यादा मनखे मन के जांच करीन, जेमा 35 जिन में मलेरिया के पुष्टि हुई है। मरीज में 6 जिन लड़का घलो शामिल है। बताए जाते कि झलमला स्वास्थ्य केन्द्र में 20 जिन संक्रमित मन के इलाज चलत है। गृह मंत्रालय है सशस्त्र सीमा बल SSB के लड़ाकू सामान्य ड्यूटी समूह सी पद के भर्ती बर नियम 2026 के अधिसूचना जारी कर दे है। एमा हरेक भर्ती बच्चर मा कांस्टेबल के पद बर भर्ती मा पूर्व अग्निवीर मन बर 50% पद आरक्षित हो ही। ये अधिसूचना सहायक उप निरीक्षक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पद पर बच्चर 2011 में जारी भर्ती नियम के जगह ली ही। नवा नियम ये महीना के 27 तारीख ले लागू हो गए है। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा उत्साह के संग मनाए जाते, जौनला व्यास पूर्णिमा घलो कहे जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया में पोस्ट करत कहीन कि गुरु सिर्फ ज्ञान ही नहीं देवे, भलुक अपन शिष्य मन में बने सोच और सदगुण देते। गुरु पूर्णिमा के मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ जिला के ग्राम बनोरा के अघोर गुरुपीठ में भगवान के दर्शन करके प्रदेशवासी मन पर सुख समृद्धि के मानता मानिन है। MBA में भर्ती खातिर होवैया कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट के अधिसूचना जारी हो गई है। परीक्षा के आयोजन IIM इंदौर कर ही ऑनलाइन अर्जी 3 अगस्त ले शुरू हुई। उम्मीदवार 15 सितंबर तक अर्जी दे सकी। परीक्षा 29 नवंबर के देश के 170 ले ज्यादा केंद्र में रखे जाही। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पर 31 जुलाई तक नामांकन मंगाए गए है। महिला और बाल विकास विभाग लेका पालक शिक्षण संस्थान और सामाजिक संगठन ले ज्यादा योग्य लेका मन के नामांकन कराए की अपील करी है। ये इनाम पर 5 ले 18 बच्चर आयु वर्ग के लेका अर्जी कर सकत है। उन्हें राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार पर घलो 31 जुलाई तक अर्जी मंगाए गए है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव आज रद्दा दुर्घटना में घायल हो गए हैं। ये हादसा छतरपुर ले लहुटत बेरा हुई। श्री सिंहदेव ला इलाज बर झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए हैं। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। लोकसभा आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक करीस पारित। प्रदेश के आने आने जिला में पाछू 2 दिन ले होवा सरलग वर्षा के सेती सामान्य जनजीवन प्रभावित हो है। उन्हें कतको नंदिया नरवा उफानवा हवे। और झारखंड में सक्रिय माओवादी संगठन के 8 जिन सदस्य मन हा आज बीजापुर पुलिस के आगू करीन आत्मसमर्पण। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 6:20 हुए हैं। पेश है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुनें।

श्रोताओं, साजन फिल्म का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। समीर के शब्द हैं, नदीम श्रवण का संगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी जिन्होंने हमें ईमेल किया है, आप हैं राजकोट से जूली जगदीश, प्राची और प्रवीण पुजारी। गाजीपुर यूपी जमानिया से आप हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। गुजरात से आप हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश। इसी गीत के लिए हमें ईमेल मिला है भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर का, प्रमिला आसमा श्याम कुंवर। लूत्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरुनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। जिला कवर्धा से आप हैं अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी ललिमा, खुशांत साहू और निशांत साहू। झारखंड से आप हैं अनजान साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रा नवाज, चाहत और इनके साथी। पलारी से आप हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन। लूत्रा खमरिया से आप हैं अकरम, अमीन, अर्श, आतिका। बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और अल कबीर। सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद, इरफान मोहम्मद। बागबहरा भद्रसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा कौशल सेन। दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आमना परवीन और वली भाई अंसारी। सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन सेन, माही सेन। बरकाकाना से अफजल, ताज, शाहिन, सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोखड़े, नंदा और हनुमान बोखड़े। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को स्टूडियो में शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11:00 तक सवाल पूछने के लिए

होगा, बरसात में कंधवा चरने एवं त्वचा रोग संबंधी रोग एवं उनका निदान, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा शरीर में होने वाले तिल व मसों का कैंसर में परिवर्तित होने वाले लक्षणों की पहचान एवं निदान के उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 2665923100026। फ़ोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 30 जुलाई 2026 और 31 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में आप तक पहुंच रहा है। फिल्म का नाम है पेंटर बाबू। इस गीत के लिए हमें इन श्रोता साथियों के फरमाइशी ईमेल मिले हैं। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, लछनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति साहू, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, नवाशहर पंजाब टोरोवाल से आप हैं गगनदीप पंथादी, तृप्ता प्रियंका प्रशांत प्रियम ठांडी, वामिका और वाणी, मुंबई से आप हैं आदिबा नास, फातिमा, आलिया, नसरीन, सबा अंसारी, पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना भगत, चेतन भगत, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन अपार ढिंगिया, पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल यशस्वी, अन्नपूर्णा वर्मा, पुतली कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे, नरगोणा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि शीतल राजेश, मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, डी ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, राजकोट से आप हैं रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, बिलाईगढ़ से खिकराम देवांगन, रेनू रजनी, प्रियांक और प्रियंका देवांगन, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका अनिष्का और तन्मय गजभिये, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सोंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयाश कुमार चंदन, पोड़ी भाटा कलतरा से दिलीप चंदन, चुवाराम यदु, निखिल वसुंधरा चंदन, प्रांजल चंदन, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल साहू, कुंभारगली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा और प्रतीक्षा चंदन, जोधपुर राजस्थान से आप हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, गर्व हिमांश, पांडर कवड़ा से अनिल, उषा, अनुश्री और धनश्री, बटिंडा पंजाब से हैं परम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिम्मू, एकम, दमन और अभिजोत, तिवर्ता डबरीपारा जिला कोरबा से महेंद्र प्रताप, मरकाम, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मरकाम, मोहन सिंह, सहोद्री बाई, मनमोहन सिंह, गिरिजा बाई, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी थदवानी, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य मेघा और नादेड़ महाराष्ट्र से आप हैं संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरी।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। फिल्म है चोरी चोरी, शैलेंद्र के शब्द हैं, शंकर जयकिशन ने संगीत दिया है। पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलअत फरहत, रित अत नुजहत, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाच, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह।

राम सहोदर नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे तेलंगाना से आप हैं, मोहम्मद बुरहानुद्दीन और इनके साथी पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, मुजफ्फरनगर बिहार से आप हैं आर्यन राज, पीयूष कुमार, रोहित राज, पंजाब से आप हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता, कर्ण शक्ति, रिया जया और दर्शन भाई। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये तराना।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने यहीं पर समाप्त होता है। इसका शेष भाग आप सुनिएगा शाम 7 बजे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:45 होने को हैं। हिंदी में प्रादेशिक समाचार के लिए अब हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित, कई नदी नाले उफान पर। माओवादियों के प्रमुख नेता और 1 करोड़ रुपए के इनामी मिसिर बेसरा को सुरक्षा बलों ने झारखंड से किया गिरफ्तार। बीजापुर में 8 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। और बस्तर के 164 व्यक्तियों का प्रतिनिधिमंडल कल मुख्यमंत्री के साथ नई दिल्ली में राष्ट्रपति से करेगा मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े दंड के प्रावधान शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक का पारित होना देश के करोड़ों युवाओं के सुरक्षित भविष्य, ईमानदार प्रतिभा और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं कई नदी नाले उफान पर हैं।

0: बीजापुर जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण बारेगुड़ा गंगालूर समेत कई मार्ग बंद होने से सैकड़ों गांवों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। कई स्थानों पर पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हुआ है। इधर महासमुंद जिले में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। जिले के बागबाहरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सेवाती में भारी बारिश के कारण मुख्य सड़क का एक हिस्सा बह गया है, जिसके चलते कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। वहीं कलमी दादर बांध में पानी की आवक बढ़ने के कारण बांध पूरी तरह भर चुका है। बांध के ओवरफ्लो होने से पानी आसपास के निचले इलाकों और पहुंच मार्गों पर बह रहा है, जिससे इस रास्ते पर गाड़ियों की कतार लग गई है और यातायात बाधित हो गया है। जिला प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है। दुर्ग जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। महमरा निकट के ऊपर करीब 4.5 फीट पानी बह रहा है, जिसके कारण प्रशासन ने दुर्ग से महमरा गांव जाने वाले एनिकट मार्ग को बंद कर दिया है। गरियाबंद जिले में भारी बारिश के चलते गरियाबंद का नगरी धमतरी और छुरा से सड़क संपर्क टूट गया है। वहीं पंटोरा कन्या आश्रम में जल भराव के कारण 50 से अधिक बच्चों को बारुका में स्थानांतरित किया गया है। सिकासेर बांध के 16 गेट खोल दिए गए हैं। इस बांध से 44,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से पैरी और सोंढूर नदियां उफान पर हैं। धमतरी जिले में भी पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नगरी ब्लॉक में कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। स्कूल परिसर में पानी भरने के चलते जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी ने नगरी के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। जिले के गंगरेल, सोंढूर, दुधावा और मुरुमसिली बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। इस बीच सक्ती जिले के दमावधारा झरने में नहाने के दौरान कल एक युवक बह गया था, जिसका शव डीडीआरएफ की टीम ने आज बरामद किया है। प्रदेश में हो रही व्यापक वर्षा के चलते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं।
1: प्रदेश में तो हम लोग सबको अलर्ट करके रखे हैं, सभी कलेक्टरों को अलर्ट करके रखे हैं कि कभी कहीं भी बाढ़ की स्थिति बनती है तो तुरंत सहायता जरूरतमंदों को पहुंचाया जाए।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बालोद और कांकेर जिले के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि रायपुर, दुर्ग और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: आगामी 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के पश्चात वर्षा का गतिविधि में कमी आने की संभावना है। आज रायपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कल भारी वर्षा जो है मुख्य रूप से पश्चिमी ओर का जिला है, जैसा मुंगेली है, राजनांदगांव है, नीचे कांकेर तक सारा जिले के हमने येलो अलर्ट भारी वर्षा के लिए जारी किया है। ये वर्षा का गतिविधि जो है वो कल शाम से कम होने की संभावना है।
0: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान निम्न अवदाब के मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना व्यक्त की है, जिससे प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। इस बीच छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 5 महिलाओं सहित 8 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक उमेश गुप्ता ने बताया कि इन पर कुल 49 लाख रुपए का इनाम घोषित था।
3: 8 नक्सलियों में से 5 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। इनमें 3 डीवीसी रैंक के हैं, जो कि 8 लाख के इनामी नक्सली होते हैं, और उनमें से 4 ACM रैंक के और 1 पार्टी मेंबर हैं। ये छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के रहने वाले थे, उसमें से कुछ बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा में भी इनका निवास रहा है। ये काफी समय से झारखंड में सक्रिय रहे और उन्होंने ये फैसला लिया कि वो यहाँ पर बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बस्तर से रवाना हुए 164 व्यक्तियों का प्रतिनिधिमंडल कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में बस्तर के परगना मांझी, चालकी समाज प्रमुख, बस्तर पंडुम के प्रसिद्ध जनजाति युवा कलाकार, जनजाति समाज प्रतिनिधि और बस्तर के पद्मश्री सम्मान प्राप्तकर्ता शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि कल वे बस्तर के प्रतिनिधिमंडल के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
1: कल दिल्ली जा रहे हैं और हमारे जो बस्तर क्षेत्र के मांझी, चालकी, मुरिया जो लोग हैं, जिनका बस्तर दशहरा जो विश्व का सबसे बड़ा दशहरा है, 75 दिनों का दशहरा, और उसमें उनका विशेष रोल रहता है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया मिलने का समय दी है तो उनके साथ हम लोग भी राष्ट्रपति महोदया से मिलेंगे।
0: प्रदेश में कल 30 जुलाई को महतारी वंदन वृक्षारोपण

अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत महतारी वंदन योजना से लाभान्वित महिलाओं के साथ साथ अन्य इच्छुक महिलाओं को निःशुल्क पौधों का वितरण किया जाएगा। इस बीच राज्य के नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में अगले महीने एक विशेष अभियान चलाकर करीब 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गुरु केवल ज्ञान प्रदान ही नहीं करते, बल्कि अपने शिष्यों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और उन्हें नेक विचारों और सद्गुणों से परिपूर्ण बनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले के ग्राम बनोरा स्थित अघोर गुरुपीठ में अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम जी की प्रतिमा के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव आज एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं। ये हादसा छतरपुर से वापसी के दौरान झांसी और ललितपुर के बीच हुआ। श्री देव का इलाज झांसी के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। इस पुरस्कार के लिए 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार के लिए भी 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये पुरस्कार दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति और संस्थाओं को दिया जाता है। इस बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत ऋण और अऋणी किसानों के लिए पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर कॉलेज कांकेर के प्रशिक्षक ब्रिगेडियर बी के पोनवार का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री पोनवार के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित और सशक्त बनाने में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। एमबीए में प्रवेश के लिए होने वाली कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 3 अगस्त से शुरू होगी। उम्मीदवार 15 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने ई और टी संवर्ग की शासकीय शालाओं में शिक्षक के 1654 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीजापुर जिले के उसूर इलाके में 2 अलग अलग स्थानों पर माओवादियों द्वारा पूर्व में लगाए गए आईईडी के ब्लास्ट होने से 2 ग्रामीण घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय जेल बिलासपुर में एक बंदी द्वारा खाना पकाने वाली भट्टी में कूदकर आत्महत्या का प्रयास करने की खबर मिली है। और राजनांदगांव जिले में पुलिस और एनसीबी की संयुक्त टीम ने एक वाहन से 41 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 20,59,000 रूपये बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित, कई नदी नाले उफान पर। माओवादियों के प्रमुख नेता और 1 करोड़ रुपए के इनामी मिसिर बेसरा को सुरक्षा बलों ने झारखंड से किया गिरफ्तार। बीजापुर में 8 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। और बस्तर के 164 व्यक्तियों का प्रतिनिधिमंडल कल मुख्यमंत्री के साथ नई दिल्ली में राष्ट्रपति से करेगा मुलाकात। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

अभी हिंदी में प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7 बजने को हैं, लीजिए सुनिए ईमेल करे गीत सुने का शेष भाग।

श्रोताओं, ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का शेष भाग आप सुनेंगे आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आराधना फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने इसे रचा है और एसडी बर्मन का संगीत। इस गीत के लिए हमें इन श्रोता साथियों की ईमेल मिले हैं। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष देवांगन, रवि, शनि, रियांश, कान्हा, आदित्य देवांगन। मुड़गहन से आप हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से आप हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, राहुल, गुरु शब्द सिंह राहुल। जालंधर से आप हैं संदीप, ज्योति, मन्नत, कमल, साहनी और इनके साथी। पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु, सोनाली नारंग। बरेली कैंट चनेहट्टी उत्तर प्रदेश से आप हैं विनेश कुमार, रागिनी और मुस्कान। सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन वर्मा, पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा। उदयपुर सरगुजा से आप हैं जीवधन सिंह, पैकरा, घुरनी, करिश्मा। सोमार साय कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि, ऐश्वर्या, पैकरा। भिलाई तीन चरौदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन, जिशान, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी। बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू। बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता श्रीवास, रजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी। भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, नीरज रावत, शुभम, सौरभ रावत। ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लव्या, आरव खुराना, एस के पप्पी। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद, आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद। दिल्ली से प्रमिला, हेमा और अंतरा सिंह। डुमराव से वली उल्लाह अंसारी, सोनम वली और आसमा वली।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने। तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार चंद्रकला, पंजाब से आप हैं राज शर्मा, मीना योगेश, निवान, सौरभ, शाइना और इनके साथी

मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून। गुमला झारखंड से आप हैं नज़मुल होदा, एस एम जावेद और शगुफ्ता अंजुम। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव भानु, प्रिया माधुरी, किरण। हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मंटू भाटिया और मयंक भाटिया। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कलिंदरी लहरे। निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत, करमजीत कौर। बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश टुकटुक, प्रिंस एकांश, सुमित। पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन, रोजी, पर्ल और विलिस। तिलहारा से प्रकाश, पोहरकार, सुजाता और इनके साथी। कांकेर जिला भानबेड़ा मुंगवाल से भारत राम, जयंती, हेमंत, उमंग और मोक्ष। करनाल से आप हैं सुधीर, नूतन, संदीप, जगमोहन, प्रतिभा और इशप्रीत शर्मा। कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संजीत वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वद देशमुख, सानवी देशमुख। दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नगमा अजीम। गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरी बाई, जयश्री देवांगन, ऋषभ, ऋचा देवांगन। कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली और धनंजय कटनकर। दिल्ली से सोनम सना और आदिबा। दुर्ग से कामड़े सी आर, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां और इनके साथ ही। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में आशिकी फिल्म का ये तराना। समीर के शब्द हैं और संगीत रचना है नदीम श्रवण की।

इस गीत के साथ ही ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने यहीं पर समाप्त होता है।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: अभी आप सुन रहे थे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने। ये आकाशवाणी बिलासपुर है, 7:20 हुए हैं। आइए शामिल होते हैं ग्रामीण भाइयों के कार्यक्रम ग्राम सभा में।

ग्राम सभा कार्यक्रम के सुनैया जम्मू संगी संगवारी दीदी महतारी मल्ला अंजोरी भाई की जय जोहार राम राम संगवारी हो। देखते देखत आषाढ़ महीना नाकत हवा और सावन लगत हवा, तही पाए के हमन घेरी बेरी कैथन के

0: तिहार फागुनोरी के तिहार, कार्तिक मनाबो दिवारी। संगी और जम्मो जन के खेती किसानी के बुद्धा काम हर तो रमा जन माते में होई। काबर के हमर छत्तीसगढ़ में किसान भाई मन के रहना ज्यादा होते, तेही पाए के हमन घेरी बेरी कीथन के हमर तीर अलमल पानी के जोगाड़ रहे तक खेती हमन कर सकें। कहे के मतलब हमर कुछ भी खेती किसानी के बूता काम हर पानी के सेती कभू झन रुके, है ना। तही पाए के हमर राज में हमर देश में एक ठन योजना घला चलत हावे जेकर नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आज हमन यही विषय में हमन गोट बात करबो, है ना। तो संगवारी हो, आप मन जानत हो कि भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण योजना ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जब हमन जानथन के खेती हमर जीवन के आधार होते, ते ही खेती पर सबले जरूरी जिनिस होए है पानी। पानी समय में मिल जाते तो किसान के मेहनत रंग लाते और फसल लहला उठते और घर परिवार घला खुशहाल हो जाते। फिर जब पानी के नमी कमी होती तो नुकसान उठाए ल पड़ते। यही बात ला सियान में ध्यान में रख के भारत सरकार हर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू कर गया है। जे योजना के प्रमुख उद्देश्य है कि हर खेत ल पानी और हर बूंद ले अधिक फसल मिले। ये योजना के तहत खेत तक पानी पहुंचाए बर नहर, तालाब, चेक डैम, खेत तालाब पानी संग्रह, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर है, ऐसा कई ठन आधुनिक की सिंचाई की योजना ल बढ़ावा दे जाते। ये तरीका ले कम पानी घलो में कम रकबा में खेती करे जा सकते। ये योजना के प्रमुख लाभ ये हवा है कि किसान के खेत तक पानी की सुविधा पहुंचाए। दूसरी बात, पानी के बचत होए जिन ले आने वाला जन पीढ़ी है घलाव पानी सुविधा से ले सके। तीसरा बात, किसान कम लागत में ज्यादा उत्पादन लेके खेती किसानी अच्छा करे और आमदनी अपन बढ़ा सके। चौथा बात है, सूखा के समय में घलो खेती बड़ा आसान तरीका ले हो जाए। संगवारी हो, पानी भगवान के अनमोल देना है ना। हमन पानी के एक एक बूंद ला बचाबो, खेती किसानी घलो मजबूत हो ही और गाँव के विकास तो अभी करी। पानी बचावाओ, खेती संवाराओ और खेत तक पानी पहुंचावाओ, प्रधानमंत्री कृषि योजना अपनावाओ और किसान और खुशहाल गाँव ल बनावाओ, है कि नहीं। और ये बात ल सुन के गुन के हमन ला आजू बढ़ना हवे, काम ला करना है, अब लेवाओ। यही पाए के सुन ले थन कुछ काम हो ज्ञान के बाद।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
2: अच्छा,
1: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
1: हर लेन देन अब है आसान।
4: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़,

0: ये खदान गंडई कोरबा महासमुंद कोंडागांव रायगढ़ राजनांदगांव नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित धान असिंचित मक्का मकई सोयाबीन मूंगफली तुअर अरहर मूंग उड़द कोदो कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी मार्गदर्शन सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 1-4447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ सुरक्षा कवच पाओ।
1: कहां जाते हैं जो ही बन के राटा पाटा कहां जाते हैं जो ही बन के राटा नवाटा है रिंगत हवस ऐसन तय है जैसे ले जावत हस आटा हमर उमर भर के ऐसने दिन रहे झन होए कब उमर बाटा और अचल न दुनो झन गुनत गुनत चला थावन और लेवत हन मिर्चा पताल भाटा मिर्चा पताल भाटा
2: भाटा मिर्चा पताल ले लाओ।
3: देखा तो का धरे है सो
2: भाटा।

0: ये सुघर गीत सुनाते से मीरा वैष्णव और कमल सिंह राजपूत संगवारी हो। खेत में जेकर संजा होते होते जी हाँ बिहान, खेत में जेकर संजा होते होते जी हाँ बिहान, ओला कथे किसान का भैया कही थे ओला कथान, सूरज देव के हुए के पहली खेत में जो न जाते, नहीं खोजे बने खाए पिए बर बोरे बासी खाते, जीते परमारत बर और माटी बर देते परान, ओला कथे किसान का भैया ओला कथे किसान। संगवारी हो, आज भेंट वार्ता में हमर सफल किसान हवे गांव उकड़ी कोनी विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर है ना, एकर हवे आंकड़ी कोनी बिलासपुर के सुख सागर कैवर्त हवन से गोट बात करते हमर राम सनी भैया। तो ले राम सनी भैया गोट बात शुरू करो और हमन कले चुप मन लगा के सुना था भाई।
1: संगवारी हो, हम रोज की रोज कोई न कोई नवा नवा जानकारी ल सकेल के लाथन, ताकि ये नवा नवा जानकारी ल सुन के आप सब उन्नत तकनीकी लिए खेती करो और उन्नत तकनीकी लिए खेती करके अपन आर्थिक स्थिति मजबूत करो। तो यही क्रम में हम पहुँचे ग्राम आकड़ी विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर के एक किसान भाई हवे, जिन मनहर खेती किसानी के संगे संग में साग भाजी की खेती करके अपन आर्थिक स्थिति मजबूत करते। तो ये मन कौन प्रकार के खेती किसानी करते, इकर अनुभव साझा करबो। राम राम, जय जोहर भैया।
2: राम राम भैया। राम राम।
1: सबले पहले तो हम आपके नाम ले जानना चाहबो, तो अपन नाम ले बता।
2: मोर सुख सागर कैवर्त है और ग्राम आगदी में रथम है, विकासन मस्तूरी जिला बिलासपुर के रहैया में है।
1: सुने हैं कि आप खेती किसानी के संगे संग में साग भाजी की खेती घलो करता।
2: हाँ भाई, खेती किसानी के काम के साथ साथ साग भाजी बहुत है, विशेष सब्जी वो लगा थन तो अपन खाए के खाए भी हो जाते और ओकर साथ साथ बाजार में लेके बेचथन और जनतो मन ला खवाथन, बेचत भांग थन हाट बाजार में जाके।
1: कतिक उम्र होती भी आपकी, उम्र बता।
2: मोर उम्र है 68 के अब आसपास होगी से उम्र है।
1: खेती किसानी के बूता लग कतिक दिन होगी करत।
2: मैं अपन 40 साल की उम्र के बाद में खेती बाड़ी करते हैं और आज भी करत आथन, ऐसे करके अपन एक ठो रोजगार बना लेथन और ओकर से बढ़िया फायदा हो जाते, साग भाजी अपन घर में खाथन बेचथन, दो चार पैसा भी बन जाते।
1: खेती किसानी करता तो ये जमो खेत मन आप मन की खुद के खेत आए कि आन के रेघा कुता लिए रहता।
2: नहीं, ऐसे तो घर के हवा और रेघा कुता पहले लेत रहे और ज्यादा सब्जी बोत रहे, तब कुछ कम करे हन और अब घर की खेती बाड़ी लुब जाथन और घर से उपजा के अब रेघा कुता बंद कर दे हन।
1: पढ़ाई कहाँ तक करे आप?
2: 8वीं पास रहे, 9वीं पढ़त रहे और सन 2073-74 मोर पढ़ाई छूटी से ओकर बाद में खेती बाड़ी में जुड़ गए हूँ।
1: तो आपके विचार है खेती किसानी करे बाद कैसे आई?
2: मोर मोला रुचि छोई, पढ़ाई छोड़े के बाद ना खेती किसानी करे की मोला शौक लगी, ओकर बाद तो मोर नौकरी कागज आगे में नौकरी नहीं करे, खेती बाड़ी पसंद लगी।
1: खेती किसानी में कौन कौन प्रकार के खेती किसानी करता है बता।
2: पहले तो धान मान भी बोत रहे, ये धान आज भी

0: बोत हन अउ गेहूं बोत रहेन, साथ साथ उन्हारी रहत रही, तिवरा बोटरी अकरी लुअर टोरत रहेन। सब्जी लगाए बर कहिया आप राम सैनी भैया, तो मैं है रमकेलिया है, बरबट्टी है, अभी ये बरसात में तरोई है, डोडका ल रबी फसल लगा था और बरबट्टी तो दोनों फसल में चलते है, रमकेलिया बरबट्टी मन ये प्रकार के हमन साग भाजी ला तरीका से बोथन और खादवाद के नाम से कही तो हमर सो अच्छा। सब्जी में हमन राम से नहीं भैया ये जतका करेला है, बरबट्टी है, रमकेलिया है, लाल भाजी वगैरह मन है, अभी थोड़ा से लाल भाजी तब बरसात आगे संभियम नहीं हो है। पूछे की खेती बोए आराम से नहीं हुई है। हल्दी की खेती भी करते हैं, जिमी कांदा बुआ है, जिमी कांदा है, हल्दी है, रखिया है, मखना है। अच्छा अब ये साग सब्जी के साथ साथ हमारे सो जानवरों है, पशुपालन करथन और पशुपालन से हमला दूध दही घी सब मिलते है।
1: वाह वाह सुख सागर भैया, बड़ सुगर सुगर बात ल बताया था। तो हमने ये बताया कि ये प्रकार के जब खेती किसानी करता, साग भाजी की खेती हो चाहे धान की खेती हो, तो भूया की तैयारी लग कौन प्रकार ले करता?
0: हाँ भूया की तैयारी राम से नहीं भाई, ये ला हम ये प्रकार करते हैं जिसे माटी भुरभुरा ओला हमारे जो जानवर है उन बैला नागर रखे हैं और बैला नागर के माध्यम से ओला पहली जोत के बढ़िया भुरभुरा कर लेते हैं। बरसात में अभी मांदा बना बना के बोए हैं और जिसे रबी फसल बोथन तो सब खर पतवार बरूबर करे के बाद हाँ खेत की जोताई ला मस्त जोते के बाद अवार दून कर के बाद फिर उन पहटा चलाथन जला कोपर कथन ऐसे चला के फिर भियन ला बरूबर करथन।
1: बन कचरा मन जामे रहते तो ये बन कचरा के नियंत्रण कैसे करता?
0: अब वो जामते ओकर बाद फिर दवाई आजकल भी आए है निंदा नाशक है ना, तो निंदा नाशक में मेड़ पार मन लग के साथ साथ खेत मन में जिसे बन कचरा दिखत है जमीन जोते के बाद जिससे जागत है तो फिर ओला नियंत्रण करथन ओला सफाई करथन ये प्रकार के बन कचरा साफ करथन।
1: ये तो हो गए भैया बन कचरा के निराकरण के उपाय। अब हमने ये बताया कि जब बीजा की बुआई करता कौन प्रकार ले बीजा की बुआई करता?
0: अच्छा बीजा ला पहले तो ये जो कोचाई बोआ थन राम से नहीं भैया तो वो ला अच्छा से गहिला जोते हैं, गहिला जोते के बाद वो ला मांदा बनाए हैं, मांदा बनाए के बाद कोचाई ले बोए हैं और अब वो माटी उससे पकना रहते तो पेड़ तो इससे बढ़ेगी से कोचाई माटी चपके के लिए वो माँ खातु वातु दे के जिसे घुरवा खातु माँ बोए हैं ओला और ओकर बाद हाँ डीएपी है ये हल्का से यूरिया करके माटी चपक थन और जिमी कांदा भी है, जिमियो कांदा मुसन है बंथन वो मांदा लगा के वो छोटे आकार में बो रहे थन आलू को थोड़ा फिर बड़े के पाव भले ऊपर खाए के टाइम आ जाते और ये सब कोला कुठार भी मई मतलब बोए बोए हन ये प्रकार के मतलब उपजाथन के दवा। हाँ धान का कहत है राम से नहीं भैया, धान तो आउ कुछ डेढ़ दो एकड़ ला बाउ करेन खुर्रा वाला और अभी जो आउ हवा रवि फसल धान बोए रहें, रवि फसल धान बोए रहें ते में धान जाम थे अभी रवि फसल के हैं। हाँ। राम से नहीं भैया ओला हमन नांगर में एक घर ट्रैक्टर जोतवाए के बाद ना अपन बैला नांगर में फिर ओला दो भैंस जोते हैं, दो घर पट्टा चला है ओकर बाद ओला लहरा यदि अभी बोए हैं।
1: अच्छा, अच्छा।
0: हाँ तो ये प्रकार के हमारे सुविधा लगी बनिहार मन ले और ज्यादा बनिहार लगती तेकर ले उतना ज्यादा नहीं लगे और आजकल तो अब निंदा नाशक बताए ना सुविधा होगी की वो माध्यम से खेती लगा रहा था। अच्छा नार भी यार कहा था राम से नहीं भैया अभी आप बरसात में माटी कुढ़ दो तीन तीन झुआ और उमा बीज ल डाले हैं और उमन नार भी यार फैले के हिसाब में आगे अमन ढेखरा गड़िया गड़िया के फिर उमन ल तैयार करत हन और वही ढेखरा में चढ़ी फिर ओकर बाद फले फूले के नौबत तो आई जावत है की दवा तो ये प्रकार के नार भी यार भी करेला है खीरा वीरा भी साथ मौकर और इमन ल ऐसे लगाए हैं भुट्टा उट्टा मन ऐसे मांदा हल्का से छोटे बना करके बोए हैं ये प्रकार के कोला बारी मन अभी के समय में लगाए हैं की दवा।
1: तो नार बियार वाला फसल में ढेखरा की जरूरत है काबर पर थे
0: कि ढेखरा में फल है लंबा भी आते ओकर साथ साथ फल दिखते खोजे ढूंढे नहीं पड़े भी हम लगा दिया पहपड़ तो नार बियान सब एक मई हो जाता तो एकर से न तो खातु माटी की सुविधा हो है और न तो दवाई माटी सिंचे के और नार बियान वो वाला जो फल है जिसे करेला है लौकी है ना भाई डोड़का तरुई है इमन सामने दिखते दवाई दारू सिंचे में सुविधा होते और मांदा मन में हवा तो खातु माटी है सुविधा होते ये प्रकार के सब बढ़िया कमाए से लगते और फसल बढ़िया थे।
1: देखा था ना आपकी मेड़ पार ला तो मेड़ पार के तीर तीर में आप मन जाली के तीर तीर में घरों में नार बिहार वाला फसल लगाया हुआ तो जाली के तीर तीर मन में काबर नार बिहार के फसल लगाया हुआ?
0: हाँ तो वो ला यदि अभी करेला लगाए हैं ये मन तो लौकी डोड़ का हवा तीन मतलब घर के कोला थोड़ा बड़े हवा वो मन लगाए हैं और खेत के

0: करेला अभी हमन पौवा भर ऊपर ल लगाए, अब खातू माटी के तैयारी होवत हे और सब पेड़ मन बग बग ले जाम गे। एक एक मीटर के दूरी मन में गुलवा खने हन, घुरवा खातू लेके गए रहे हन बोरी में बोरी, और वो मन घुरवा खातू डाल के वो नार में जाली जो हवे ना कांटा तार तीर मन बगरा थन, और वो टाइम तह अब कुछ दिन के बाद तह न फूल फल है चालू हुई तह बरसात में सावन भादो भर ये आराम से खाए बता होते तो बेचतन भी।
1: अब गोबर खातू की बात करे भैया, तो ये गोबर खातू आप कहाँ ले पाता?
0: गोबर खातू हमर स्वयं जानवर है।
1: कते कन जानवर हवे?
0: मोर सो 7-8 ठो हवे, बड़े नस्ल के सब जर्सी और गिर नस्ल के है। मोर बैलो मन बड़का हवे, कोपर दतारी में चढ़े चढ़े जोत लो तैसन है, तो गोबर मोर सो पर्याप्त होते है। 4 ट्रैक्टर तो गोबर में आराम से पा जाता हूँ गोबर खाद।
1: आज के समय में लोगन मन है पशुपालन करना चाहते, तो आपके विचार है पशुपालन करे पर काबरा?
0: मैं बचपना से हवे, मैं दूध दही बचपना से खाए, आज भी मोर शरीर ल देख लेवा, और अभी भी मैं 4 बजे उठू तो एक बाद में गौ सेवा भुला था और खवा था पिया था, गोबर वोबर आराम से मैं निकाल दू, बच्चा मन अपन घुरुआ में बाद में डालत रहते।
1: कतका सुघर बात है कि आप घर के शुद्ध प्रकार के दूध दही घी पाता, जबकि बाजार में आज के समय में शुद्ध रूप से मिलना मुश्किल रहते।
0: हमन अपन घर के बहुत पायन, अभी तक हमन दूध दही घी उपयोग करत रहते हैं, मठ मंदिर भी घर में, तो हमन घी के बहुत जरूरत पड़ते है, और दूध दही तो फिर खाते हैं की दवा साथ साथ।
1: जैसे कि आप घर के गोबर खातों का उपयोग करत हवा, तो आप कोनो
0: रासायनिक बहुत काम करते हैं, अभी आंसोदा अभी मिलबो नहीं करत है, लेकिन शुरू से इसे कम करत आथन और रासायनिक लाऊ, और घर के घुरवा खातो हमारे साथ पर्याप्त होते की दवा।
1: का अंतर लगते कि जैविक खेती करे हम लोग कौन प्रकार के लाभ हवे?
0: कई प्रकार के हवे, जैसे साग भाजी सींचा थन, दवाई दारू मान ले जाए सींचा थन, तो कीटनाशक हुआ तो जहरीलापन ज्यादा नहीं आए भी ना, रासायनिक खाद में बहुत कम कीड़ा बीमारी कम आते हाँ, और यह अपन एक जो मात्रा है खातू के वह हरापन हमेशा रहते है।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ,
1: संगे संग खेत की जो उपजाऊ क्षमता है वह बढ़िया बरकरार हुई
0: बरकरार रहते, और यह तो कुछ दिन में उतर जाते रसायन है, और ये है जो अभी देखते ना जिसे खेत में एक साल सींचे परिहार के आत ले वो सो हरिया रहते धान तैसना देख के ना हमन घुरवा खातू के गोबर खातू के बहुत।
1: जैसे कि आप पशुपालन करे था तो ये चरागन की समस्या गांव-गांव हो गई है, किसान मन बहाना बनाते कि भाई चरागन नहीं है तो पशुपालन करके क्या करवो, आप अपन पशु ला चराग की व्यवस्था कैसे करता?
0: नहीं हमन बाहर में अभी खुला हवा थे तो चरा थे, अभी बंधाई बरसात में तो बंधाए ना, अब धान कटे के बाद तक हम पैरा भूसल हमन कटवा लेते हैं 5 घंटा 6 घंटा, ऐसे तो 12 महीना में हम तो 12 घंटा के कटुआ खाते हमारे जानवर मन, और दोनों टाइम हम 5-5, 6-6 घंटा कटुआ कबा काट के हमन बांधे खवाए के हमन सामर्थ्य रखे न, हमन ला गिरवा सेवा करे में ढेर नहीं लगे।
1: अरबर प्रकार के खेती किसानी करत हो, साग भाजी की खेती धान की खेती, तो समय समय में पानी पलोए बर पड़ते, और ऐसे कई भी समय आते कि ऊपर के पानी ही नहीं गिर पावे, कभू कभू हमन ना सूखा काल घलो के सामना करथन, तो ऐसा ना कभू आपके पास समस्या आए हवे का, और अगर इस तरह समस्या आते तो एक समाधान किसे करता?
0: अभी जैसे बरसात है, अभी बरसात में अभी तो पानी की विसना बोर और के नहीं वो लगे, और जैसे एक बाद फसल बोबो कुआर में जैसे पानी गिरे बहुत लंबा टाइम ले, जैसे साग भाजी बोए हैं की दो, तो फिर राम सनी भाई वो मुका घर में भी बोर है, मोला घर को कोला वोला में वो सिंचाई कर लेते हैं, और जैसे खेत में भी बोए हैं मेड़ पार में, जैसे अभी कुमार कार्तिक लगते तहा हमन ला हल्दी बोए हैं, हल्दी लाइन से लगाए हैं, तो घर खेतों में बोर हावे, खेत में बोर हावे ओकर सिकाए है पाइप फसा लेथन, ओकर बाद ओकर सिंचाई करथन, तो ओकर पैदावार जैसे हल्दी वल्दी मन है जिमी कांदा मन ओकर बढ़ोतरी है, आउ भिया ला नमी पाके वह आउ बाढ़ थे कांदा हो।
1: तो मतलब आपके पास पानी पलोए बर बोर हावे, और अपन बोर के माध्यम से आप सिंचाई करता?
0: हाँ हमार सब बोर हावे, और बोरे के माध्यम से समय में देख के पानी ला लगाथन धराथन पाइप से, और उसके कन पानी देवो जतका कन वाला आवश्यकता है जरूरत है, और ज्यादा बहुत पानी नहीं देवन, ये प्रकार के बोर से राम से नहीं भाई अपन सिंचाई कर लेते साग भाजी के साथ साथ खेती बाड़ी के साथ साथ।
1: अधिक प्रकार के खेती किसानी करत है तो अनिमा समय समय में अनेक प्रकार के रोग राय की समस्या आवत हुई।
0: हाँ आते न गा,
1: तो ये रोग राय जब होते तो एक निराकरण कैसे करता?
0: हाँ वो मसिस्थन फिर दवाई हुआ कीटनाशक आए, और जिसे वो फसल में जेकर जिन बीमारी है देखा था ना बाजार में जाके दुकान में की ये प्रकार के वो पेड़ ला या पत्ता ला लेबो, और ये प्रकार के दवाई लगी कही ना जिन प्रकार के बताही वो राम से नहीं भाई, तो वही प्रकार के ला के दवाई लो मन बताई तेकरे माध्यम से फिर स्पीयर में सिंचाई करथन।
1: दवाई की छिड़काव करके बेरा में कौन कौन प्रकार के सावधानी बरतना चाहिए ये हमारे किसान भाई बता?
0: हाँ भाई आप देख काय हवा अभी विपरीत दिशा में होना चाहिए।

0: सामने ले नहीं होना चाहिए। स्पीयर सिंचा थन तो अपन नाक मुला थोड़ा बांध लेवा और जिन प्रकार से हवा सामने आते है तो सामने नहीं बगल से या तो ओकर जिन दिशा ला थे तेन दिशा ले फिर मुड़ना है और इस प्रकार के उमन में स्पीयर में जो दवाई है रोग नाशक है ये रोग निरोधक है तेन दवाई मतलब फिर डालता ना वो सीस्थन अपन शरीर ला बचा के।
1: जिसे दवाई की छिड़काव करता तो जानवर मन से बचाव पर जरूरी हवा कि जानवर मन ढीला रखे?
0: नहीं नहीं ढीला नहीं रखा वो बिल्कुल बचाए पड़ते लक्ष्मी है वो भाई अब पशु है अब वो थोड़े जान ही जहर मोहर सिंचाई की के ओकर से बचाव छेके रथन और छेकाए है और जानवर दिखे से ही करी तेन दूर हकाल के खेत देथन। हाँ
1: सुख सागर भैया एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभी के समय में हमारे किसान भाई मन अपन गाय गरुआ ने ढीला कर देते और ढीला करते तो जेकर खेत में पाथे उकरे खेत में जानवर जाते हो तो ऐसे नहीं है कि भाई ये तोर खेत में नहीं जाओगे मोर खेत में नहीं जाओगे मोर मालिक के खेत ऐसे कोई खेत चिन्ह नहीं है है ना वो तो हमारे सबके नुकसान है। तो हमारे किसान भाई मन का संदेश देना चाहते हैं कि गाय गरु हमारे बांध के रखा है किसी ने ढीला छोड़ा की कहाँ तक उचित हवा है?
0: नहीं ये बहुत बढ़िया बताया है वो हम तो ही कथन गांव सियान के रूप में गणमान्य व्यक्ति भी समझते पंचायती पंचायत ही जाथन गेरुआ बछरू के बारे में तो हम ये सलाह देथन भाई हमरे नुकसान और हमरे जानवर और हमरे खेती तो हम कथन किसान मतलब कि भाई बांध के रखा सुरक्षित होकर बेचारा रखे रहा और ओकर सुघर से जतन कर ताकि हमारे नुकसानो झन हो और हमर सुरक्षित भी रहे जानवर का आजकल कते ही रखवार मन गोड़ हाथ लटंगिया लाठी मारते तो भाई घा गोदा हो जाई तो हम पशु एक ठो दुख पाही ना भाई ये प्रकार के ना सब आदमी ला कहत रहन भाई अपन सुरक्षित रख अपन जानवर ला अपन खवाओ पियाओ और तरीका से उकर जतन करा कि हमर सलाह रहते भाई।
1: भैया आज के समय में अधिकांश किसान मन अपन खेत के पेड़ पौधा काट देते कावर काटते तो अनेक प्रकार के बहानाबाजी हवा की खेत छाव करते चार बीजा धान कम हो ही तो अनेक प्रकार के बहानाबाजी है। लेकिन आपके देखा था तो नवा नवा यदि पेड़ मतलब लगाया है रुखो में लगाया है देखा था तो बिकट कन आवा के पेड़ लगाया है तो इसे क्या बात है?
0: का देखा आज के दिन में ना आदमी एक पेड़ काट ही अब एको पेड़ नहीं लगाए हम एक पेड़ लगा काटबो ना तो दो पेड़ लगाए के हिसाब रखते हमारे मेड़ पाला देख लेव हमारे नींबू संतरा तक के लगाए पार में आओ ये आमा मन तो फिर बहुत सारा है हमारे लेकिन मन चिल्ला तो बहुत कन बोथज बाबू कही के हम कथन पर्यावरण के रक्षा हो बेटा आओ फल फूल भाई हम उन खाबो आओ कोनो जीव खाही है ना भाई आओ ज्यादा हो तो बाजार हाट में बेचिया दो पैसा चार पैसा तुम्हारे हाथ में पैसा कौड़ी हुई ऐ प्रकार के हमने ये सब लगाए लगाए आराम से नहीं भाई आओ हमला पर्यावरण और रुखवा ई मन में हमला बहुत प्रेम है अपन उम्र मन कम से कम बहुत सारे जो पेड़ लगाए हम अब विशाल तो नहीं हो पाए है लेकिन बरगद है पीपल है तालाब पार मन मा मैं स्कूल में बरगद भी लगाए हूँ ये प्रकार के ना रुख राई अबड़ प्रेमी आराम से नहीं भी है।
1: आपे के जिसे हर किसान सोचते हर व्यक्ति का रुखवा लगाते तो आज पर्यावरण की समस्या हर नहीं होती देखा था ना आप अधिक मात्रा में जिमी कंदा हरदी कुचाई लबोए हवा तो ये जिमी कंदा हरदी कुचाई मतलब जानवर में नुकसान नहीं करेगा काबर तो आप घेराबंदी घराव नहीं करे हवा?
0: हाँ जिमी कंदा और ये कुचाई है ना भैया राम से नहीं भाई और ये जो हल्दी है ये मतलब तो गरुआ बछरू नुकसान कर भी नहीं करे और मोर जब का मेढ़ देखत हुई है दे तो मैं अपन मेढ़ भर ना ये एक फसल वो करे है और मस्त वो टाइम दे अभी फसल कटी तह जिमी कंदा ल फिर खन के खाबो हमारे हल्दी है तेन हमारे उपयोग में हम हरदी जिमी कंदा कोचई ऐसा है ऐसा सब बहुत सारा सब्जी तो हम बहुत कम बिसाथन नहीं चले हम बिसाबो नहीं तो ये सब लता अपन घर जाथन मेड़ पार मन में मेड़ मन चौड़ा चौड़ा हवा है और मन अपन खन के एक साइड में अपन रेगे के एक साइड में पूरा हमारी कोचई और ये हल्दी ये जो लगे है ना जिमी कांदा तो ये सब अपन हाथे में उपजा के खाथन भी है और इसमें कोई नुकसान नहीं है न तो जानवर खाए न और आदमी तो चराए नहीं है दिन भर रात जाथन बोर हवे तो
1: और फसल के फसल उत्पादन हो गए और मेड़ के उपयोग अलग हो गए
0: हाओ तो वही सोच के ना काबर जमीन बंजर रहे भाई अब हमर जांगर है और हमारे जरूरत है तो एकर कारण हम ये सब ला करे हन और अच्छा से फायदा होते भी जेल बिसाते तेल अपन हाथ में खात हन जी।
1: तो भैया ये प्रकार के फसल मतलब पानी पलोब की जरूरत पड़ते का?
0: नहीं विसना नहीं पड़े है ये तो बस हल्दी ला अभी कार्तिक अगहन में लगी काबर हल्दी के जो उत्पादन है कांदा जो होते ना ये वही दिन में पोठाते वही दिन में ओकर मन के पिचका रहते अंदर में जो पोथी रहते तेन मजबूत होते तो एकर कारण पड़ते
1: तो ए मन में कोनो प्रकार के रोग राई आते का?
0: हाँ इस रोग राय नहीं आये और इमन कोई प्रकार के रोगी नहीं है और अच्छा से फसल है और बढ़िया लगते भी कम आय में और खेतों खार जहा तो बढ़िया हरा भरा मेड़ पार दिखत रहते
1: तो अतिकन जिमी के अंदर बोए हवा तो पहले बेचे घरों के काम करते हो?
0: हाँ वो टाइम अब 40-45 रुपए किलो में बेचाते भी और

0: खा कोला बारी सब महावे था हमार कोचई ल तो छोड़ देवा। हल्दी और ये जो जिमी कांदा है एला एक साल आऊ नहीं खनिया तो ओकर उत्पादन आऊ बल्कि दुगना ले तिगना चौगुना आते और तुरंत खन दिया तो उत्पादन थोड़ा कम रहते और एको साल तो कहूँ रख दिया। हाँ तो दूसरिया साल वो अपन चौगना हिस्सा लेके बना के फिर आप लोग पैदावार दी ऐसे जिमी कांदा हर आए और हल्दियों हर आए।
1: तो भैया ये प्रकार के खेती करता है तो गाय बैला के अलावा आपके पास कोनो प्रकार के उन्नत मशीन हवे का?
0: नहीं इससे तो उन्नत मशीन नहीं है। स्पीयर से अपन दवाई माटी सिस्थन की दवा और मेड़ पार मतलब पहली तो राहर साहर बंत नांगर में जोतत रहे ना, अब उसना नहीं। अब काय छोटे छोटे वृक्ष लगाए बताए ना आप ला पर्यावरण के नाम से आमा बिही संतरा लगाए हैं जामुन लगे है तब उसने नहीं बने। कुदरी रापा मन में चक्कर धरी गई थी और नसियरा में खन खन के फिर इकर मन के सेवा जतन लग करता नहीं रुख राई के बचाव के नाम से। हाँ
1: वाह वाह सुख सागर भैया की मन तो करे थे कि आपसे गोड़ बात करते रहें लेकिन समय के बंधना में बंधे हैं। आज हमारा आकाशवाणी परिवार ला देखन समय दिया एकर बराबर बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जय जवाहर।
0: राम राम भैया राम राम जय जोहार।
2: अभी हमार राम से नहीं भैया तिरन होई गोट बात मा गांव आंख डिट कोनी विकास खंड बस्तुरी जिला बिलासपुर के किसान भाई श्री सुख सागर केवल जीवन से गोट बात करीन जेमा खेती किसानी करके जिंदगी ला कौन ढंग ले अच्छा ढंग ले पाहत है। गेहूं तिवरा चना और साथ खासकर साग भाजी के जो फसल है ओला बहुत अच्छा लगा थे। तो मैं एक चीज देखे संगवारी हो किसान भाई हो कि जोन भी किसान सिर्फ धान के पाछो नहीं पर के साग भाजी के खेती कर ही वो कभू किसानी में तक दुख तकलीफ नहीं पावाए न काकुर हाथ में आघू में हाथ लमाए पड़ा ये बात लो बिल्कुल कहो। तो अब मैं कहत रहे कि कले चुप बैठे रहिबे कबो मया के झन दिखावे है ना, कले चुप बैठे रहिबे कबो मया के झन दिखावे है ना। कतको ऊपर झावस होए चाहे बरसत रहे रहना नजर गांव के जमे झन के है ना। तब बोले मैं तो है ना अब यही बात लग गई कि मैं कहता हूँ कि हवाई तुर कजरारी नहीं ना, हवाई तुर कजरारी नहीं ना।

येसु घर सिंगार घेतले सुनात रही से रामायण वर्षकार और अनुपमा मिश्रा संगवारी हो मिले जानकारी के अनुसार पाछू 24 घंटा में सबले कम तापमान रही से 26 डिग्री सेल्सियस और सबले ज्यादा तापमान रही से 29 डिग्री सेल्सियस। आज बिलासपुर मंडी में धान पान के भाव ले लेते हैं भाई, है ना, तो एमा गेहूं के भाव रही से 2100 रुपये क्विंटल और भाटा के भाव रही से 3200 रुपये क्विंटल ले 3400 रुपये क्विंटल, आलू के 2700 ले 3000 रुपये क्विंटल और संतरा के भाव रही से 1100 ले 1150 रुपया, भिंडी के रही 4800 रुपये ले 5000 रुपया, केला के 3500 ले 3700, कुंदरू के 1200 ले 1400 रुपये क्विंटल। यही तरह ले आपन कार्यक्रम कैसे लगी खचित चिट्ठी पत्री में लिख के बता काबर के आप मन के भेजे चिट्ठी पत्री हर हमला मगंद थे और साथ ही साथ हमला ये दिखा दे कि आप मन जरूरत का है, तो ही पाए कि हम अच्छा ले अच्छा आप मन ला कार्यक्रम सुनाई सकी। फिलहाल आज के कार्यक्रम कैसे लगी चिट्ठी पत्री में लिख के बता यही बात के संग खेत मजे कर संजा होते होते जी हाँ बिहान ओला कथे किसान का भैया कही थे ओला किसान। जात मिलात जम्मो संगी संगवारी दीदी महतारी मल्ला अंजलि भाई की जय जोहार राम राम।

अभी ग्राम सभा का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: ये आकाशवाणी बिलासपुर है, रात के 8 बजे हैं। संसद समीक्षा अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
4: संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक है पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण

संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट प्रश्न पत्र लीक की पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और आज से सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधान के साथ मूल कानून 2024 में लागू किया गया था और आज प्रश्न पत्र लीक संबंधी खामियां सामने आने के बाद सरकार ने माना कि कानून को और कड़ा बनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली में मासूम बच्चों पर जुल्मों सितम ढाया गया, जबकि सरकार ने सर्वोच्च संयम के साथ कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि कोई भी हताहत नहीं हो। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने देश में पिछले कुछ साल में 152 बार प्रश्न पत्र लीक होने और इसमें 750 करोड़ बच्चों के प्रभावित होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं प्रियंका गांधी ये आंकड़े कहां से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने 2024 का कानून लागू होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही, जबकि ऐसे मामलों में 52 प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई, जो कांग्रेस का अधूरा काम था। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होंगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी। इससे पहले सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर बुधवार को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वे माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था की आत्मा पर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन ने कब्जा कर लिया है और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र थे। उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि प्रदर्शनकारी बच्चों के माता पिता में साहस नहीं है कि वे भाजपा और उसके वैचारिक संगठन का मुकाबला करें, लेकिन ये बच्चे सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि छात्रों ने डर को बाहर निकालकर चुनौती दी और खुलकर सवाल किया। उन्होंने सदन में गृहमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर दावा किया कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वे सदन में आ सकें। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री डरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था।

सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी माफी मांगो और कांग्रेस के सदस्यों ने एलओपी को बोलने दो और गृहमंत्री जवाब दो के नारे लगाए। सदन में काफी देर तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। श्री राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर इस देश के भविष्य ने जो किया वो कोई गुस्सा, हिंसा और नफरत नहीं थी, बल्कि ये युवाओं की अभिव्यक्ति थी तथा सत्तारूढ़ दल समेत सभी दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के मित्र अपने बच्चों से भी इसके बारे में पूछेंगे तो आंदोलनकारी बच्चों के साथ उनकी भी सहमति ही पाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग एक परीक्षा पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो सरकार के शिक्षा बजट से ज्यादा है। सत्ता पक्ष के टोका टोकी के चलते राहुल गांधी ने बोलने से इनकार कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद श्री रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सुनने को तैयार हैं और वे अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि आप

और अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद श्री रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सुनने को तैयार हैं और वे अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि आप भावुक चेहरा दिखाकर सदन को गुमराह नहीं कर सकते। श्री बिरला ने कहा कि सदन में अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं और अच्छी मर्यादाएं रही हैं, मर्यादा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मर्यादा और तर्क से बोलता है तो देश सुनता है और सम्मान भी करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्री राहुल गांधी से भाषण जारी रखने की अपील की और सत्ता पक्ष के सदस्यों से उनके भाषण के बीच में टीका टिप्पणी नहीं करने को कहा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भाषण जारी रखा। हालांकि दोनों पक्षों में नोकझोंक की स्थिति बनी रही और कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी आज सदन में पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। संसदीय प्रक्रिया के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करने के लिए विपक्ष के कुछ सदस्यों के नाम पुकारे। हालांकि कोई विपक्षी सदस्य नहीं बोला और इसके बाद श्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 2023 में संशोधित की धारा 13 के 3 में और संशोधन करना है ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा ने आज उस विधेयक को पारित कर दिया जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों का प्रिय नारा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वो सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसी कारण वंदे मातरम के केवल 2 अंतरों को ही सरकार ने स्वीकार किया और इसके 2 ही अंतरे सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों में गाए बजाए जाते थे। श्री राय ने कहा कि आजादी मिलने के बाद पहले दिन प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आकाशवाणी पर पूरा वंदे मातरम गाया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों के प्रावधान हैं। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री तथा आरपीआई के रामदास अठावले, भाजपा के राधामोहन दास, मयंक कुमार नायक, डॉ अशोक कुमार मित्तल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव, तेदेपा के विजया चिंता कायला, राजद के मनोज कुमार झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना की डॉ ज्योति नागनाथ वाघमारे, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, बीजेपी की सुलता देव और अन्ना द्रमुक सदस्य डॉ एम थंबीदुरई ने हिस्सा लिया। विधेयक पारित होने के बाद भाजपा के माधव राव गोपछड़े, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे और डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी तथा
भाजपा के नाम निर्देशित सतनाम सिंह संधू ने आसन की अनुमति से

विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने उच्च सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक अब बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे होगी। विपक्षी सांसद दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के प्रवेश और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का विरोध कर रहे थे। साथ ही उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी दोहराई। सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने आयशी घोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस की एक टीम 2021 में जेएनयू में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में आयशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए कल पार्टी कार्यालय में दाखिल हुई। उनकी बात का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस के प्रवेश का आदेश किसने दिया। आरोपों का जवाब देते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह एक सामान्य कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होती है और उसने उसी के अनुरूप कार्रवाई की है। श्री नड्डा ने कहा कि वे भी छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उन्हें भी ऐसी कई कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। माकपा तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस घटना पर विरोध जताया। सभापति ने सदन में शून्यकाल शुरू करने और आसन की अनुमति से सदस्यों से अपने अपने मुद्दे उठाने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग भी उठाई। सत्तापक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के मदन राठौर, तेजवीर सिंह, डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजीव भट्टाचार्य जी ने यातायात जाम, सरकारी स्कूलों में खेल के मैदानों की स्थिति और खाली पड़ी जमीनों में सौर ऊर्जा उत्पादक संयंत्र लगाने संबंधी मुद्दे उठाए और सरकार से इनके समाधान की मांग की। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया। बैठक स्थगित करने से पहले सभापति ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों को आसन के समक्ष नहीं आने की चेतावनी दी। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में लगातार व्यवधान देखने को मिल रहा है। मॉनसून सत्र में आज पहली बार उच्च सदन में शून्यकाल हुआ, लेकिन केवल 4 सदस्य ही अपने मुद्दे उठा पाए। इस सत्र में प्रश्नकाल एक बार भी नहीं हो पाया है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

अभी आप सुन रहे थे संसद समीक्षा, जिसे हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, रजनीगंधा का पौधा सादगी से भरा दिखता है, लेकिन जब वो महकता है तो अपने आसपास का पूरा माहौल ही बदल देता है। अपने चारों ओर वो खुशबू बिखेर देता है। श्रोताओं, जिंदगी में खुशबू किसी इत्र से नहीं बल्कि हमारे अच्छे विचारों और अपनों के साथ से आती है। आज इस कार्यक्रम में हम गीतों और अपनी बातों के साथ आपको महकाने के लिए हाजिर हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

फूलों की खुशबू जब हवा में घुलती है तो हम सभी का मन तरोताज़ा हो जाता है। लेकिन सोचिए ज़रा, उस फूल को खिलने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जी हाँ श्रोताओं, वो है पानी। पानी जिसे हम रोज़ देखते हैं, उपयोग में लाते हैं। और अगर मैं कहूँ कि अक्सर हम पानी बहुत बर्बाद भी करते हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जल ही जीवन है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या नल से टपकती हुई उस एक एक बूंद को देखकर हमने कभी सोचा है कि ये बूंद किसी का आने वाला कल भी हो सकती है? साथियों, जब प्यास लगती है तो बड़े से बड़ा खजाना भी एक गिलास पानी के आगे फीका सा लगने लगता है। पानी सिर्फ हमारी प्यास नहीं बुझाता, ये हमारी मिट्टी को जिंदा रखता है, खेतों में अनाज उगाता है और नदियों के रूप में हमारी सभ्यता को जिंदा रखता है। कहते हैं कि पानी का कोई रंग नहीं होता, आप जिसमें मिला दो वो वैसा ही हो जाता है। बिल्कुल हम सभी के दिलों की तरह निर्मल, स्वच्छ और निश्चल।

पानी एक प्यास नहीं है, पानी जीवन की पहली और अंतिम सांस है। पानी जो बूंद बनकर कभी आँखों से छलकती है तो कभी बारिश बनकर ज़मीन की तपन बुझाती है। पानी नदियों में बहता हुआ इतिहास है तो भविष्य के सपने भी बुनता है। पानी रुकने का नाम नहीं, पानी तो बहने का नाम है। और नदियाँ पानी का वो रूप जो हमें सिखाती हैं कि राह में चाहे कितनी भी चट्टाने आए, अपना रास्ता खुद बनाना है। नदी के किनारे बैठकर पानी को देखना खुद से बातें करने जैसा है। कवि नीरज ने क्या खूब लिखा है, नदी किनारे सावन की रात, पानी में बहता हुआ चांद। आइए पानी की इस रवानी और नदियों के इस असीम विस्तार को हम समझते हैं इस खूबसूरत से गीत में।

श्रोताओं, पानी हमारी आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। अगर नदियाँ मुस्कुराएंगी तो हमारा कल खुशियों से हरा भरा होगा। अगर हम पानी को बचाएंगे तो जीवन हमें बचाएगा। पानी को जाया न कर ए इंसान, हर बूंद में छिपा है जिंदगी का जहान। और आइए कार्यक्रम रजनीगंधा में सुनते हैं एक और बारिश से भीगा हुआ ये गीत।

श्रोताओं, प्रकृति का अनमोल उपहार है पानी। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि पानी की हर बूंद का सम्मान करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल का संरक्षण करेंगे।

श्रोताओं, इस गीत के साथ रजनीगंधा की महकती रात की संगीतमयी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। जल है तो कल है, जल को सहेजिए, गीत संगीत से नाता जोड़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों के मुस्कुराने की वजह भी बनिए। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आप सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:45 होने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त।

0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
1: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
0: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक के कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्रप्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
4: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
0: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
1: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
2: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
3: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 1 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश

0: सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है, डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना।
1: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. Headlines. Lok Sabha passes anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. Rajya Sabha clears legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, makes insult to national song a criminal offence. Flood situation grim in Odisha, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. Heavy rainfall also disrupts normal life in Chhattisgarh. UN Human Rights Office voices concern over Islamabad's crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Death toll rises to 40. At the Commonwealth Games, nine Indian

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आए हाय,
2: लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म जिद्दी में। हसरत जयपुरी के बोल है और संगीत से सजाया है SD बर्मन ने।

अभी आपने जिद्दी फिल्म में लता मंगेशकर को सुना और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में। साथ दे रही हैं लता मंगेशकर। फिल्म का नाम है हंसते जख्म। कैफी आजमी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है मदन मोहन ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाए गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, किसी रिश्ते का सबसे दुखद पल या यूं कहें दुखद क्षण वो नहीं होता जब दो लोग अलग होते हैं। दुखद पल वो होता है जब दो लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। शब्द होते हैं पर आपसी समझ नहीं होती। साथ है लेकिन सुकून नहीं होता। बातचीत होती है लेकिन दिल की बात नहीं होती। और ये रिश्ता बाहर से तो वैसा ही दिखता रहता है लेकिन भीतर उसका जीवन खत्म होता जाता है।

बहुत लोग साथ रहते हैं, फिर भी एक दूसरे को कभी महसूस नहीं कर पाते। उनके बीच हजारों मील की दूरी होती है। स्त्री और पुरुष का रिश्ता सिर्फ एक छत के नीचे साथ रहने का नाम तो नहीं है ना? किसी भी रिश्ते को बाहर से देखने पर वो अक्सर दो लोगों की कहानी दिखाई देता है, लेकिन भीतर उतरकर देखिए तो सही, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते। हाँ, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज के फनकार

के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं कॉमेडियन अभिनेता जॉनी वॉकर।

सिने जगत का ये लोकप्रिय नाम है इनका, लेकिन इनका नाम कुछ और है। आपको बता दें, 11 नवंबर 1920 के दिन इनका जन्म हुआ था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के रूप में। बाद में ये फिल्मी नाम गुरुदत्त साहब ने इन्हें दिया, जॉनी वॉकर। पर्दे पर इन्हें देख करके आप जरूर मुग्ध हो गए होंगे, क्योंकि कॉमेडी के रूप में इन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया।

भारतीय हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय कॉमेडियन के रूप में जॉनी वॉकर हमेशा याद किए जाएंगे। बिना पिए पीने वाले की भूमिका इतनी सुंदर ये पर्दे पर निभाते थे कि इनकी छवि को देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे। दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। इनका बहुत ही आकर्षक चेहरा था, उस पर से पेंसिल की तरह पतली इनकी मूछें थी जिन्हें देखते ही हंसी आ जाए। जॉनी वॉकर, इनका जन्म 11 नवंबर 1920 को हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में, और एक मिल वर्कर के यहाँ इनका जन्म हुआ था। बाद में इनका परिवार बॉम्बे में आ गया और यहाँ इन्होंने बहुत सारे काम किए जीविकोपार्जन के लिए। फिल्मों में इन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे। और आगे की बातें से पहले हम आपको गाना सुनवा रहे हैं CID फिल्म का।

हंस हंस खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस एक चीज के है कई नाम यहाँ।

0: मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के यह बम्बे मेरी जान।
1: है दिल है आसा जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु यह बम्बे मेरी जान।
2: जॉनी वॉकर की फिल्मों का सुनहरा दौर था सन 1951 से लेकर सन 1997 तक, यानी 1997 तक। मुंबई आने के बाद जॉनी वॉकर ने बेस्ट की बसेस में कंडक्टर का काम किया। बेस्ट की बसेस में ये कॉमेडी का रोल भी करते थे और जो पैसेंजर थे उनका मनोरंजन करते थे, लोग हंसते थे।

उस जमाने के सुप्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी जॉनी वॉकर को बस में देखते रहते थे, वहाँ ये एक्टिंग करते थे। बलराज साहनी सन 1951 में फिल्म बाजी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उसी दौर की फिल्म हलचल में इन्हें एक भूमिका दी गई। गुरुदत्त साहब जो कि उस जमाने में फिल्म का निर्माण करते थे, उन्होंने इनके काम को देखा और पसंद किया और बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को एक नया नाम दिया, जॉनी वॉकर।

बहुत ही प्रभावित होते थे, खास तौर से पीने वाले की भूमिका। लेकिन आगे चलकर इन्होंने तरह तरह की भूमिकाएं की, लेकिन उसमें कॉमेडी का पुट हमेशा होता था और उस जमाने के नायक के बराबर कॉमेडियंस को भी सम्मान मिलता था।

0: अब तो गोला भात नहीं है डर के, ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर,
1: लाइन क्लियर बाय।
2: इनकी कामयाब फिल्में थी मेरे महबूब, सीआईडी, प्यासा, चोरी चोरी। इन फिल्मों में कॉमेडी के साथ साथ चरित्र अभिनेता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और इन्हें बहुत ही सम्मान मिला। सन 1950 से लेकर 1960 तक फिल्मी करियर जॉनी वॉकर का बहुत ही सुनहरा था, किंतु इसके बाद फिल्मकार गुरुदत्त के निधन के बाद जॉनी वॉकर का करियर डगमगा गया। सन 1964 से इन्हें एक नया मोड़ मिला फिल्मी करियर में, जब जॉनी वॉकर डायरेक्टर बिमल रॉय और विजय आनंद से मिले और इन दोनों ही निर्देशक और फिल्मकारों ने इन्हें बहुत ही गोल्डन चांस दिए।
3: जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे, हाय दस

0: तुमने ना देखा।
1: जॉनी वॉकर को अवार्ड्स भी मिले, फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड, मधुमती फिल्म में विशेष भूमिका के लिए, फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड शिकार फिल्म की भूमिका के लिए।
2: आज दहिया ताए याद आवत है,
3: तबीयत नरम है आज।
2: नरम है तो हमसे पूछो नुक्सा, कंपाउंडर के हाथ के नीचे भी काम किया है, बोलो क्या तकलीफ है।
3: नींद नहीं आती रात भर।
2: नींद नहीं आवत है पर का है रोग तो बोलो, सर दुखत है, पेट दुखत है।
3: दुखता उगता नहीं, कस मसा है सारा बदन, नींद नहीं आती।
2: ओ ये तो नवा रोग लगत है, सोचो तेज बहादुर खूब सोचो।
3: सोचना कैसा,

0: कुछ इलाज करो ना हमारा।
1: ठहरो, पहले ई बताओ सोवत कैसे हो? चित पट के करवट
2: कैसे? ऐसे
3: बराबर लेटो,
2: भाता है ना ऐसा लेटना।
1: नींद ना आवे तो क्या फायदा।
2: अच्छा ये कैसा?
1: दुई कौड़ी का।
0: तो फिर कैसे?
1: इधर घूमो करवट,
0: पल्ले नहीं पड़ता, तुम ही घुमा लो ना।
1: गोबर गणेश कहीं की।
4: जॉनी वॉकर ने 300 फिल्मों में काम किया। इनकी चर्चित फिल्में हैं सन 1951 में बाजी।
5: मिस्टर जो डिक्रूज, सन ऑफ जॉर्ज डिक्रूज, तुम उधर क्या देखता?
6: उधर टेलीफोन देखता था। तुमने कितना अच्छा टेलीफोन लगाया, नहीं डबल कनेक्शन वाला, हॉल में भी लगा लो और बेडरूम में भी।
5: यू फूल, तुम हमको फूल बनाता, तुम टेलीफोन को नहीं छोकरी को देखता था।
6: छोकरी? छोकरी टेलीफोन छोकरी के हाथ में था?
5: यस।
6: ओ गॉड, जब भी हम सोचता था वो टेलीफोन वाला हाथ आदमी का नहीं हो सकता है, कहीं को हम खाली उसका हाथ देखता था ना। लेकिन डार्लिंग, जो बात तुम्हारे हाथ पे है ना, वो किसी में नहीं। डार्लिंग, तुम इसी लड़की का बात करता था ना, इसका अंकल पैसे नहीं भेजता है?
5: हम उसका बात करते तो वो ठीक है, पर तुम काहे को उसका बात करता है? डोंट फॉरगेट, तुम हमारा पेइंग गेस्ट है।
7: वो तुम्हारा पेइंग गेस्ट हो या हमारा, रेंट किसी को नहीं देगा। लूसी, बहुत रात हो गया, सोने दो ना बेचारे को। नहीं सोएगा तबीयत खराब हो
3: जाएगा। राइट राइट।
5: मिस सुजन फर्नांडिस, तुम अभी तक नहीं सोया?
7: कैसे सोएगा, नींद नहीं आता।
6: जब तक मैं नहीं सोऊंगा ये नहीं सोएगी।
5: यू शट अप। सुजन, तुम्हारा ड्रेसिंग गाउन किधर है? तुम क्या बोला, तुम क्या बोला?
6: मैं बोला कि तुम सिस्टर हो, कितना अच्छा है, साथ में सोता है साथ में उठता है। मैं तुम लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा।
8: तुम जिसे कहता है शादी, रोनो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे। माइंड यू जाएगी आजादी। हम तुम जिसे कहता है शादी, रूनो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे। माइंड यू जाएगी आजादी।
4: आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर पर। चलते चलते हम आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में शोध आलेख और स्वर था शहनाज अख्तरी का, संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
9: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाए गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

बहुत लोग साथ रहते हैं, फिर भी एक दूसरे को कभी महसूस नहीं कर पाते। उनके बीच हजारों मील की दूरी होती है। स्त्री और पुरुष का रिश्ता सिर्फ एक छत के नीचे साथ रहने का नाम तो नहीं है ना? किसी भी रिश्ते को बाहर से देखने पर वो अक्सर दो लोगों की कहानी दिखाई देता है, लेकिन भीतर उतरकर देखिए तो सही, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते। हाँ, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते।

पहाड़ कभी एक दिन में नहीं दरकते, उनके भीतर दरारें बहुत पहले पड़ जाती हैं। किसी को इसका आभास नहीं होता, लेकिन जब वे टूटते हैं तो सबको लगता है कि ये अचानक हुआ। ठीक ऐसे ही हर रिश्ता शब्दों से नहीं टूटता, कई बार वो उन बातों से टूटता है जो कहीं ही नहीं गई होती। जी हाँ, जो कहीं ही नहीं गई होती।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। दो चेतनाएं धीरे धीरे ये तय करने लगती हैं कि वे एक दूसरे को ऊपर उठाएंगी या भीतर से खोखला कर देंगी। अगर दो दिलों का तालमेल सही है तो वहां प्यार, इज्जत, एक दूसरे को समझने की गुंजाइश होगी और इन सब के बीच जो धागा इस रिश्ते को हर दिन नया रखेगा वो है रोमांस। हाँ, रोमांस। वरना तो अंतरिक्ष और जमीन के बीच जितनी गहरी खाई ही होगी।

कभी कभी लगता है एक खामोश सा दर्द है जो चीखता नहीं, सीने में भारी होकर बैठ जाता है बस। हाँ, हर वक्त खामोशी अच्छी नहीं होती। रिश्तों में संवाद की एक छोटी सी खिड़की खोलकर हमेशा रखनी चाहिए। खुली खिड़की मन रूपी आंगन में रोशनी लेकर आती है, लेकिन हम अपनी धारणाओं की दीवारें बहुत ऊंची करते चले जाते हैं और इन दीवारों को फिर किराया नहीं जा सकता।

0: जीवन में प्रेम का आना एक अद्भुत और अप्रतिम अनुभव होता है, लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी हम एक ऐसे रिश्ते में उलझ जाते हैं जहां आनंद केवल क्षणिक होता है और दर्द नियति बन जाती है। वो प्रेम नहीं होता, एक भावनात्मक तूफान होता है और हम उसमें घिरते चले जाते हैं। तब भीतर से एक सवाल उठता है, पहले जो था वो क्या था, वो अब कहां गया।
1: मेरी दुनिया

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 11 बजने को हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री

0: नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काई रूट एरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काई रूट एरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम एक मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में HS प्रणॉय, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तानिया हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।